बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले रहे।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

बहुत खूब दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

0: जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अमीषा पटेल वडोदरा गुजरात से लेकर आ गई हूँ गाता रहे मेरे दिल प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, ये इस प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 9 है और देखते देखते हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है। गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम को शुरू हुए 8 एपिसोड हो चुके हैं और ये हमारा 9वां एपिसोड है। हम बताना चाहेंगे हमारे नए श्रोतागण को कि गाता रहे मेरा दिल एक वडोदरा बेस्ड म्यूजिकल ग्रुप है, जो कि वडोदरा में म्यूजिकल इवनिंग्स, म्यूजिकल मीट्स, करियोके म्यूजिकल मीट्स करते रहते हैं। हमारा अल्टरनेटिव मंथ एक इवेंट होता है और उस इवेंट में जो सिंगर्स परफॉर्म करते हैं उन्हीं के गाने लेकर हम जयपुर रेडियो डिजिटल वर्ल्ड पे ये गाता रहे मेरा दिल प्रोग्राम में प्रस्तुत करते हैं। गाता रहे मेरा दिल ग्रुप जो कि वडोदरा गुजरात में है, उसको मिस्टर जीत वाधवा और मैं यानी कि अमीषा पटेल मिलकर चलाते हैं। और हम आशा करते हैं कि ये जो प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल हमने जयपुर रेडियो पे शुरू किया है वो सबको पसंद आ रहा होगा। ये एपिसोड की खास बात मैं ये कहूँगी कि ये एपिसोड हमने 19 जुलाई को हमारी जो इवेंट हुई थी गाता रहे मेरे दिल का सीज़न 8 हुआ था, जिसका थीम था रेन सॉन्ग्स। तो ये एपिसोड 9 हम उस रेन सॉन्ग्स वाले इवेंट से ले रहे हैं, यानी वो गाने जो उस इवेंट में गाए गए हैं। तो श्रोतागणों को एपिसोड 9 में रेन सॉन्ग्स में स्पेशली जो ड्यूएट सॉन्ग्स गाए गए हैं वो सुनने को मिलेंगे, क्योंकि एपिसोड 9 ड्यूएट सॉन्ग्स को डेडिकेटेड है। तो आशा करती हूँ आप सबको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। मैं गाता रहे मेरा दिल के श्रोतागण और जयपुर रेडियो के श्रोतागण से ये बात कहना चाहूँगी कि हमारा अगला प्रोग्राम यानी कि गाता रहे मेरा दिल इवेंट जो कि वडोदरा में नेक्स्ट होने वाला है वो 6 सितंबर को हो रहा है वास्तविक ऑडिटोरियम में। ये हमारा ऑडिटोरियम में पहला शो है और इसे देखने के लिए सभी श्रोतागण आमंत्रित है, क्योंकि इसमें हमने कोई चार्जेस नहीं रखे हैं सुनने के लिए। तो आप सभी जो जयपुर रेडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, गुजारिश है कि 6 सितंबर को वास्तविक ऑडिटोरियम वडोदरा में हमारे जो इवेंट होने जा रही है शाम 4 बजे से 8 बजे का टाइम है और

हमारे सिलेक्टिव सिंगर्स उसमें गा रहे हैं, तो आप सभी उस प्रोग्राम को सुनने के लिए ज़रूर आए। जो बड़ौदा में रहते हैं वो तो आए ही, लेकिन अगर कहीं और से भी कोई आ रहा है सुनने के लिए तो ज़रूर शामिल हो इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। तो आप सबका स्वागत रहेगा 6 सितंबर वास्तविक ऑडिटोरियम शाम 4 बजे से 8 बजे तक। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9। चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने से और एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर जोड़ी से। जी हाँ, हमारी पहली पेशकश लेकर आ रहे हैं मिस निशी एंड मिस्टर सुशील, जो कि रियल लाइफ जोड़ी है और बहुत ही बढ़िया गाते हैं दोनों, और एक बहुत ही खूबसूरत पॉपुलर मज़ेदार गाने से हम शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम। ये बच्चन जी पे फिल्म आया गया है, स्मिता पाटिल जी है और आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज़ में गाया गया था ये गाना। तो चलिए, आप समझ ही गए होंगे शायद कि कौन सा गाना है ये, तो इसे सुनते हैं।

बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति रही निशी जी, सुशील जी। निशी जी, सुशील जी हमारे ग्रुप के रेगुलर सिंगर हैं और इससे पहले भी जयपुर रेडियो में आ चुके हैं, तो बहुत ही उम्दा प्रस्तुति रही आप दोनों की। अगली पेशकश है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत और गाना है और बहुत ही कम कैरियोके मीट में सुना जाता है ये गाना, तो यहाँ पे हम इसे लेकर आए हैं बिपिन जी और मिन्नी जी की आवाज़ में, जो कि हमारी लास्ट मैच में उन्होंने परफॉर्म किया था। गाना मुकेश जी और लता जी की ओरिजिनल वॉइस का है और मूवी है शोर। तो चलिए सुनते हैं अगला खूबसूरत गाना।

वाह, इस एक यूनिक गाने को इतनी खूबसूरती से निभाने के लिए विपिन जी, मिन्ने जी, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत ही मज़ेदार रहा ये परफॉर्मेंस आपका। और अब जो अगला गाना लेकर आ रहे हैं, हम आपको 90s में लेके चल रहे हैं। और अगले गाने के सिंगर्स हैं मिस फाल्गुनी एंड मिस्टर बाबू जी। मिस्टर बाबू पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं और फाल्गुनी तो हमारी रेगुलर सिंगर है ही, जिसको आप लोगों ने सुना हुआ है। गाना है तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, ये अलका याग्निक और कुमार शानू जी की आवाज़ में गाया गया है। तो चलिए सुनते हैं इस खूबसूरत गाने को।

क्या बात फाल्गुनी बाबूजी, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति रही आप दोनों की। बहुत ही उम्दा तरीके से इस गाने को निभाया है आपने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को गाने के लिए। और अगली जो पेशकश है वो अगर सावन के गाने हो और ये गाना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मूवी का नाम भी है आया सावन झुमके और गाना भी है आया सावन झुमके, तो सावन की बात हो और ये गाना ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इस गाने को दो बहुत ही बेहतरीन सिंगर लेकर आ रहे हैं, मिस सविता और मिस्टर अनंत। मिस्टर अनंत के बारे में कहना चाहूँगी, वो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, गाता रहे मेरा दिल में वो पहली बार आए, और अब जयपुर रेडियो में भी उनकी पहली प्रस्तुति है और बहुत ही बढ़िया उम्दा कलाकार है वो, बहुत ही सुरीले सिंगर है। तो बहुत खुशी है हमें कि इस खूबसूरत गाने को लेकर आ रहे हैं अनंत जी और सविता जी। चलिए सुनते हैं।

वाह क्या बात सविता जी, अनंत जी, बहुत ही खूबसूरत गाना और उतनी ही खूबसूरत आपकी परफॉर्मेंस रही। सविता जी हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है और हमारे हर प्रोग्राम में गाती है, तो हमारे ही वो रेगुलर मेंबर है, रेगुलर सिंगर। और अनंत जी का जो पहला अनुभव रहा वो बहुत अच्छा रहा, तो इस गाने को निभाने के लिए आप दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ। अब अगली पेशकश जो है वो अगेन हम जा रहे हैं 90s के दौर में, और ये गाना जो लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन सिंगर है दोनों, मिस बेला एंड मिस्टर जयेश। बेला जी हमसे पहली बार जुड़ी है इस प्रोग्राम में भी और गाता रहे मेरे दिल इवेंट में भी, बहुत ही बेहतरीन कलाकार है वो भी। जयेश जी भी हमारे ग्रुप के रेगुलर सिंगर है और आते रहते हैं, दोनों ही बहुत बेहतरीन कलाकार है और इस खूबसूरत गाने को दोनों ने बहुत ही अच्छे से निभाया है। गाना है जो हाल दिल का इधर हो रहा है, मूवी सरफरोश है, कुमार सारू और अलका याग्निक जी ने इस गाने को गाया था स्क्रीन पे, और इस खूबसूरत गाने को चलिए अब सुनते हैं हम बेला जी और जयेश जी की आवाज़ में।

वाह बेला जी, जयेश जी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही आपकी, बहुत ही मज़ा आया सुनने का। दोनों खूबसूरत आवाज़, बहुत ही मज़ेदार रहा ये परफॉर्मेंस। आपको खूब सारी बधाइयाँ जयपुर रेडियो पे आने के लिए और इस खूबसूरत गाने को निभाने के लिए। चलिए तो अब अगली जो पेशकश है वो भी 90s का ही गाना है और उसके जो सिंगर्स है उसमें से एक फीमेल सिंगर जो आपके साथ अभी एंकरिंग कर रही है, आपको जो आपके साथ जो बातें कर रही है वो यानी कि मैं अमीषा और मेरी को सिंगर है मिस्टर परिन। परिन जी के बारे में कहना चाहूँगी, बहुत ही लाजवाब सिंगर है, बहुत ही बढ़िया कलाकार है और वो अहमदाबाद से स्पेशली हमारी इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे और वो बहुत ही अच्छे आरजे भी है और एक बढ़िया कलाकार तो है साथ में उम्दा इंसान भी है। तो परिन जी और मेरी आवाज़ में चलिए सुनते हैं 90s का वो गाना जो सावन के मौसम को बहुत ही अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट करता है। सावन बरसे तरसे दिल, ये गाना हमारी अगली पेशकश है, चलिए सुनते हैं।

वाह परिन जी, आप पहली बार हमसे गाता रहे मेरा दिल से और जयपुर रेडियो से जुड़े, उसकी हमें बेहद खुशी है। बहुत ही खूबसूरती से निभाया आपने ये गाना। मेरे साथ इस गाने को गाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अब अगले गाने की तरफ। ये भी एक बहुत ही मज़ेदार गाना है, रेन सॉन्ग है, और इस गाने को लेकर जो आ रहे हैं वो सिंगर्स है मिस कल्पना और मिस्टर जीत। जी हाँ दोस्तों, ये रियल लाइफ कपल है और मिस्टर जीत, जैसे कि आप जानते हैं, इस गाता रहे मेरे दिल के ऑर्गेनाइज़र हैं। तो इस खूबसूरत जोड़ी के साथ हम सुनते हैं अगला गाना, अब के सावन में जी डरे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो चलिए सुनते हैं इस गाने को।

वाह वाह, क्या बात। कल्पना जी, जीत जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया आपने इस गाने को, बहुत ही मजा आया, बहुत ही बढ़िया गाया दोनों ने। तो आपको बहुत सारी बधाई है इस गाने को निभाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, जो लेकर आ रही है मिस रेशमा और मिस्टर संदीप। रेशमा जी हमारे ग्रुप में गाते हैं और काफ़ी बार आते हैं। संदीप जी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार हमारे गाता रहे मेरा दिल इवेंट में आए हैं, और दोनों का ही जयपुर रेडियो में ये पहला परफॉर्मेंस है, पहली प्रस्तुति है। तो आप दोनों को बहुत सारी बधाइयां जयपुर रेडियो में आने के लिए। वो जो गाना लेकर आ रहे हैं वो है सावन कुछ कह रहा है, और यही गाने में दिखाया है कि क्या कह रहा है। लता जी और रफ़ी जी की खूबसूरत आवाज़ में ये गाना निभाया गया था और बहुत ही पॉपुलर रेन सॉन्ग नंबर है। तो चलिए सुनते हैं रेशमा जी और संदीप जी की आवाज़ में ये खूबसूरत गाना।

वाह वाह मिन्नी जी, संदीप जी, क्या खूबसूरत तरीके से निभाया आपने इस खूबसूरत गाने को। बहुत ही मज़ा आया सुनने में, बहुत ही बढ़िया गाना, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति रही आप दोनों की। बहुत सारी बधाइयाँ आपको। तो चलिए अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी गाने की तरफ, जिसको लेकर आ रहे हैं एक रियल लाइफ कपल। गाना भी उतना ही मज़ेदार और सुंदर है, और ये जो सिंगर कपल है वो भी बहुत मज़ेदार और सुंदर है, मिस मेघा और मिस्टर कौशल। ये भी हमारे ग्रुप के रेगुलर सिंगर हैं, लेकिन जयपुर रेडियो में आज उनकी पहली प्रस्तुति है, तो हम उनको खूब सारी बधाइयाँ देते हैं जयपुर रेडियो के साथ जुड़ने के लिए। वो जो गाना लेकर आ रहे वो बहुत मज़ेदार पॉपुलर नंबर है, जलता है जिया मेरा बीगी बीगी रातों में। तो चलिए मिस मेघा और मिस्टर कौशल की खूबसूरत आवाज़ में सुनते हैं अगला गाना।

वाह कौशल जी, मेघा जी, बहुत ही उम्दा प्रस्तुति रही आप दोनों की। बहुत ही मज़ा आया ये गाना सुनने में आप दोनों की आवाज़ में। तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ इस गाने को निभाने के लिए और जयपुर रेडियो में अपनी पहली प्रस्तुति करने के लिए। इस एपिसोड 9 की एक खास बात रही कि ये जो भी गाने हमने आज प्रस्तुत किए सारे ड्यूएट्स थे और सारे ही रेन सॉन्ग्स थे जो सावन और बरसात के माहौल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्योंकि हमारी जो लास्ट इवेंट हुई थी गाता रहे मेरा दिल सीजन 8, वो रेन सॉन्ग्स के थीम पे बेस्ड थी और उसी एपिसोड से, उसी सीजन से हमने ये गाने लिए हैं। तो सारे ही गाने रेन सॉन्ग्स थे, बहुत ही मज़ा आया सुनने में। आशा करती हूँ श्रोतागण को भी बहुत ही मज़ा आया होगा। इस बार हमारे साथ आरजे देव नहीं जुड़ पाए क्योंकि वो अपने बर्थडे के चलते और कुछ इवेंट्स के चलते बिजी चल रहे थे। परसों ही उनका बर्थडे गया है, उनको हम जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं बिलेटेड ही सही। लेकिन आप यूँ ही खुश रहिए, यूँ ही जयपुर रेडियो में अपनी आवाज़ सुनाते रहिए और हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए। मैं हमारे सारे सिंगर्स, गाता रहे मेरा दिल के सारे सिंगर्स, सभी श्रोतागण जो हमें सुन रहे हैं और गाता रहे मेरा दिल के ऑर्गेनाइजर्स, जयपुर रेडियो के संचालक, सभी जो इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं, इस प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं एपिसोड नंबर 10 अगले माह। तो तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, गाता रहे मेरा दिल से जुड़े रहिए और जयपुर रेडियो से भी जुड़े रहिए। धन्यवाद। मैं गाता रहे मेरा दिल के श्रोतागण और जयपुर रेडियो के श्रोतागण से ये बात कहना चाहूँगी कि हमारा अगला प्रोग्राम यानी कि गाता रहे मेरा दिल इवेंट जो कि वडोदरा में नेक्स्ट होने वाला है, वो 6 सितंबर को हो रहा है वास्तविक ऑडिटोरियम में। ये हमारा ऑडिटोरियम में पहला शो है और इसे देखने के लिए सभी श्रोतागण आमंत्रित है क्योंकि इसमें हमने कोई चार्जेस नहीं रखे हैं सुनने के लिए। तो आप सभी जो जयपुर रेडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, गुजारिश है कि 6 सितंबर को वास्तविक ऑडिटोरियम वडोदरा में हमारे जो इवेंट होने जा रही है, शाम 4 बजे से 8 बजे का टाइम है और हमारे सिलेक्टिव सिंगर्स उसमें गा रहे हैं। तो आप सभी उस प्रोग्राम को सुनने के लिए ज़रूर आए। जो बड़ोड़ा में रहते हैं वो तो आए ही, लेकिन अगर कहीं और से भी कोई आ पा रहा है सुनने के लिए तो ज़रूर शामिल हो इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। तो आप सबका स्वागत रहेगा 6 सितंबर वास्तविक ऑडिटोरियम शाम 4 बजे से 8 बजे तक।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरूर सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय।

0: वहाँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्कार।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

0: शेरवाली भजन को आवाज दे रहे थे समीर मुंबई से।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम शिव भक्ति धारा, और इस भक्ति धारा की सुरीली सिंगर हैं अलका उपाध्याय, कोलकाता वेस्ट बंगाल से।

कोटि कोटि दिगंबरा। आप सुन रहे हैं अलका त्रिपाठी को। शिव भक्ति धारा प्रोग्राम में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।

मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा न कोई दूजा। और जिस मत में सत्यम शिवम सुंदरम बसते हैं वो मंदिर ही हो सकता है। और हम इस सावन में मन

ओम नमः शिवाय। शिव का नाम ले सुबह ले चाहे शाम ले। ओम नमः शिवाय ले इसके सिवाय

शिव भक्ति धारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अलका उपाध्याय की आवाज में। कोलकाता और वेस्ट बंगाल से हमारे साथ इन प्यारे से शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय।

ओम नमः शिवाय। अलका उपाध्याय की आवाज भक्ति धारा प्रोग्राम में शिव भजनों के साथ आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका उपाध्याय की आवाज शिव भजनों की पहचान।

कहत अलका उपाध्याय। दुख हरो, दारिद्र हरो, कष्ट हरो, रोग हरो, पीड़ा हरो, दर्द हरो, हे हरो, सबका भला करो, हे भोले, हे शिव शंकर, आपके सिवा।

बम बम भोले और उसकी शरण में हम सभी, और ये शरणागत के गीत लेके आई अलका उपाध्याय।

अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। आजादी के इस पावन पर्व पर आइए अपने वीर शहीदों को नमन करें और देशभक्ति के रंग में रंग जाएं। आज का ये खास कार्यक्रम।

वतन के नाम, जहाँ हर सुर में देश का सम्मान है और हर गीत में तिरंगे का अभिमान है। तो आइए देशभक्ति के जज्बे के साथ 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। आजादी के इस पावन पर्व पर आइए अपने वीर शहीदों को नमन करें और देशभक्ति के रंग में रंग जाएं। आज का ये खास कार्यक्रम समर्पित है हमारे प्यारे हिंदुस्तान के नाम, जहां हर सुर में देश का सम्मान है और हर गीत में तिरंगे का अभिमान है। तो आइए देशभक्ति के जज्बे के साथ शुरू करते हैं आजादी का ये खास खूबसूरत सफर। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है।

आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। ये आजादी हमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से मिली है। आज हम उन्हें दिल से नमन करते हैं। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आप सुन रहे हैं आरजे प्रीत को। लेकर के आई हूँ कुछ चुनिंदा सिंगर्स जो अपनी आवाज सिर्फ मनोरंजन के माध्यम के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक संदेश पहुँचाने के

0: जय हिंद।
1: जयपुर रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सुचित्रा गोपीनाथ सियादत से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको देना चाहती हूँ।

नमस्ते, जयपुर रेडियो की ओर से मैं डॉक्टर कंकना आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कहीं पढ़ा था मैंने, आज आपको सुनाना चाहती हूँ दो पंक्तियाँ। खान है हम, शान है हम, इस मिट्टी की पहचान है हम, झुकने न देंगे इस तिरंगे को कभी, क्योंकि हिंदुस्तान की जान है। और भी पढ़ा था मैंने, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिलों में जाए। हम सबको अपने भारतीय होने पर कितना गर्व है ना। आइए आज हम प्रण लेते हैं भारत की गरिमा को कहीं झुकने नहीं देंगे और हमेशा इस भारत

0: जय हिंद।
1: मैं श्याम बिहारी शर्मा कोलकाता वेस्ट बंगाल से 15 अगस्त पावन पर्व के उपलक्ष्य के ऊपर जयपुर रेडियो और हम सभी संगीत प्रेमियों की ओर से भारत के शहीदों को बारंबार नमन है।

मैं पंकज कुमार चतुर्वेदी रांची से आप सबों का स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 15 अगस्त 1947 को हमने स्वाधीनता हासिल की, इसके लिए शहीदों को नमन। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे।

जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। मैं हूँ जयश्री होम पूना से।

मैं हीना मेहता अहमदाबाद गुजरात से हूँ और जयपुर रेडियो टीम और रेडियो लिसनर को मेरे स्वतंत्र दिन की बधाई देती हूँ।

शुभ्रा भट्टाचार्य आमेर जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं सभी देशवासियों को और श्रोताओं को जयपुर रेडियो की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आप सुन रहे हैं आज ये गीत को। दोस्तों आज हमने गीतों और सुरों के माध्यम से अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान को महसूस किया। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और गर्व की बात क्या होगी कि हम अपने सुरों को अपनी मातृभूमि के नाम कर सके। इसी देशभक्ति और गर्व के साथ आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन याद रखिए कार्यक्रम खत्म हो सकता है, देश के लिए हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। आज जो चुनिंदा सिंगरों ने हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए हैं उनके नाम लेना चाहूंगी।

जी और डॉक्टर कनकना जी, आप सभी सिंगर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस तरीके के प्रोग्राम्स लाते रहेंगे, लेकिन जाते जाते ये जरूर कहेंगे, आइए तिरंगे की शान हमेशा ऊंची रखें। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए डिजिटल वॉइस पर जयपुर रेडियो।

श्रोता सुन रहे थे विशेष प्रोग्राम, प्रस्तुत कर रही थी आरजे प्रीत। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। कृपया हमारे

देखो भूमिका देख लेना, पहले कहा था हम न करेंगे प्यार और फिर कह रहे हैं प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे और गाते जाएंगे इस मंच पर जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आपने सुना अनुराग से ये सुरीला सॉन्ग। और प्यार करने के नाम से ये जमीन गाने लगी, आसमां गाने लगा और साथ पूरा जहां गाने लगा। तो हम भी गाएं और सुने अनुराग के इस अगले गीत को।

0: और अब हो चला है इस प्रोग्राम से विदा लेने का समय। तो अर्चुरानु 16 और अनुराग दोनों का आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार, प्रोग्राम में आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा।
1: मानसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मॉनसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका, और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्चू रानू 16। पहले गीत में अर्चू रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से

उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: गीत को ज्वाइन करें।
1: महान दे रहे थे गीत, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, आप कहीं नहीं होंगे, आपकी जवां आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं इस मंच के अगले सिंगर। आइए सुने अर्चू रानू के संग इस अगले गीत को। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा एपिसोड में, आपकी आवाज आपकी पहचान।

बबलू आर्य साथ गा रहे थे अर्जु रानू के गीत आज रपट जाए तो। भई मौसम बारिश का है, जमीन भी भीगी है और इस मौसम की पहली बरसात भी है। ऐसे में झूमते गाते मन के साथ आप सुन रहे हैं सुरीले गीतों की सौगात। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। बबलू आर्य और अर्चु रानू के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।

विशाल शर्मा जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू के संग आवाज में आवाज मिला रहे थे प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। दिल को देने की बात, दिल की सौगात, अपनी महबूबा के नाम इस गीत में हमने सुना। और दिल का फैसला भी खुद ब खुद ही करने वाले हैं, ओ मेरी जाने जा कहो या महबूबा कहो। विशाल शर्मा और अर्चु रानू के संग हमने सुना ये सुरीला दो गाना। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में आज आपने जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर के साथ अब तक चार सुरीले सिंगर्स को सुना। आप अपनी समझ और सोच के हिसाब से अपना फीडबैक सबसे सुरीले सिंगर के लिए सेंड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत स्मूलियन के साथ अर्जुन।

360 के साथ अर्चो रानू को सुना आपने, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो। और हम भी यही कहेंगे कि अगर आपका गीत हो दो गाना तो अर्चो रानू के संग हो। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस सुरीले मंच पर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आपके फीडबैक हमें जरूर प्रेषित करें। और हाँ, जिन सिंगर्स ने इस प्रोग्राम के तहत अपने सॉन्ग सेंड किए हैं उनका भी नंबर जल्द ही आने वाला है। उम्मीद है आरजे भूमिका और अर्जुन रानू का संग इस प्रोग्राम में आपको भाया होगा। इसी के साथ आज के एपिसोड से विदाई, नमस्कार। मॉनसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मॉनसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका, और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्चो रानू 16। पहले गीत में अर्चो रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: चीज को ज्वाइन करें
1: कहीं नहीं होंगे, आपकी जमा आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में
2: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर, भूमिका सुनते हैं क्या गा रहे हैं अनुराग। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मंच के मेल सिंगर अनुराग।

अनुराग कह रहे हैं हम ना करेंगे प्यार, अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी बात, अपना अपना राग, अपना अपना आलाप। आइए सुनते हैं अगले गीत में क्या कह रहे हैं अनुराग।

देखो भूमिका देख लेना, पहले कहा था हम न करेंगे प्यार और फिर कह रहे हैं प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे और गाते जाएंगे इस मंच पर जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आपने सुना अनुराग से ये सुरीला सॉन्ग। और प्यार करने के नाम से ये जमी गाने लगी, आसमां गाने लगा और साथ पूरा जहां गाने लगा। तो हम भी गाएं और सुने अनुराग के इस अगले गीत को।

और अब हो चला है इस प्रोग्राम से विदा लेने का समय। तो अर्चुरानु 16 और अनुराग दोनों का आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार।

0: प्रोग्राम में आवाज हूं तो तू है गीत मेरा।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुपर सिंगर, और सुपर सिंगर प्रोग्राम में आज की सुपर सिंगर आई है पुणे महाराष्ट्र से, श्वेता नायर त्रिवेदी। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपका। आपकी आवाज आपकी पहचान।

लेकिन हम जानते हैं, आप सुन रहे हैं श्वेता नायर त्रिवेदी की आवाज और जयपुर रेडियो की जानी पहचानी आवाज, आपकी आवाज, आपकी पहचान। बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने कैसे कहूं कैसे कहूं। और ये कह रही थी अपनी सिंगिंग के माध्यम से श्वेता नायर त्रिवेदी। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, और आज इस मंच पर जिसका नाम है सुपर सिंगर्स, और आज की सुपर सिंगर मेहमान है श्वेता नायर त्रिवेदी, पुणे महाराष्ट्र से। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

समय का ये पल थम सा गया है। सच में श्वेता, आपके गीतों को सुनने के लिए शायद समय भी कुछ देर के लिए रुक गया है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, और हमने तो गीत से पहले कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं वो अपने फीडबैक दे रहे हैं और कह रहे हैं आप बहुत ही शानदार गा रही हैं, आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी।

अपनी आवाज की नूर की रोशनी लेके इस मंच पर आज उपस्थित हैं श्वेता नायर त्रिवेदी, आपकी आवाज आपकी पहचान। पुणे महाराष्ट्र से हमारे संग आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर को आप सुन रहे हैं, आइए सुनते हैं

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम सुपर सिंगर में हमारे संग हमारे साथ इस मंच पर श्वेता नायर त्रिवेदी अपने सुरीले गीतों के साथ, आपकी आवाज आपकी पहचान।

अभी तो हम ये कहेंगे कि अभी आप गाओ और अभी हम सुने, हमारे श्रोता सुने कि आपके गीतों ने हमारा दिल जीत लिया। आपकी आवाज, आपकी पहचान सुपर सिंगर जयपुर रेडियो की श्वेता नायर त्रिवेदी अपने खूबसूरत गीतों के साथ। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर त्रिवेदी।

ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, और हम ये कहेंगे कि ये दिल सुन रहा है आपके सुरीले गीतों की जुबान। हमारे संग हमारे साथ श्वेता नायर त्रिवेदी, आपकी आवाज आपकी पहचान अपने सुरीले सॉन्ग्स के साथ। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर।

बहुत सच कहा आपने, आपकी आवाज में जादू भी है और नशा भी है, और ये चीज हमारे श्रोता महसूस भी कर रहे हैं। सुरीली आवाज की धनी हमारी आज की सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी को सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: और हमारे श्रोता और हम कहेंगे कि श्वेता तू थोड़ी देर और ठहर जा, तो आप ठहर जाएंगी। और यदि समय होता तो सच में आप ठहर जाती और हमें और गीत सुनाती। आपने सुना जयपुर रेडियो का प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की सुपर सिंगर रही श्वेता नायर त्रिवेदी। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए आप सुनते हैं एक कहानी, सुगिया फुलवा। कहानीकार हैं विद्या सिंह।
1: कहानी का शीर्षक है सुगिया फुलवा। ध्यान नहीं आता पहले पहल उसे कब और कहां देखा था, किंतु जब से होश संभाला कभी इसके कभी उसके और अपने घर नियमित रूप से देखा। उसके चेहरे के वर्णन के लिए कुरूप शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे सीमित शब्दकोश में दूसरा शब्द है भी नहीं। मोटी मोटी झुर्रियों से भरा लंबोतरा चेहरा, दांत इक्के दुक्के, मिचमिचाती आंखें, थोड़ी थोड़ी देर में वह निचले होंठ को अंदर खींचती जैसे मुंह से गिरती लार को रोकने की कोशिश करती हो। गोद के बच्चों को डराने के लिए माएं कहती, सो जाओ नहीं तो अभी सुगिया से पकड़वा दूंगी। इस तरह सुगिया दिन रात सेवा में हाजिर रहती, दिन में साकार और रात में निराकार रूप में। 2 जून की रोटी जुगाड़ने में उसे न जाने कितने दरवाजे अगोरने पड़ते। उसकी रिरियाती हुई आवाज न मालूम प्राकृतिक थी या निरीहता वश वैसी हो गई थी, अनुमान से परे है। कुछ भी बोलने में वह अत्यंत संकुचित हो जाती। संभवतः उसे कोई बीमारी जरूर रही होगी, उसकी लार उसके वश में नहीं थी। एक बार तो उसकी इस आदत ने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। हुआ यों कि वह पीतल के गगरे में पानी लेकर मेरे ओसारे में गोबर डाल रही थी। गोबर को गगरे के पानी से पतला करती और ओसारा लीपती हुई पीछे ही पीछे खिसकती जाती। अचानक लार गगरे में टपक पड़ी। चश्मदीद गवाह बने राघव भैया, उन्होंने गगरा भुसौरे में छिपा दिया। शाम को पानी भरने के लिए जब मनई कहार ने गगरा ढूंढना शुरू किया तो हड़कंप मचा। अड़ोस पड़ोस में पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। अंततः भैया ने गगरा भुसौरे से निकालकर प्रत्यक्ष कर दिया, साथ ही एक विस्फोट भी किया कि अब यह गगरा कुएं में डालने लायक नहीं है, इसमें सुगिया का लार गिर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। स्थिति भांपते हुए माँ ने भैया को आंखें तरेरी, ये तो है धोखा भयल हो, इतना छोट मुंह के गगरा में लार कैसे गिर जाई। भैया अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। खैर, दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। माँ रसोई से उपली के ऊपर रखकर जलते हुए अंगारे ले आई और उन अंगारों को गगरे में डाल दिया। आग सब कुछ के पवित्र कह दे ले, मने ही लिया एके माज के भरा पानी, अब गगरा फेंक थोड़े जाइए। अति की हद तक छुआछूत मानने वाली माँ का सहज समाधान उसकी प्रत्युत्पन्न मति की गवाही दे रहा था। दोबारा वह प्रसंग किसी की जवान पर नहीं आया, सुगिया का आना पूर्ववत बना रहा। उसकी आदत थी या तो वह कहीं काम कर रही होती या मेरे घर के ओसारे में उकड़ू बैठी आदेशित होने का इंतजार करती रहती। गांव में सभी जानते थे सुगिया कहाँ मिलेगी, जिसे जब जरूरत होती आकर बुला ले जाता। उसका बेटा फुलवा भी उसके साथ आता और ठाकुरों के घर के छोटे मोटे काम कर देता। किसी के पशु को चारा डाल देता या गोबर साफ कर देता। स्कूल का मुंह तो उसने शायद ही कभी देखा हो। दोपहर में माँ बेटे मढ़ई में चारा काटने की मशीन के बगल में बची थोड़ी सी जगह में कपड़े में बंधी रूखी सूखी रोटी पानी से निगलते। माँ दयावश अक्सर उसे कभी अचार कभी गुड़ दे देती, लेकिन वसूली करना भी न भूलती, ले रोटी खाए के उसरसो पीट दे। मौसम के अनुसार काम लेने में माँ माहिर थी। आबनूसी रंग की सुगिया का गोरा चिट्टा बेटा देखकर यकीन नहीं होता था यह सुगिया के कोख में पला होगा। सुगिया कभी ससुराल भी गई होगी, नहीं तो उसका बेटा कहाँ से आता। वह इतनी समर्थ तो थी नहीं कि जमाने को ठेंगा दिखाकर कुंवारी माँ बन जाती। वह बहुत पहले की बात होगी, मेरे होश संभालने से बहुत पहले की बात। मैंने कई बार देखा फुलवा अरंडी के पत्ते पर रखकर बासी रोटी को नमक प्याज से खा रहा होता। सुगिया टुकुर टुकुर उसे खाते हुए निहारती रहती, जैसे निवाला फुलवा के मुंह में नहीं खुद सुगिया के मुंह में जा रहा हो। उस समय सुगिया और उस गौरैया में कोई फर्क न लगता जो चोंच में दाना भरकर अपने चूजे को खिलाती है। माँ के ही मुंह से कभी सुना था, फुलवा 2-3 साल का था जब सुगिया के पति ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। विवाह के इतने दिनों बाद क्यों निकाला, आज सोचती हूँ। एक कोठरी उसके माँ बाप ने उसे दे दी थी जिसमें दोनों महतारी पूत रहते थे। जब तक माँ बाप रहे तब तक तो ठीक था, उनके आंख मूंदते ही भाई भौजाई तरह तरह से तंग करने लगे कि किसी तरह कोठरी खाली कर दे। यह भी पक्की जान, कितनी बार उसके बर्तन चोरी गए, पकती दाल में भौजाई नमक झोंक देती, पर कोठरी नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। हार कर भाई ने घर के पिछवाड़े की खाली जमीन पर एक छप्पर डलवा दिया और सुगिया ने मिट्टी खोद खोद कर 4 कच्ची दीवारें भी खड़ी कर ली। इस तरह बन गया था माँ बेटे का आशियाना। भौजाई को फिर भी चैन कहाँ था, वह सुगिया को निकालने के नए नए तरीके आजमाती, लेकिन सुगिया मोर्चे पर डटी रही, उसने हार नहीं मानी। अब फुलवा भी कुछ बड़ा हो गया था, काम भी उसे मिलने लगा था। कभी पहलवान मामा की हलवाही करता, कभी चिरकुट नाना के खेतों में हल के पीछे पीछे बीज डालता, कभी मोटक भैया की भैंस नहलाने नदी ले जाता। गरज यह कि साल भर उसके काम की जुगत भीड़ ही जाती, पूरा गांव उसका ननिहाल था। उम्र के हिसाब से मामा नाना भैया नानी मामी भौजी बहन का संबोधन वह स्वयं चुन लेता। फुलवा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका रंग रूप और निखरता गया। ठाकुर टोले का शायद ही कोई लड़का इतना हृष्ट पुष्ट हो जितना फुलवा। नहीं बदली तो उसकी आवाज, उसकी उम्र के लड़कों की आवाज में भारीपन आ गया था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी बारीक लड़कियों सी थी। बच्चे उसका खूब मजाक बनाते और बात बेबात तरह तरह से छेड़ते। कई बार तो सुगिया चिढ़कर उन्हें गालियां तक दे देती, लेकिन बच्चे मुफ्त का मनोरंजन कहाँ छोड़ने वाले थे। अब फुलवा की उम्र शादी लायक हो गई थी। जहाँ उसके हम उम्र ठाकुरों के सौदे लड़कों के लिए देखुए मोटी रकम के साथ कन्या देने को उतावले रहते, फुलवा की उसकी बिरादरी का कोई लड़की देने को राजी नहीं था। सुगिया आए दिन गांव में नई नई बहुओं को देखती तो उसके दिल में अरमान मचलने लगते। अरमान बेटे के सिर पर सेहरा देखने का, अरमान आंगन में बहू के पैरों की रुनझुन सुनने का। कई साल इंतजार करने पर भी जब देखुए उसके दरवाजे पर नहीं आए तो वह निराश होने लगी। अब गांव के शरारती तत्वों की बन आई, वे सुगिया से कहने लगे, हम तोरे सुगवा का ब्याह कराए दे, लड़की वालन के 1500 देवे की पड़ी। माँ बेटे अपना पेट काट काट कर बचाते, इधर उधर से कुछ उधार बाढ़ी करते और रकम बड़ी उम्मीद से ब्याह कराने का भरोसा देने वाले हाथों को सौंप देते। इंतजार में सुगिया की आंखें पथरा जाती, रकम लेने वाले कोई न कोई बहाना बना देते और अंत में हजम कर जाते। एक बार तो गांव के दुधुआ नाई ने, जो खुद 40 की उम्र में कुंवारा बैठा था, उसे वचन दिया कि वह फुलवा का ब्याह कराएगा। दुधुआ अपने अजीबो गरीब कारनामों से हमेशा गांव की चर्चा में बना रहता। एक बार तो जिद पर अड़ गया कि गांव की पोखरी के किनारे किनारे जो बिजली के खंभे गड़े हैं, जिनसे होकर कई तार जा रहे हैं, वह उन्हीं में से किसी एक खंभे पर बैठकर सुतली काटेगा। उन दिनों गांव में बिजली नहीं थी। समझदार लोगों ने रोका कि इन तारों से बिजली का करंट पास होता है, यह उसी की लाइन जा रही है, लेकिन वह कहाँ मानने वाला, करंट होता तो दिखता नहीं, मैं नहीं मानता करंट वरंट। और उसने लोगों की बात अनसुनी कर दी। एक दिन उसने घोषणा की, आज हम सुतली काते जाव, जेके देखे के होए चले हमरे संगे। फिर क्या था, देखते देखते बच्चों की टोली दुधुआ के पीछे। वह बच्चों का हीरो बना, सन बगल में दबाए, सुतली कातने की चरखी हाथ में लटकाए चल पड़ा। औरतों ने सुना तो उसकी किस्मत पर तरस खाकर रह गईं। आज कोई आगे पीछे होता तो जरूर रोकता। विधवा बड़ी सावधानी से खंभे पर चढ़ रहा था। नीचे से सांस रोके बच्चे उसे ऊपर और ऊपर चढ़ता देख रहे थे। उसने ज्यों ही ऊपर पहुंचने के लिए एक हाथ से तार पकड़ना चाहा, उंगलियां तार से चिपक कर रह गईं। थोड़ी देर में उसे ऐसा जोर का झटका लगा कि वह धड़ाम से नीचे जमीन पर आ पड़ा। बच्चे सहम गए। पास ही जुलाहों के घर थे। हल्ला सुनकर बहुत से वहां इकट्ठा हो गए और चारपाई पर लाद कर उसे उसके घर पहुंचाया। पड़ोसियों ने गरम राख से न जाने कितनी देर तक उसके तलवे हथेलियां मली, तब जाकर उसके अचेत शरीर में चेतना लौटी। तब से उसकी एक हथेली हमेशा हमेशा के लिए मुट्ठी की शक्ल में बदल गई। फुलवा का विवाह कराने का वचन देकर एक बार फिर वह चर्चा में आ गया था। सुगुआ ने दुधुआ नाई की राय से साड़ी, पेटीकोट, जम्पर, चप्पल, क्रीम, पाउडर और तमाम बहुओं के इस्तेमाल में आने लायक सामान खरीद कर उसे दे दिया। उसे नकद पैसे भी दिए। एक दिन अचानक लोगों ने देखा दुधुआ की कोठरी में ताला लटक रहा था। अकेले आदमी का क्या, जहाँ चाहे वहाँ चल दे। लेकिन जब महीना भर हो गया और ताला नहीं खुला, तब गांव वालों को खटका हुआ। सुगिया के मन में उम्मीद जगी कि इस बार तो वह जरूर फुलवा के लिए लड़की ढूंढ कर लौटेगा। दुधुआ लौटा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ उससे कम से कम 20 साल छोटी लड़की थी, जिसे वह न मालूम कहां से भगाकर लाया था। एक दिन उसने गांव भर में न्योता भिजवाया कि वह अपनी रिश्तेदारी की एक अनाथ लड़की से शादी कर रहा है और गांव के लोग मुंह जुठारने जरूर आए। गांव में यह बात फैलते देर नहीं लगी कि जो साड़ी उसने सुगिया से हथियाई थी, वही साड़ी उसकी होने वाली बीवी ने शादी की रात पहनी थी। असल में वह साड़ी सुगिया ने रवि पंडित से मंगाई थी और उन्होंने ही दुधुआ की शादी के मंत्र पढ़े थे। सुगिया ने जब यह सुना तो वह कट कर रह गई। उसने रवि पंडित को भी जी भर कर सरापा, जिन्होंने दुधुआ का सहयोग किया था। गांव के शरारती लड़के उसे अलग छेड़ते, फिल्मी हीरोइनों की तस्वीरें दिखाकर पूछते, इस लड़की से करोगी सुगवा का ब्याह? धीरे धीरे सुगिया सबकी मंशा भाप गई। वह समझ गई कि बेटे के सिर पर सेहरा देखना उस जैसी माँ के नसीब में नहीं होता।

0: तू मर जा तो हर महतारे बाप भाई बहन मर जाए, हमार फुलवा कहे के मरी। फिर मेरी ओर देखकर अत्यंत कातर स्वर में उसने कहा, देखा था बहिनी हमरे फुलवा के का कहत आई, ओकरे मरले ई का पई है। ऐसे न जाने कितने क्रूर मजाक उसे सहन करने पड़ते। गांव में यारू साई ने, जिसके अपनी कोई आस औलाद नहीं थी और बीवी भी वर्षों पहले गुजर गई थी, चंदा मांग कर अपनी कब्र बनवा ली थी। कब्र के चारों ओर उन्होंने पक्की दीवारें चिनवा दी थी। बाकी पैसा गांव के प्रधान के पास जमा कर दिया था कि जब वे मरे उनका शरीर उसी में दफनाया जाए और उनकी कब्र पक्की करा दी जाए। बिगड़ाए लड़के सुगिया को चिढ़ाते, जब यारूसाई मरी है तब का तब देख जाई, अब ही चल तू दोनों महतारी पूत के दफनाए दिहल जाए। दोनों के लायक काफी जगह हुई। सुगिया की बड़बड़ाहट चालू, तू जा कब्र में तो हर महतारी बाप जाए, हम फुलवा कहे के जाए। आखिरी बार मैंने जब उन्हें देखा, फुलवा आगे आगे मटमैली अंगोछी से सिर ढके, अपने नाप से दुगनी ढीली ढाली कमीज पहने, लाठी पर अपना भार संभाले, धीरे धीरे अपनी बस्ती की ओर जाने वाली पगडंडी पर चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे सुगिया चल रही थी, न मालूम कब बेटे को उसकी जरूरत पड़ जाए। दोनों खुसर पुसर करते जा रहे थे, मेरी जिज्ञासा ने सिर उठाया और मैं अपने को पूरी तरह कान में परिवर्तित हुई, कब उसके पीछे पीछे चलने लगी मैं खुद नहीं समझ पाई। फुलवा तू पहले मर जाते बचवा, तो तुर तेरही कह के हम आराम से मरित, कम से कम तू भगवान के पास शांति से रहते। जवाब में फुलवा का स्वर उभरा, नहीं माई, महतारी बाप को तेरही करे का फर्ज लड़का का होला, पहले तू मर जाती तो तोर तेरही हम खूब धूमधाम से करी। जिस सहजता से माँ बेटे मौत की बातें कर रहे थे, सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस दशा को माँ बेटे पहुँचे थे, क्या उसमें सिर्फ उन्हीं का दोष था? यह प्रश्न मुझे आज भी कचोटता है। फुलवा की हंसी और उसकी बातें मेरे कान में आज भी कैद हैं। और इतु मौत के बाद कहाँ से ले आईली, अभी तो हम 100 वर्ष जी अब, हा हा हा। और फुलवा चेष्टा पूर्वक हंसने लगा था। सुगिया फुलवा जब न तब मेरी चेतना के चौखट पर दस्तक देते हैं, इसे उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि समझी जाए। धन्यवाद।
1: आपने सुनी कहानी सुगिया फुलवा। कहानीकार रही विद्या सिंह। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुल फ्रू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा?
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, क्या नाम बताया उस ऐप
4: का? लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, वक्त खुशबू है बिखरता ही चला जाता है, ऐसे ही लम्हों को बटोर कर आपके लिए लाए हैं हम इन बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा और आज के एपिसोड में तकनीकी सहयोग के लिए हमारे साथ श्री ओपी शर्मा। मेरा मन सुकून पाता है जब ये दिल कोई गीत गुनगुनाता है, क्योंकि संगीत

0: मानव जीवन की एक मधुर धारा है, जज्बातों की भाषा है। तो आज इसी भाषा के एक वैज्ञानिक से है हमारी बातचीत। 1998 में सारेगामा शो का मेगा फाइनल जीतने वाले अपने एल्बम से संगीत की दुनिया में ऐसे छाए कि यश चोपड़ा ने उन्हें साइन किया वीर ज़ारा के लिए। आपको याद होगी वो कव्वाली,
1: जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ,

0: आया तेरे दर पर दीवाना, तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शैदाई, तेरे इश्क में है इससे मर जाना। आया तेरे दर पर दीवाना।
1: जी हाँ, ये पुरकशिश आवाज जिसमें रागदारी भी है और रूहदारी भी, प्रिंस ऑफ गजल अवार्ड से सम्मानित मोहम्मद वकील साहब की। नमस्कार मोहम्मद वकील जी।
0: नमस्कार सुषमा जी, आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी आवाज को सुनकर और भी अच्छा महसूस कर रही हूँ।
0: बहुत
1: मतलब
0: बहुत शुक्रिया, बहुत
1: सुकून सा मिल गया आपकी आवाज और ये सुर
0: शुक्रिया
1: सुन के। जी, बात
0: जी।
1: जब सुरों की होती है तो मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि वो कौन सी उम्र थी जब आप में सुरों की समझ पैदा होने लगी, संगीत आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया।
0: इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आपके जितने भी लोग मुझे आपके माध्यम से सुन पा रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, संगीत की समझ तो ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रोज रियाज करते हैं तब भी हम पूरी तरह संगीत को नहीं समझ पाते। लेकिन हाँ, संगीत पसंद जो आपने फरमाया, वो हम बहुत खुशनसीब हैं कि जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जिस परिवार में मेरी पैदाइश हुई, वो एक ऐसा परिवार जिन्होंने संगीत की इबादत की है। और जो जितने भी हमारे पूर्वज गुजरे हैं सबने भारतीय संगीत की सेवा की है, और उसी कदम पर उसी विरासत को लेके मैं भी चल रहा हूँ। और जो मेरे नाना जी थे, स्वर्गीय उस्ताद मोहम्मद अब्दुल हुसैन जयपुर वाले, और दादाजी उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब, भी बहुत बड़े फनकार थे महाराज राम सिंह जी के जमाने में। उसके बाद
1: जी
0: फिर मुझे संगीत की शिक्षा मिली पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब से। तो माहौल संगीत का मिला, तो इसलिए माहौल से इंसान को काफी फर्क पड़ता है। माहौल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों प्रभाव डालते हैं। तो बचपन से ही आंखें खोली तो संगीत का माहौल आसपास देखा, तो संगीत ये समझ लीजिए कि बचपन से ही पसंद बन गया।
1: बिल्कुल, आपके कानों में अजान के साथ साथ संगीत भी गूंजा, ये हम मानते हैं। तो वो एक ऐसा वक्त था मोहम्मद वकील जी जब जबरदस्त रियाज पर ध्यान दिया जाता था, तो तब क्या मन करता था उस छोटे से मोहम्मद वकील का कि रियाज करूं या खेलने जाऊं बाहर दोस्तों के साथ।
0: जी देखिए, हम जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आंखें खुली तो संगीत ही देखा और सुना। तो जो मेरे दोनों गुरुजी हैं वो अपने शागिर्दों को सिखाते थे, मेरी उम्र काफी कम थी जैसा उन्होंने मुझे बताया। तो उस वक्त तो एक शागिर्द थे जब जिनको वो कुछ याद करा रहे थे अपनी कंपोजिशन, तो मैं भी कमरे में आके बैठ गया रूम में।
1: अच्छा
0: तो उनसे कहा सिखाने के बाद कि भाई अब कल आप आइए और कल हमें सुनाइएगा। तो जब वो तो उसके बाद मैंने मुझे याद हो गई और मैं उसको थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने लग गया अकेले में। तो उस्ताद जी ने चुपचाप से सुन लिया। नेक्स्ट डे जैसे वो शागिर्द आया तो बोले बेटा कुछ सुनाओ। उनको याद नहीं हुई थी, लेकिन मुझे उन्होंने कहा सुनाओ तो मुझे याद हो चुकी थी। तो
1: वाह।
0: उन्होंने उन्होंने फिर देखा कि इसको शौक है, तो बाकायदा सिखाना शुरू की। तो ये एक ऐसा टाइम होता है ना कि जब आपको बचपन से ही आपको किसी चीज की अगर आदत हो जाए तो फिर वो हमेशा रहती है। और रियाज तो सुषमा जी, बड़े बड़े उस्तादों का, पंडितों का कहना है कि ये संगीत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रोज रियाज करना पड़ता है, रोज अपने काम को ठीक करना होता है, उसमें परफेक्शन आए इसके लिए ही रियाज जरूरी है। राज
1: बहुत, उसको पॉलिश करना
0: जी
1: होता है और हर दिन करना
0: जी
1: होता है। एकदम
0: जी
1: सही
0: जी
1: कहा आपने।
0: जी
1: गुरुओं की
0: जी
1: बात आपने की, मोहम्मद हुसैन साहब, अहमद हुसैन साहब, दो बहुत ही बड़े नाम आपने लिए गजल।

0: उठना है। संगीत तो ऐसी चीज है, वो पास फेल वाली चीज है, कंपटीशन है ही नहीं। संगीत तो पूजा है, इबादत है, जितनी आप करें उतनी कम है, तो ये बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, आपने जो भी अपने पल उठाए हैं अपनी जिंदगी के, और जिस तरह से ये सभी के सामने रखा है कि कैसे पूरी मेहनत से, चाहे बुरा वक्त भी आया, उसे भी आपने पॉजिटिविटी से आगे आप बढ़ते गए, पॉजिटिव
0: जी
1: वाइब्स आपने कभी नहीं छोड़ी, तो ये बहुत सीखने की बात है आपके व्यक्तित्व से।
0: शुक्रिया आपका। सुषमा जी, ये भी मेरे जो सुनने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ चीजें मैंने की हैं, जैसे कि अभी साजिद वाजिद साहब का काफी बड़ा नाम है बॉलीवुड संगीत में, बॉलीवुड म्यूजिक में, तो उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन साजिद भाई ने अभी वाजिद भाई के जाने के बाद एक यूट्यूब चैनल खोला, जिसका नाम है तालीम म्यूजिक। तालीम
1: अच्छा।
0: म्यूजिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है एज ए प्रोजेक्ट हेड, एज ए कंपोजर, की भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल तालीम के लिए कंपोज करें उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो मैंने कंपोज किया है, मेरे लिए सौभाग्य है कि अपने गुरु जी हैं उनके लिए मैंने कंपोज किया, उन्होंने गाया है एमोलसन साहब ने, हरिहरन साहब ने गाया है, अनूप जलोटा जी ने गाया है, कविता कृष्ण मूर्ति जी ने गाया है, शान भाई ने गाया है, पैपोन भाई
1: क्या
0: ने
1: बात।
0: गाया है, तो और एक गजल का गुलदस्ता लेकर हम लोग आ रहे हैं। और जो संगीत के सुनने वाले हैं, संगीत को और गजल को प्यार करते हैं, उन सबके लिए एक वाकई एक तोहफा होगा। तो बहुत जल्दी ये सीरीज शुरू होने वाली है, तो तालीम म्यूजिक से इसका इंतजार आपको करें, और बहुत जल्दी आप अच्छा कुछ सुनेंगे।
1: बिल्कुल, तो तालीम म्यूजिक को सुनने का बिल्कुल आप हम ध्यान रखेंगे, और आप अपनी आवाज के जरिए सबके दिलों में जो अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं वो इसी तरह बिखरती रहे, यही हम आपके लिए दुआ करेंगे। अब ये चाहेंगे कि अपने संगीत के जरिए आप सभी को एक खास मैसेज जो देना चाहें।
0: देखिए, मुझे ग्राम राजस्थानी साहब के चार मिसरे बड़ी पसंद है हमारे देश के लिए, कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे। तो मेरी यही दुआ है कि हमारा भारत देश हमेशा खुशहाल रहे, हम सब भारत देशवासी हमेशा प्यार मोहब्बत से रहें और स्वस्थ रहें, और सब आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ ऐसी बना रहे, मैं दुआ करता हूँ। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक लाइन मेरी जो गजल थी फर्स्ट सोलो एल्बम की, वो मैं सुनाऊं सुषमा जी, अगर आपकी इजाजत हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई।
1: क्या बात है मोहम्मद वकील जी, आपकी आवाज इसी तरह हमारे जहन में गूंजती रहे और सबके बीच खुशबू बिखेरती रहे, ये हम दुआ करते हैं आपके लिए। थैंक
0: बहुत बहुत
1: यू
0: शुक्रिया
1: सो
0: आपने
1: मच।
0: सुषमा जी, याद किया मुझे, थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मी।
1: थैंक यू।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश आज की इस खूबसूरत शाम का आपका मेजबान, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जयपुर रेडियो की इस बेहद सुरीली गीतमाला में, जिसका शीर्षक है आओ झूमे गाए। आज की महफिल का आगाज करने से पहले चंद पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, वो दिन भी क्या दिन थे, जब तपती धूप में हमें खेलते देख सूरज भी हमसे जुड़ता था, जब तपती धूप में हमें खेलते देख सूरज भी हमसे जुड़ता था, और जिस राह पे मुड़ती थी अपनी साइकिल साथ में चांद भी मुड़ता था, जब बरगद की जटाएं भी हम ही से झूला झूलती थी, जब बरगद की जटाएं भी हम ही से झूला झूलती थी, आलम कुछ ऐसा था दोस्तों कि तितलियां भी हमसे खेलती थी, कागज की कश्ती की तरह अपने सपने भी डोलते थे, कागज की कश्ती की तरह अपने सपने भी डोलते थे, और ख्वाब भी इतने सतरंगी थे कि उनमें हम परियों से भी बोलते थे। सचमुच दोस्तों, न रोने की कोई वजह थी और न हंसने का कोई बहाना, न रोने की कोई वजह थी और ना ही हंसने का कोई बहाना, आज महसूस होता है कि कितना सुहाना था वो जमाना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बचपन की, मां की लोरी से यादों की डोरी तक जो सफर हम सब ने तय किया है, आइए आज इसे फिर से

दोहराते हैं इस खूबसूरत गीतमाला के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत में चलिए सुनते हैं 1975 की फिल्म मिली का एक बेहद खूबसूरत गाना, जिसे लिखा है योगेश जी ने, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी ने। आज इस खूबसूरत गाने को आपके सामने प्रस्तुत कर रही है अपनी सुरीली आवाज में गिरिजा जी और तनुजा जी।

दोस्तों, इस सुरमई सफर में जो अगला गीत अब हम सुनेंगे उसका अंदाज ही कुछ निराला है। ये गाना है पापा और मम्मी के प्यार के बारे में। और वैसे भी दोस्तों, 1971 में प्रदर्शित फिल्म अंदाज का अंदाज भी कुछ निराला ही था। बतौर निर्देशक ये रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म थी। बतौर लेखक ये सलीम जावेद के हिट जोड़ी की पहली फिल्म थी। और दोस्तों, यही फिल्म बनी संगीतकार जय किशन जी के जिंदगी की आखिरी फिल्म। तो चलिए सुनते हैं हतरक जयपुरी द्वारा लिखित, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया हुआ और शंकर जयकिशन जी ने संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी सुमधुर आवाज में किशोर जी और श्वेता जी।

दोस्तों चलो ये तो सुन ली हमने मम्मी और पापा के प्यार की कहानी, लेकिन कई बार माँ बाप के आपसी रिश्ते बच्चों की मासूमियत पे एक गहरा घाव भर देते हैं। कुछ यही दिखाने की कोशिश की थी 1980 के दशक में आई हुई मूवी मासूम ने। निर्देशक शेखर कपूर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो धूम मचा ही दी थी और कई सारे अवार्ड समेट लिए थे, लेकिन खास करके इसके गाने इतने मशहूर हुए कि आज भी हम उन्हें गुनगुनाते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं गीतकार गुलजार के शब्दों में आरडी बर्मन जी द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ एक ऐसा ही मासूमियत भरा गाना, जिसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही है अपने सुमधुर आवाज में डॉली जी और हीना जी।

दोस्तों, अब मासूमियत की बात छिड़ ही चुकी है तो जरा सोचिए उस दौर में हम कितने मासूम हुआ करते थे कि चिड़िया, कौवा, हाथी, भालू, बंदर अपने दोस्त हुआ करते थे। ऐसे ही मासूमियत को छलकाया था 1957 की एक फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं ने, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी की बेगुनाही साबित करने के लिए सीधा दिल्ली का रुख करता है ताकि वो प्रधानमंत्री से मिलके उन्हें अपने मन की बात सुना सके। तो चलिए संगीता जी और कविता जी की लुभावनी आवाज में हम भी खो जाते हैं चिड़िया, कौवे, भालू और बंदर की दुनिया में। आइए सुनते हैं अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का एक गाना, जिसके गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीत से नवाजा है दत्ताराम वाडकर जी ने।

दोस्तों, जब हम भालू, बंदर, चिड़िया, कौवे जैसे अपने बचपन के दोस्तों से मिल चुके हैं, तो हम बचपन के उस एक दोस्त को भला कैसे भुला सकते हैं, जिसके बिना हमारी एक भी रात नहीं गुजरती थी, जिसकी कहानियां सुना के माँ हमें सुलाती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चांद की। इतना गहरा था हमारा रिश्ता कि कई गानों ने तो उसे हमारा मामा बना दिया था। कभी हम उसके घर जाते और वहां अपनी दुनिया बसाते, तो कभी उसको धरती पे अपनी दुनिया में बुलाते। आज हमारे होनहार गायक नमित सिन्हा जी और धन्या संतोष जी ऐसी ही एक चांद के सफर पे आपको लेके जाएंगे। तो लीजिए, सुनते हैं उन्हीं की आवाज में फिल्म जख्मी का ये गाना। बोल है गौहर कानपुरी के और संगीत दिया है बप्पी लहरी जी ने।

दोस्तों, उन दिनों हमारे खेल भी बड़े अजीब हुआ करते थे। छोटी छोटी शरारतों से हमें बड़ी खुशियां मिलती थी, जैसे माँ को बिना बताए डिब्बे से लड्डू चुराना, गर्मियों की छुट्टियों में खेतों में टहलते टहलते पेड़ से आम या अमरूद चुराना, कागज का हवाई जहाज बना के चुपके से उसे क्लास में उड़ाना, या फिर जीप की अजीब सी पहेलियां बुझा के अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना। क्या नहीं समझे? अरे समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ, समझ समझ के तुम नहीं समझे, मेरी समझ से तुम ना समझो। कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं आज के हमारे अगले गायक राजेंद्र जी और मनीषा जी फिल्म फना के इस गाने के साथ, जिसे लिखा है प्रसून जोशी जी ने और संगीत दिया है जतीन ललित जी ने।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंको, पिंको पकड़े पका पपीता। बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
2: कपड़ा?

दोस्तों, ऐसी पहेलियां बुझा के शरारत और मनोरंजन करने का सिलसिला सिर्फ आज के दौर का नहीं है और ना ही ये मनोरंजन या बच्चों तक सीमित है। अब यही देखिए ना, हमारे वेदों के ऋषियों ने भी नासतीय सूक्त जैसी काव्यात्मक पहेलियां बुझा के पूरे संसार की रचना का पाठ हमें पढ़ाया। खैर दोस्तों, इतना दूर नहीं जाते। अब यही देखिए, 1955 में कवि शैलेंद्र जी ने कुछ ऐसी ही पहेलियां लिखी। शंकर जयकिशन जी ने उसे संगीत दिया, लता जी और मुकेश जी ने उसे गाया और बस होना क्या था, बन गया एक सुपरहिट गाना जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि रशिया, चीन, इजराइल जैसे कई देशों में हिट हुआ। तो चलिए सुनते हैं फिल्म श्री 420 का यही गाना मनप्रीत जी और अनूप जी की मनमोहक आवाज में।

0: बोलो क्या
1: तुम?
0: हम
2: ऐसे बेहद लुभावने गीत सुनने के बाद दोस्तों दिल में एक ख्याल आता है कि आखिर बड़े होकर हमने क्या पाया, या फिर यूं कहिए कि जितना भी पाया शायद उससे कई ज्यादा खोया। किसी ने खूब कहा है दोस्तों, ऐ उम्र अगर है दम तो कर दे इतनी सी खता, ऐ उम्र अगर है दम तो कर दे इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया तूने बचपना छीन के बता। सचमुच दोस्तों वो दिन भुलाए नहीं भूलते, और भाई इतनी सुनहरी यादों को भुलाए भी क्यों। शायद यही कहना चाहते हैं हमारे अगले गीत के गायक MD त्यागी जी और गायत्री जी। तो लीजिए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं शकील बदायूनी द्वारा लिखित और नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म दीदार का ये गाना।

चलिए दोस्तों, बचपन का ये सुहाना सफर तय करते करते अब हम उम्र के उस पड़ाव पे आते हैं जहां थोड़ी बहुत जमाने की समझ हमें भी आती है और थोड़ी दुनियादारी भाई हम भी सीख लेते हैं। रोने और हंसने के अलावा अब हमें रूठना और अपनी बात मनवाना भी भले खूब आता है। ये उम्र का वो नाजुक पड़ाव है दोस्तों जो आपके भविष्य की नींव बनती है। यहां कोई अच्छा सलाहकार मिले तो आपकी जिंदगी बनती है या फिर बिगड़ती है। हमारे अगले गायक बिस्वजीत जी और विद्या जी भी शायद आपको यही बताना चाहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव को कैसे पार किया जाए। तो सुनते हैं उन्हीं की सुमधुर आवाज में फिल्म अपना देश का ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी जी ने और संगीत से नवाजा है आर डी बर्मन जी ने।

अब देखिए ना दोस्तों, बचपन की यादों की बौछारों में भीगते भीगते वक्त कैसे बीता इसका पता ही नहीं चला, और हम पहुंच गए हैं इस सुरीली महफिल के अंजाम तक। दोस्तों, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिंदगी की दौड़ में दौड़ते दौड़ते हम दौड़ना तो भली भांति सीख गए हैं, पर शायद जीने का मकसद कहीं छूट गया है। और शायद यही जिंदगी का फलसफा सिखाती है हमें यह गजल, जिससे आज हम अपनी सुरीली महफिल की समाप्ति करेंगे। सुदर्शन फाकीर की ये बेहद खूबसूरत पंक्तियां, जिन्हें संगीत और सुरों से नवाजा है जगजीत सिंह जी ने, आज आपके सामने पेश करेंगे हमारे दो सुरीले होनहार फनकार, बिमल जी और अपर्णा जी।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोग्राम मुंबई म्यूजिक ग्रुप से।
1: हे गाणं गायलंय मुंबई म्युझिक ग्रुपच्या शेखर आणि शुभांगी यांनी।

मैं भारती कंथारे आपके सामने आज कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है यह गाना पेश करने जा रही हूँ।

नमस्कार, मैं पूजा सरमलकर आपके सामने पेश कर रही हूँ मोरिनी बागामा बोले आधी रात मा सॉन्ग फ्रॉम लम्हे।

आप सुन रहे थे मुंबई म्यूजिकल, मुंबई म्यूजिक ग्रुप द्वारा प्रस्तुत, म्यूजिक ग्रुप के सिंगर्स द्वारा प्रस्तुत ये प्रोग्राम डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का। ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

0: थैंक यू. बद्दी लेडीज आ गई.
1: गीता गोथी वाला को आपने सुना. आपकी आवाज़, आपकी पहचान, डिजिटल विस्फोट का ये जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप.

0: सिंगर हैं, बहुत प्यारी सिंगर हैं। और जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि बहुत जल्दी ये ब्यूटीफुल मॉम जो हमारे शो में आई है आज, समृद्धि चतुर्वेदी, उनका फ्लायर जैसे ही आएगा, पब्लिक होगा, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात सिंगिंग की है तो स्टार्ट और श्री गणेश हम करते हैं एक सॉन्ग के साथ। क्या आप कुछ लिसनर्स को सुनाना चाहेंगी एक लाइन?
1: जी जरूर। तो जैसा मैंने बोला, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आपको और आपके लिसनर्स को। और सबसे पहले मैं ये गाना गाना चाहूंगी

0: से फेरों ने समझा।
1: जयपुर रेडियो की मंजिल तक आप पहुंच गई हैं और लिसनर्स के दिलों तक भी पहुंच गई हैं। बहुत बहुत प्यारी सिंगिंग स्टार्ट, मतलब श्री गणेश बहुत अच्छा हुआ है। तो इतनी प्यारी आवाज, इतनी स्वीट वॉइस, तो लिसनर्स जरूर से जरूर आपके इस सॉन्ग को सुनना चाहेंगे फुल म्यूजिक के साथ। तो हमारे साथ हैं समृद्धि चतुर्वेदी सियाटल से, और लिसनर्स के लिए सुनते हैं इनकी वॉइस में ये ट्रैक फुल म्यूजिक के साथ।

0: प्यारी सी शुरुआत एकदम कुकिंग शो की एक स्वीट मॉम के साथ जिनका नाम है समृद्धि चतुर्वेदी और ये है सियाटल से। तो अभी लिस्टर्स ने इंजॉय किया, आपने श्री गणेश बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग से किया और एकदम समा भर गया। तो क्या हम चलें अब किचन की ओर समृद्धि?
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, उसके
1: तो
0: पहले आप बताइए, मुझे पहले ये बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है। मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ बस कि मतलब किचन में तो आप रहती हैं तो कितने लोग एंजॉय करते हैं आपके बनाए हुए खाने को?
1: जी यहाँ तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा है करीब 10 साल का, उनके साथ रहती हूँ, तो मोस्टली तो वही खाते हैं मेरे हाथ का खाना। बट गैदरिंग होती रहती है, फ्रेंड्स आते रहते हैं, तो हाँ काफी लोगों को वीकेंड्स वगैरह पे हम मिलते रहते हैं, पॉटलक पार्टीज करते हैं। तो हाँ मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, लोगों को लगती मेरा खाना पसंद आ जाता है, तो
0: नहीं
1: हाँ।
0: नहीं
1: और
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ जी
1: मैं बोल रही थी, मैं खुद ही खुद बहुत ही बड़ी फूडी हूँ, तो कोई और खाए चाहे ना खाए, मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है और एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है।
0: हाँ, मेन बात वही है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं क्योंकि आप सियाटल में रहते हैं और वहां पर इंडियन फूड आपको थोड़ा सा कम ही मिलता होगा, शायद रेस्टोरेंट्स कम होंगे ना वहां पर, इंडियन फूड मिलता है क्या?
1: जी कम भी कम मिलता तो है, सब कुछ ही मिल जाता है, मगर वो स्वाद नहीं आ पाता है। तो हर बार खाके ना ऐसे बहुत बहुत रेयरली ही ऐसा लगता है कि वाह ये बहुत ही सही था या सही तरीके से बनाया गया था। तो खाना तो मिल जाता है, बट वो घर की बात नहीं होती है।
0: अगर खानी हो अरहर की दाल और चावल तो ढूंढना पड़ता होगा वहां
1: जी
0: पे, है
1: वो बात
0: ना?
1: तो है। जी
0: हाँ, तो समृद्धि आज आप क्या लेकर आई हैं, लिस्टर्स को क्या रेसिपी शेयर करने वाली हैं?
1: जी तो मैं ये एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, जो एक रेगुलर जो हम चीला बनाते हैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। और वैसे मैंने बोला कि मैं खुद एक फूडी हूँ, तो मुझे हैं और वही रेगुलर खाना खा खा के कई बार इंसान बोर हो जाता है ना, और लंच को पैक करना है या बच्चों को टिफिन में देना है, तो उसी वजह से ना वेराइटी भी करके थोड़ा बच्चा भी खा लेता है खुश होके। तो आज
0: हाँ
1: मैं जो रेसिपी लाई हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा न्यूट्रिशियस वैल्यू भी हो, क्योंकि ऐसे तो स्वाद के लिए तो बहुत मजेदार चीजें होती हैं, बट थोड़ा हेल्थ पे भी
0: एग्जैक्टली
1: ध्यान तो थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दे के, और अपने रेगुलर रूटीन में बहुत एलैबोरेट रेसिपी ना हो, मगर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो, तो बहुत ज्यादा टाइम ना लगे बट सेम टाइम में न्यूट्रिशियस भी हो और खाना भी अच्छा टेस्टी बने। तो ये है चीले चीले के सैंडविच का रेसिपी, जिसको मैं ब्रेडलेस सैंडविच बोलती हूँ। और
0: हाँ, जिसमें
1: क्या
0: ब्रेड
1: करना होता
0: नहीं होती है।
1: जी, जिसमें ब्रेड नहीं होती है और वो सैंडविच जैसा दिखता है और थोड़ा स्वाद होता है उसका। तो हम सब चीला तो जानते ही हैं, बहुत ही कॉमन चीज है। मैं उसका पेस्ट बनाने के लिए, जैसे जो तरीका होता है, जो मूंग की दाल होती है उसको थोड़ी देर भिगो लेती हूँ, पीले मूंग की दाल, या अगर हरे मूंग चाहिए तो उसको थोड़ा लंबा भिगोना पड़ता है, ओवर रात भर भिगोना पड़ता है। और जब वो भीगी हुई फुली हुई दाल हो उसको धो के अच्छे से, उसमें थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए अदरक मिर्ची धनिया पत्ता, अगर लहसुन खाते हो तो लहसुन, नमक जीरा पाउडर, ये सब डाल के उसको मैं पीस लेती हूँ। और जो पेस्ट होता है वो बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं, एक चीले के जैसा जो ऐसा पेस्ट होता है। और इसको चाहे तो आप डायरेक्टली, जैसे आप पैन पर बनाते हैं चीला डोसे की तरह फैला के, वैसे कर सकते हैं। मगर इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर आपके पास सैंडविच मेकर है, वो जो ग्रिल होता है जो कि गैस
0: हाँ
1: के ऊपर भी जा सकता है या इलेक्ट्रिक भी होता है, तो उसमें जी थोड़ा सा बटर लगा के या थोड़ा सा तेल लगा के ये चीले का बैटर को एक लेयर फैला दे, और फिर बीच की
0: ओके
1: स्टफिंग के लिए, जैसे जी बीच की स्टफिंग के लिए जैसे ग्रेटेड घिसी हुई आपकी पनीर हो गई या कटी हुई बारीक सब्जियां हो गई, शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर, जो भी आपको देना हो, थोड़ा चीज डाल देना हो, तो ये बीच हो गई डाल दे, फिर एक का डाल दे चीले का डाल दे, और जैसे सैंडविच पकाते हैं वैसे इसको 2-3 मिनट पकने छोड़ दें, और जब ये खुलता है तो
0: हाँ
1: बड़ा ही क्रिस्पी सा, ब्राउन सा, गोल्डन सा, सुनहरा सा रंग हो जाता है, देखने में
0: हाँ
1: बहुत ही
0: मतलब
1: स्वादिष्ट
0: लुक
1: लगता है।
0: बहुत अच्छा
1: जी
0: आता है।
1: जी बहुत ही बहुत सुंदर दिखता है, और वो सारी चीजें जो अंदर घुल जाती है गर्मी से, तो उसका स्वाद बड़ा ही डिफरेंट हो जाता है। और ये पैक करना बड़ा आसान है, आप चटनी के साथ खा लो, ऐसे ठंडा भी अच्छा लगता है, गर्म भी अच्छा लगता है, तो ये बड़ा ही इजी और हैंड फ्री, मतलब बिना हाथ लगाए आपकी रेसिपी हो जाती है, बाकी काम करते करते ये साइड में बन जाता है। तो ये आजकल मेरी काफी फेवरेट
0: हाँ,
1: रेसिपी है।
0: मतलब कि बेटे को और हस्बैंड को पसंद है ये आपके
1: जी
0: हाथ की बनी हुई
1: जी
0: ब्रेडलेस
1: बिल्कुल
0: सैंडविच जिसे कहेंगे। तो जयपुर रेडियो के सभी
1: जी
0: लिसनर्स जो हैं आरजेपी को कुकिंग शो जिसका नाम है फ्यूजन सांझा चूल्हा विद आरजे प्रीत, और आज हमारे साथ है समृद्धि चतुर्वेदी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जो आपने सैंडविच बताई है ना, ये मतलब इससे तो हम ब्रेकफास्ट और हल्का मील, मतलब कभी के लाइट कुछ खाना हो
1: जी,
0: है ना, तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं लंच वगैरह में, कि हल्का फुल्का खाने का मन है तो उसमें भी हम यूज,
1: बिना दुखी हुए बिना ज्यादा दिमाग लगा खा सकते हैं, क्योंकि इसमें दाल है तो थोड़ा प्रोटीन कंटेंट है, कार्ब्स कम है, तो ऐसे ना तो लगता है कि अरे आजकल जैसे फूड के तरीके होते हैं, न्यूट्रिशन की जो हमारे स्टाइल्स आ गई है, तो ब्रेड नहीं खा रहे हो आप, दाल खा रहे हो।
0: एक्चुअली में ना बच्चे भी जल्दी खाना नहीं चाहते हैं, रोटी वगैरह नहीं चाहते, वो चाहते कुछ डिफरेंट मिलता रहे, तो इस उसमें ना ये डिफरेंट चीज है जो अच्छे से मतलब के बच्चे खा भी सकते हैं और उनके न्यूट्रिशियस सब कुछ है उसमें, और उसमें हम चाहें तो कॉर्न वगैरह भी यूज कर सकते हैं ना, कॉर्न यूज कर सकते हैं, मटर यूज कर सकते हैं,
1: फेवरेट सब्जी है मटर डाल लीजिए, गाजर डाल लीजिए, जो आपकी फेवरेट, पालक डाल लीजिए बीच में, जो भी सब्जी आप डाल सकते हो, वो अंदर रहती है, बच्चों को दिखता भी नहीं है, वो बिना देखे ही खा लेते हैं खुशी खुशी।
0: क्योंकि उनको ऊपर दिखाई देते हैं, ऊपर से दिखता है बस उस वजह से। तो सारी लिस्टर्स बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आज समृद्धि चतुर्वेदी को, जो शेयर कर रही है ब्रेडलेस सैंडविच, और ये बनता है मूंग की दाल से, है ना
1: जी?
0: जी, मूंग की दाल से बनता है ना, मूंग की दाल को पीस करके, बाकी की पूरी रेसिपी उन्होंने बताई है, तो कहीं से भी अगर स्किप होता है तो हमारा रिपीट ब्रॉडकास्टिंग सुनना ना भूलें लिसनर्स। और जब बात हो रही है खाने पीने की, तो उसके साथ एक तड़का हो जाए सॉन्ग का, सब निधि को सुनाएंगी, एक और सॉन्ग सुनाएंगी, फिर हम बात करते हैं आगे।
1: जी बिल्कुल, तो अगला गाना जो मुझे याद आ रहा है वो ये है, आओ हुजूर तुमको।

0: क्या बात है। मतलब मैं इस शो में ना सारी लेडीज को ये बोलती हूँ जो मॉम्स आती हैं उनको ये बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है कि आपकी फैमिली, आपके हबी, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स ये प्रोग्राम सुनेंगे, तो अगर आप कोई डेडिकेशन देना चाहें उन्हें तो ये बहुत सुनहरा मौका है उनको डेडिकेट करने का सॉन्ग। और मुझे ऐसा लगता है ये डेडिकेशन तो आपके हस्बैंड को जाना चाहिए।
1: जो भी सुन रहे सबको कि चली आए, कुकिंग भी करते हैं, गाना भी सुनते हैं,
0: चलिए सितारों में ले चलते, खाते खाते एंजॉय कीजिए और सितारों में ले चलिए। तो समृद्धि चतुर्वेदी का ये सॉन्ग लिस्ट चलिए सुनते हैं हम फुल म्यूजिक के साथ।

0: प्यारी सी रेसिपी बताई है आपने समृद्धि, बहुत डिलीशियस। इनफैक्ट मैं खुद भी ट्राई करूंगी इसे बनाने का, और इजी है, बहुत इजी है। ये ऐसी चीजें इसमें हैं जो घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है सभी के, और हम ढूंढते रहते हैं कुछ नया, कि कुछ नया मिले बनाने के लिए। तो लिस्टनर्स सुन रहे हैं समृद्धि चतुर्वेदी को, जो सिएटल से हैं, और कुकिंग शो जिसका नाम है फ्यूजन साझा चूल्हा विद आरजे प्रीत। तो समृद्धि ये बताइए, आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं? क्योंकि रेसिपी तो शेयर हो चुकी है, लेकिन अभी हमने थोड़ी सी बात सिंगिंग की करनी है, तो आपके फेवरेट सिंगर कोई है?
1: सिंगर्स, ये तो बड़ा ही टफ क्वेश्चन, बड़ा ही कठिन सवाल पूछा है प्रीत जी आपने, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं ना, और हर मूड के हिसाब से और हर सिंगर की अपनी पर्सनैलिटी है आवाज की, गानों की, कि एक को चुनना ना बड़ा ही
0: बिल्कुल
1: मुश्किल है। बट
0: बिल्कुल
1: अगर ऐसे एक को चुनना ही हो तो फीमेल सिंगर्स में मुझे आशा जी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनके
0: हाँ,
1: गानों में जो
0: अभी
1: बुलबुलापन होता है ना।
0: बर्थडे गया है उनका, अभी बर्थडे रिसेंटली गया है ना, तो हो जाए एक डेडिकेशन उनके लिए, अगर आपको याद हो तो कुछ उनका कोई सॉन्ग।
1: जी, एक और गाना आशा जी का, जी।

कितना हमिंग करके और बता दिया कि नहीं ये सॉन्ग तो पूरा सुनना पड़ेगा म्यूजिक के साथ। तो लिस्टर्स आप सुन रहे हैं समृद्धि चतुर्वेदी को जो सियाटल से है, तो चलिए सुनते हैं ये फुल सॉन्ग म्यूजिक के साथ।

0: प्यारे प्यारे सॉन्ग्स लेकर आई हैं आप। अच्छे, बहुत ही मेलोडियस सिंगिंग है आपकी, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल मॉम है ये। और अभी क्या बोले, जब हमारा फ्लायर होगा पब्लिक तो हम सब देख पाएंगे इनको फ्लायर में, और तब आप रूबरू हो सकते हैं उनसे, देख सकते हैं उनको, उनकी रेसिपी को जरूर से जरूर ट्राई करें। और समृद्धि, आप ये बताइए, आप सियाटल से हैं तो क्या लिस्टर्स को इनवाइट करेंगे ना सियाटल घूमने के लिए?
1: जी बिल्कुल, मतलब अगर आपको कभी भी यूएस आने का मौका मिलता है तो सिएटल तो ऐसी जगह है जो आपको आना ही चाहिए। मतलब इतनी ज्यादा सुंदर जगह है ना, इतनी गिफ्टेड जगह है ये नेचर से। और जो भी इंसान ढूंढता है एक टूरिस्ट स्पॉट में या जहां आप कहीं बाहर जाते हो, ये वो हर चीज यहाँ मौजूद है। तो अगर मैं बताऊं सिएटल के बारे में, तो ये यूएसए का नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल जैसे भाग है ना, वहां पे पड़ता है बिल्कुल कॉर्नर में, और बिल्कुल
0: अच्छा,
1: कनाडा के बॉर्डर पे आप समझ लो। और
0: ओके,
1: यहाँ
0: हाँ,
1: पे हाँ और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है बगल में, प्रशांत महासागर है हमारे साइड में। और मौसम यहाँ का बड़ा ही मॉडरेट सा है, बारिश होती है थोड़ी ज्यादा। और अब जैसे इंडिया में आप समझते हो जैसे हिल स्टेशन होते हैं, बिल्कुल हिल स्टेशन का
0: हाँ
1: माहौल है यहाँ का, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको पहाड़ भी है, आपको समंदर भी है, नदियां हैं, झरने हैं। मतलब भगवान ने जितना गिफ्ट दे सकते थे एक जगह को, भगवान ने सारी चीजें दी हैं सिएटल और इसको
0: और
1: आसपास के
0: साथ में
1: एरिया को।
0: पहुंचा दिया, साथ में पहुंचा दिया समृद्धि चतुर्वेदी को, पूरा एंजॉय कर रही है वहां पे। होता है ना, जब ऐसा एटमोसफेयर आसपास होता है ना, तो बहुत फ्रेशनेस ही फील होती है कि ना,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल वही।
0: टायर्डनेस नहीं होती है कि आदमी थका हुआ भी होता है ना, तो ऐसे मॉल में थोड़ी देर
1: हाँ
0: घूम
1: जी,
0: ले
1: बस
0: तो।
1: आप जी बस आप एक वॉक करके आ जाओ बाहर, और इतनी साफ हवा है और बहुत ही ब्यूटीफुल वादियां हैं। मतलब किसी भी तरफ आप वॉक कर लो, और यहाँ पे लोग बाइक बहुत करते हैं, साइकिल बहुत चलाते हैं, तो जो भी वर्कआउट
0: अच्छा,
1: दौड़ के आ जाओ, तो जो भी आपकी एक्टिविटीज है आपको करनी हो। लोग पहाड़ पे बहुत चढ़ते हैं, हाइकिंग बहुत फेमस है यहाँ पे, इस एरिया में लोग काफी करते हैं, और मैं भी करना शुरू कर चुकी हूँ यहाँ रहते रहते।
0: इसीलिए मैं लिस्टर्स को बोल
1: तो
0: रही हूँ कि फ्लायर पब्लिक होने दीजिए, आप देखेंगे समृद्धि चतुर्वेदी को, जो एकदम फिट मॉम है, और होना
1: थैंक यू
0: चाहिए, मुझे
1: बिल्कुल
0: लगता है
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल होना चाहिए। और अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है आजकल के एटमोसफेयर में, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बहुत प्यारे प्यारे आपने सॉन्ग सुनाए, बहुत ही प्यारी रेसिपी शेयर करी। अब मैं फिर से एक मौका आपको दे रही हूँ, आप अपने हस्बैंड को अगर कोई डेडिकेशन देना चाहें तो बहुत सही मौका है, और उनको वो सुनेंगे तो एटलीस्ट इतना तो समझ ही जाएंगे कि हाँ, मेरी मैडम ने मुझे डेडिकेट किया है कुछ। तो अगर आप चाहें तो हाँ,
1: एक तरह से तो सारे गाने ही उनपे ही डेडिकेटेड है, पूरी लाइफ ही उनके आसपास इर्द गिर्द घूम रही है। और इनफैक्ट मैं मुझे तो लगता है मेरे घर पे लोग मेरी, क्योंकि मैं इतना गुनगुनाती रहती हूँ सुबह से लेके शाम तक, तो मुझे लगता है घर पे लोग मेरी आवाज सुन सुन के अब थक चुके होंगे कि ना गाना बंद
0: लेकिन
1: कब होगा
0: नहीं
1: इनका।
0: नहीं नहीं तो वो तो घर पे सुनते हैं ना, अभी जयपुर रेडियो पर आप हैं, तो जयपुर रेडियो तो हर कोने में, हर जगह पर, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, मेट्रो सिटीज, हर जगह सुना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लिस्नर्स भी है ना जो आपको सुनना चाहेंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, फैमिली ने से ही लिस्नर्स को एक और डेडिकेशन हो जाए, फिर हम वापस आएंगे।
1: ठीक है जी। तो लिसनर्स ऐसे कोई डेडिकेशन नहीं है, क्योंकि ना ऐसे आप जब मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे गाने ही याद नहीं आ रहे ऑनेस्टली।
0: हाँ
1: तो जो भी
0: ठीक
1: मेरे
0: है, जो
1: दिमाग में
0: आपको
1: सबसे पहला
0: कंफर्ट।
1: गाना आ रहा है ना, तो
0: हाँ
1: वो मैं गा दे रही
0: बिल्कुल
1: हूँ। तो
0: जी,
1: ये
0: बिल्कुल
1: थोड़ा नया गाना है जो मुझे याद आ रहा है, और ये मुझे बहुत ही पसंद है, श्रेया घोषाल जी की आवाज है।

0: अब मैं क्या बोलूं सॉन्ग ऐसा आपने सुना दिया, लेकिन जयपुर रेडी और आरजे प्रीत यही कामना करते हैं कि कभी आपको रोना ना पड़े, आप हमेशा खुश रहें, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रहें। तो लिस्टर से सुना समृद्धि चतुर्वेदी को, उनकी रेसिपी सुनी, उनके सॉन्ग सुने, बहुत इंजॉय किया और इनफैक्ट बहुत प्यारी सिंगर हैं आप। तो जाते जाते क्या कुछ टिप्स शेयर करेंगी जयपुर रेडियो के लिसनर्स को?
1: जी बिल्कुल, जैसे किचन के टिप्स में आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना, मुझे चीजें अगर सड़के बर्बाद हो जाती हैं, खराब होती हैं, तो बड़ा ही बुरा लगता है। फिलहाल वो फ्रिज में कभी कभी रखे रखे कुछ चीजें खराब हो जाती हैं,
0: स्पेशली
1: ऐसे ना फल जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गए, ब्लूबेरीज हो गए, या छिले छिले हुए ये हो गए, आपके लहसुन हो गए, मिर्चियां हो गई, तो ये कई बार ना फ्रिज में रखे रखे भी गल जाती हैं ठंड से,
0: खराब हो जाती हैं
1: आजकल। जी तो मैंने आजकल शुरू किया है, मैंने भी कहीं पढ़ा था कहीं पे टिप पर, मैंने खुद से कोशिश भी की कि अगर ऐसी चीजों को ना, जैसे बेरीज हो गए आपके, स्ट्रॉबेरी या ये हो गए गार्लिक्स हो गए या चिलीज जो हो गई, उनको आपने शीशे के कंटेनर में रखा, ट्रांसपेरेंट कांच के बर्तनों में, तो वो बहुत लंबी टिकती हैं। और ये मैं काफी टाइम से कर रही हूँ और मैंने सच में डिफरेंस देखा है कि जो चीज पहले हफ्ते भर में खराब हो जाती थी, अभी वो 10 दिन से या ज्यादा महीने भर चल जाती है आराम से।
0: ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है हर घर में।
1: जी तो मिर्ची की डंडी बस तोड़ के, काट के नहीं, बस तोड़ के अगर उसको कांच के बर्तन में रख देती हूँ तो वो एक तो दिखने में भी अच्छा लगता है, फ्रिज खोलो तो बड़ा सुंदर सा सजा हुआ लगता है फ्रिज देखने में, और चीजें बड़ी लंबी टिकती हैं, तो वो थोड़ी खुशी भी होती है कि चलो सड़के फिकी नहीं कुछ भी।
0: नहीं सही बात है, हम बहुत टाइम निकाल करके जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और ये और सबसे बड़ी बात ये है ना कि छोटी छोटी चीजें जब हमें किचन में जरूरत होती है और नहीं मिलती है ना, कि खराब हो गई, रखे रखे खराब हो गई, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा वो लगता है, क्योंकि गार्निशिंग करने के लिए हरी धनिया और ये सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इनको अगर हम शीशे के जार में रखेंगे तो टिका रहेगा ये, है ना। तो थैंक यू सो मच यार समृद्धि, आपने बहुत ही काम की यूजफुल टिप्स बताई, बहुत ही प्यारी रेसिपी शेयर करी जो ब्रेकफास्ट में और लाइट लंच करना हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दाल है तो यूज हो सकती है बहुत आराम से। यूजफुल टिप्स भी साथ में थी और सिंगिंग तो माशाल्लाह एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास की सिंगिंग। मैं इस चीज को लेकर बहुत खुश रहती हूँ कि हमारे शो में जो भी मॉम्स आती है ना, बहुत बहुत प्यारी सिंगिंग है उनकी और सब बहुत ही प्यारी है, और जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स जिस तरीके से फीडबैक दे रहे हैं, हमारे शो को सुन रहे हैं, आरजे प्रीत को भी बहुत अच्छा लगता है और साथ में जो मॉम्स आती है उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, और जयपुर रेडियो की टीम तो एफर्ट कर ही रही है। तो बोलना चाहूंगी जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को जो सुन रहे हैं फ्यूजन साझा चूल्हा विद आरजे प्रीत, जयपुर रेडियो को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और समृद्धि चतुर्वेदी को आपने सुना और अब हम उनसे ये बोलेंगे कि जाते जाते लिसनर्स को कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी बनाई हुई रेसिपी वो ट्राई करें और आपको फीडबैक दें।
1: जी बिल्कुल, आप ट्राई कीजिए और मुझे और प्रीत जी को जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, इसमें आप अपने ट्विस्ट डालिए और मुझे फिर से बताइए, मैं भी बनाऊंगी और होप करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी ये रेसिपी और मेरे गाने। थैंक यू, और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगी प्रीत आपको और पूरे रेडियो जयपुर के टीम को जो मुझे और हमारे जैसे अन्य सिंगर्स को ऐसा मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगता है और अन्य लोगों से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं इंटरेस्टिंग लोगों से, तो
0: बिल्कुल आप हर जगह पे जुड़ पाते हैं, आपको हर जगह लोग सुनते हैं, और हम चाहेंगे कि हम वापस से आपको जयपुर रेडियो के मंच पे फिर से बुलाएं, आपका स्वागत करें। तो थैंक यू सो मच समृद्धि हमारे शो में बने रहने के लिए, और जल्दी ही हम वापस मिलते हैं। तो जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स सुन रहे थे सिएटल से समृद्धि चतुर्वेदी को, कुकिंग शो जिसका नाम है फ्यूजन साझा चूल्हा विद आरजे प्रीत। तो जल्दी ही फिर से मिलते हैं एक नई मॉम के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए और साथ ही गुनगुनाते रहिए। बाय समृद्धि।
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम फ्यूजन साझा चूल्हा विद आरजे प्रीत, और आइए आप सुनते हैं कहानी एक मुट्ठी आकाश। कहानीकार हैं संतोष श्रीवास्तव और इसका वाचन कर रही हैं सुनीता राजपाल।
3: एक मुट्ठी आकाश। मार्च की शुरुआत थी, पतझड़ के पत्तों ने झरझर कर पूरी धरती को अपने आगोश में ले लिया था। यहाँ से साफ दिखता था वो कोने वाला सफेद मकान, जिसकी ढलवां छत के कंगूरे बारिश की मार सहते सहते अपना रूप खो बैठे थे। कंगूरे के नीचे धुंधले कांच के दरवाजों से छनती आती रोशनी पार्टी के पूरे शबाब का ऐलान करती सी लग रही थी। दरवाजा हल्के से ठेल मनीष अंदर दाखिल हुआ तो तमाम लोगों की निगाहें पल भर उसके चेहरे पर ठहर गईं। आहा, मिस्टर रॉय, आइए आइए, स्वागत है आपका। मेजबान सिन्हा ने फिल्मी अंदाज में थोड़ा सा झुक कर हथेली सीने पर दबा डायलॉग रबर सा खींचा और पूरी पार्टी मुस्कुरा उठी। भाभी जी नहीं आई? इनकार में सिर हिला मनीष सीडी प्लेयर के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया और सीडी उलटने पलटने लगा। वो जानता था कि उसके ऊपर दी जा रही इस खास तवज्जो का क्या मतलब था। अपनी ओर से लापरवाह सा बनता जाने क्यों और गिरफ्तार होता जा रहा था वो। अच्छा हुआ कुमकुम को नहीं लाया, वरना बुफे तैयार था, हर एक के हाथों में प्लेट थी। अपनी प्लेट भरकर शर्मा मनीष की ओर झुका और पूछा, कैसी है भाभी जी की बिटिया, ले आए उसे हॉस्टल से? जी हाँ, ले आया अपनी बिटिया स्मिता को, तलखी से एक एक शब्द ठेल कर मनीष ने कटलेट कुतरना शुरू किया। दिमाग और दिल दोनों भन्ना उठे थे। शर्मा जीप गया था लेकिन हरीश ने उसे संभाल लिया। अनिल बाबू से तो मुलाकात ही नहीं होती होगी, और मनीष की ओर झुक बड़े राजदाराना अंदाज में फुसफुसाया, अमा यार, तुम्हारे इस अनिल ने तो बेसिर पैर की उड़ाई है कि कुमकुम भाभी अपने 2 साल के वैवाहिक जीवन में उसका सारा बैंक बैलेंस खाली कर गई, सब यार दोस्तों में उड़ा दिया कि स्मिता उनकी बेटी है ही नहीं। मनीष की तबीयत हुई कि हाथ की प्लेट हरीश के मुंह पर दे मारे, अनिल का क्यों बहाना लेते हो, ये क्यों नहीं कहते कि ये सब तुम्हारे अपने मन का गिजगिजापन है जिसे तुम खुद शब्द देने में घबराते हो। मन कड़वाहट से भर गया था और खाना बीच में ही छोड़ पार्टी से वो बाहर निकल गया और सड़क पर चहलकदमी करने लगा। धूप टहनियों में बिखर आई थी, रात की पार्टी का कड़वापन मगर अभी भी दिलो दिमाग में तारी था। कुमकुम अपने गीले लंबे बालों को तौलिए से पोंछती नीम की झुकी टहनियों के पास खड़ी थी। इस बार मार्च भी कितना ठंडा है, अखबार का पेज पलटा मनीष ने। ताजा न्यूज है कि शिमला में पिछले 48 घंटों से बर्फ गिर रही है। मार्च में इस बर्फबारी ने पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। पेज फिर पलटा, 7 साल। कुमकुम की पायल में गुथे 3 घुंघरुओं का गुच्छा रुनझुनाया। कल की पार्टी कैसी रही? पार्टी पार्टी कहाँ, वो तो 7 सालों के जंगल में खोता चला जा रहा है। ढेरों सुख दुख ताने उपहास लोगों की बीतती नजरें, यही शहर था। 7 साल पहले इसी शहर में मनीष एक पत्रकार की हैसियत से आया था, लेकिन आसानी से काम न मिल सका। होटल के एक बेड का किराया देने के काबिल तक वो नहीं कमा रहा था। एक दिन अचानक अपने बचपन के दोस्त प्रेम से मुलाकात हो गई थी। ताज्जुब और खुशी की गहमा गहमी के बीच प्रेम उसे घर ले आया, रेखा भाभी से परिचय करवाया। कई दिनों तक वो होटल से चलकर प्रेम के घर खाना खाने जाता रहा। लौटते में प्रेम कुछ रुपए जबरदस्ती उसकी जेब में ठूंस देता, लाचारी थी वरना मनीष ने कभी हाथ नहीं फैलाए किसी के आगे। फिर एक दिन होटल से कमरा खाली करने की वार्निंग मिल ही गई। उसने जब प्रेम को बताया तो प्रेम ने उसे खुद के घर में ही शिफ्ट हो जाने को कहा और घर में पीछे वाला कमरा उसके लिए खोल देने की बात की। मनीष एकदम से लिपट पड़ा था प्रेम से। आसपास सिगरेट का धुआं था, दोनों ही एक दूसरे की पनियाई आंखें ना देख पाने का नाटक करते रहे। तब से प्रेम का घर उसका अपना घर हो गया। न प्रेम ने न रेखा भाभी ने कभी ये महसूस होने दिया कि वो रिश्ते में उनका कुछ नहीं लगता। अच्छा ही हुआ, वरना रिश्तों में घिरकर वो अपनत्व भूल जाता। याद रह जाती हैं सिर्फ शिकायतें, अपेक्षाएं जो रिश्तों के बीच नागपनी सी ही रहती हैं। यही मनीष की मुलाकात कुमकुम से हुई थी। दुबली पतली सांवली सी, तीखे नैन नक्श और लंबे बालों वाली कुमकुम की ओर इशारा कर भाभी मुस्कुराई थी। मनीष, ये है कुमकुम। डाइवोर्स हो चुका है इनका। एक नन्ही सी बेटी है स्मिता, हॉस्टल में है। ढूंढो स्मिता के लिए एक अदद बाप। कुमकुम ने भाभी की ओर आंखें तरेरी। मनीष भी हंस पड़ा। हंसी दिल तक उतर आई थी और तमाम अस्तित्व को हंसा गई थी। आप वर्किंग हैं? जी, रिपोर्टर हूँ। और आप? थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, रविवारीय परिशिष्ट में छप जाता है। भाभी साबुदाने के पापड़ और चाय ले आई और देर तक ठहाके चाय के प्यालों के दरमियान गूंजते रहे थे। कभी घर कभी अखबारों के दफ्तर में कुमकुम मिल ही जाती। धीरे धीरे फासले कम होते गए। इन्हीं मुलाकातों के बीच कुमकुम ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में मनीष को बताया। एक दिन मनीष ने पूछा, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? मनीष, कुमकुम के होठों से एक बारगी उसका नाम फिसला था। वो चौंक पड़ी थी। हादसों को कोई बहाना नहीं चाहिए होता। अनिल बिल्कुल दूसरे विचारों का था और मैं जिस परिवेश में पली थी उसमें अनिल को खपाना मुश्किल था। और मुझे कहकर मनीष के चेहरे की कैफियत उसके जज्बातों का खुलासा करने लगी। लेकिन कुमकुम कांप गई। मनीष, मजाक तो नहीं है ये? मजाक? वो अवाक था। क्या यही जाना तुमने मुझे? इतना ही? रेखा भाभी ने सुना तो तमक उठी। मनीष के साथ साथ कुमकुम भी चौंक पड़ी थी रेखा भाभी की बातें सुनकर। ये रेखा क्या कह रही है? जिसने अनिल के कारनामे सुनकर मर्द जात पर कितनी तो लानत भेजी थी, कितना इस समाज को निर्दयी कहा था, और जब खुद की बारी आई तो? भारी मन से कुमकुम को बस स्टॉप तक छोड़कर मनीष लौटा तो प्रेम को अपने कमरे में बैठा पाया। पलंग पर बैठकर उसने जूते मोजे उतारे। कब आए? रेखा से खुशखबरी मिली। प्रेम ने उसे बधाई दी। शुक्रिया कहकर मनीष मुस्कुराया, लेकिन क्षणांश बाद ही प्रेम की दी बधाई भीतर तक धंस गई। व्यंग्य के तीखे एहसास से वो एक बार भी कांप गया। चुपचाप कपड़े बदल थोड़ी लोगे? और बगैर जवाब का इंतजार किए उसने रेखा भाभी को आवाज दी। रेखा भाभी जैसे तैयार ही बैठी थी, आवाज के साथ ही गिलास विस्की सब हाजिर। मनीष अब तक संभल चुका था। पहले घूंट के साथ ही सिगरेट सुलगी और कुमकुम का नाम प्रेम के होठों पर। तो फैसला कर चुके हो तुम? प्रेम, मैं अपने आप में काफी सुलझा हुआ हूँ। जानता हूँ, जानता हूँ, फिर भी दोस्त के नाते कह रहा हूँ कि एक बार फिर सोच लो। माना कुमकुम अकेली है, उसके साथ अत्याचार हुआ है, पर तुम कोई समाज सुधारक तो हो नहीं? अभी तो तुम्हारी शादी तक नहीं हुई और वो एक बच्चे की माँ भी है। मनीष तिलमिला गया। इस धोती मानसिकता में न वो कभी जिया है और न जीना चाहता है। जब एक बच्चे का पिता कुंवारी लड़की ब्याह सकता है तो एक बच्चे की माँ कुंवारा लड़का क्यों नहीं चुन सकती? और जब उसे कोई एतराज नहीं तो इन्हें क्या तकलीफ है? शादी तो वो करेगा, जैसा जो कुछ होगा वो सहेगा। मनीष जानता था कि प्रेम से कुछ भी कहना बेकार है। उसने घड़ी देखी, 12:40 हो रहे थे। आखिरी घूंट खत्म कर वो पलंग पर उठंगसा हुआ। प्रेम, जिसमें खुशी मिले उस काम को कर ही डालना चाहिए यार। भाभी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? कुछ बहुत नजदीकी दोस्तों की मौजूदगी में मनीष ने कुमकुम से कोर्ट मैरिज कर ली। प्रेम भी था, रेखा भाभी भी, एक औपचारिक सी बधाई बतौर, और बड़े अपनेपन से कुमकुम का हाथ पकड़ लिया। कुमी, अब मनीष को निभा लेना। चोट सी लगी मनीष को। उसने सोचा, इतने दिनों से प्रेम के साथ है, रहते रहते लगाव हो ही जाता है। उसी लगाव की वजह से भाभी ने कहा होगा, बेकार ही परेशान हो रहा है वो। 15 दिन बतौर हनीमून राजस्थान घूमकर वो कुमकुम को सीधा माँ के पास ले गया। शादी की खबर तो वो पहले ही दे चुका था, कुछ छुपाया नहीं था उसने। दरवाजा भाभी ने खोला। मनीष ने कुमकुम को पैर छूने का इशारा किया, पर तब तक भाभी हट चुकी थी। माँ को बहुरानी के आने की खबर देकर वो बेरुखी से चौके में चली गईं। माँ ने उठकर मनीष को गले लगाया और खूब रोईं। रो चुकी तो जी भरकर कुमकुम को देखती रहीं। नक्षिक परीक्षा ली उसकी। कुमकुम मूर्ति की तरह अडोल दीवार से चिपकी खड़ी थी। मनीष ने ही उसे बाथरूम का रास्ता दिखाया और चौके में जाकर भाभी को पुकारा, भाभी थोड़ी चाय मिलेगी? अरे चाय क्या, हम तो दूधों नहलाएं लाला तुम्हें, पर कायदे से शादी करते तब ना, उठा लाए अम्मा। और पल्ला होठों में दबा ठी ठी कर हंस पड़ी। अरे उसे क्या कहती हो दुल्हन, चालाक दिखती है, पड़ गई होगी मेरे सीधे साधे लड़के के पीछे। बस भी करो माँ, इसके लिए मैं लाया हूँ उसे यहाँ। मनीष तैश में आ गया। कुमकुम चलो, इसी वक्त चलो यहाँ से। कुमकुम मुंह हाथ धो चुकी थी, रोती भी जा रही थी। मनीष ने आव देखा न ताव, कुमकुम की बांह पकड़ी और तेजी से सड़क पर ले आया। एक खाली ऑटो रिक्शा देख उसने मन की तमाम कड़वाहट समेट रुआब उछाला। नटराज होटल। रिक्शे वाले ने जाने के लिए मना किया तो वो झगड़ पड़ा। ऑटो रिक्शा वाले ने उलझना ठीक नहीं समझा, चुपचाप उन्हें बैठा कर नटराज होटल की राह पकड़ी। कुमकुम ही उसे समझाती रही, नाहक दिल छोटा कर रहे हो मनीष, माँ है। मनीष का उबाल भी अब ठंडा पड़ चुका था। कुमकुम के कंधे पर सिर रखकर उसने आंखें मूंद ली और इस शादी से सबके नाराज होने की शिकायत करने लगा। कुमकुम रोने लगी, दोष मेरा ही है मनीष। मनीष का मन कुमकुम के प्रति उमड़ आया। ये कैसा समाज है जहाँ पुरुष का हर दोष कबूल है, बूढ़ा, विधुर, दुहिजवा, बच्चों का बाप, तलाकशुदा, किंतु इन विशेषताओं से युक्त नारी त्यक्ता ही मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्यों सभी को अक्षता कमसिन नारी ही पत्नी बहू के रूप में चाहिए? सहसा उसने कुमकुम का चेहरा हथेलियों में भर लिया। एक बात याद रखो कुमकुम, मनीष केवल तुम्हारा है। मैं इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर ढूंढ लूंगा। लौटकर मनीष ने लंदन में बसे अपने जीजाजी को सारे हालात लिखकर ये देश छोड़ देने की इच्छा जाहिर की। सामने स्मिता खड़ी गणित के सवाल पूछ रही थी। अखबार हाथ से छूटकर जाने कब का गिर चुका था। मनीष ने जोरों से आंखें मीच कर खोली। हाँ सचमुच 7 साल बीत गए, लेकिन शादी के पहले के 6 सालों का बीतना भूख, नौकरी के लिए संघर्ष और पैसों की मोहताजी थी। इस शहर में आकर भाग्य आजमाने की जिद थी और कुमकुम से ब्याह का ये पहला वर्ष समाज के थोथे उसूलों का था, ताने उपहास का था, कुंठा और तनाव का था। अक्सर ऐसा होता है, अतीत कुछ इस शिद्दत से उसे जकड़े है कि वो चाहकर भी नहीं भुला पाता। अक्सर खो जाता है बीते लम्हों में, लगता है मानो जो कुछ बीता है उसके ही शरीर का हिस्सा है और वो बस चुपचाप सहता जाता है सब कुछ। एकाएक डोरबेल बज उठी, साथ ही लेटर बॉक्स की दरार में से एक लिफाफा अंदर सरका। लिफाफा खोलते ही उसके हाथों को मानो पर लग गए। लंदन से जियाजी का खत था। उन्होंने कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर भेजने की खबर लिखी थी और उसे वीजा निकलवाकर लंदन आने का लिखा था। उसने उमंग कर कुमकुम को बाहों में भर लिया। ये देखो लंदन से मेरा बुलावा, वहाँ एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी हिंदी का अखबार लॉन्च कर रही है। देखो संपादक की पोस्ट के लिए आमंत्रण आया है। नहीं मनीष, इस तरह की जॉब तुम्हें यहाँ भी मिल सकती है। हम अपने हालात से पलायन नहीं करेंगे, हमने कुछ गलत थोड़ी ही किया है, और इस बात को समाज को, हमारे अपनों को समझना होगा। मनीष कुमकुम का चेहरा देखता ही रह गया। उसे एहसास हुआ कि धारा के विरुद्ध नाव का किनारे पर लगना और नए सूर्योदय की सतरंगी आभा में सब कुछ का सिमट जाना।
2: एक मुट्ठी आकाश, इस कहानी का वाचन कर रही थी सुनीता राजपाल और कहानीकार थी संतोष श्रीवास्तव। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आइए अब सुनते हैं रानी मोटवानी की चुनिंदा कविताएं।
4: शतरंज। जिंदगी की विचार पर भी चली जाती है कुछ चालें, कभी आड़ी तो कभी तिरछी, समझ नहीं आती मुझे कोई चाल, हर बार होती है शह और फिर पानी, गिरती संभलती होती हूँ मैं तैयार, फिर एक चाल चली जाती है, किसी की होती है ढाई चाल, प्यादे व वजीर मारे जाते हैं, फिर शह और फिर मार। शतरंज की बिसात पर सफेद मोहरा सफेद को और काला मोहरा काले को नहीं मारते, जिंदगी की बिसात पर अपनों ही के बीच शह मार का खेल होता है, किसी अपने का जमीर मरता है तो जैसे मेरा वजीर मरता है, जीवन की बिसात पर अपनों ही से शह और अपनों ही से मात होती है। एक कुंज बिहारी मैं नहीं मानती, हे कृष्ण कहाँ हो तुम, द्रौपदी चीर हरण समय तुम आ गए थे अपना चमत्कार दिखाने, आज कितनी बालाओं का होता है चीर हरण, सिर्फ यही नहीं काट काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, क्या उस वक्त किसी ने तुम्हें नहीं पुकारा था, मैं नहीं मानती। तुमने अर्जुन से कहा रणभूमि में युद्ध कर, क्या हुआ अंत में, सब पुरुष मारे गए घायल हुए, रह गए कौन, बच्चे और उनकी विधवा माताएं, क्या तुम रोक नहीं सकते थे, मैं नहीं मानती। किताबों की दुनिया। मेरी किताबों की दुनिया में मुझे खोना अच्छा लगता है, कभी नायक के साथ पहाड़ चढ़ जाती हूँ, कभी कॉलेज में मुबारिसों में करती हूँ तर्क वितर्क, घूम आती हूँ देश परदेश, शहीदों वाली किताबों पर लगाती हूँ एक टिक्का और करती हूँ नमन जय हिंद, रात को कुछ पन्ने पढ़ती हूँ कुछ पन्ने पलटती हूँ, किताब को सरहाने रख के सो जाती हूँ हो जाती हूँ। एक रात चांद उतरा मेरी खिड़की में, एक रात चांद उतरा मेरी खिड़की में, मैंने पूछा चांद से तुम पूरी रात घूमते हो आलीशान महलों ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर, छोटी छोटी झुग्गियों को देखते हुए खेतों में खलियानों में पर्वत पर नदी और समुद्र की लहरों को निहारते हुए, बताओ क्या हाल है इस जहां का, चांद कुछ हल्का सा मुस्कुराया, चेहरा फिर गंभीर बनाया और कहा पैसे वाले और पैसे कमा रहे हैं, गरीब वही के वही हैं, कुदरत हमेशा की तरह खूबसूरत। महंगाई। कहते हैं लोग हैं महंगाई का जमाना, मैं विवश हूँ करने पर मतभेद, आदर्शों उसूलों पर न होता कोई कुर्बान, प्यार मोहब्बत इश्क हो गए हैं धुआं धुआं, हर जज्बा है सस्ता रिश्ते नाते खो बैठे अपना मोल, है हर चीज सस्ती तुम कहते हो है महंगाई का जमाना, हर चीज बिकती है सस्ती, जिंदगी सस्ती मौत सस्ती, कहाँ है महंगाई, बीए हो या एमए सनद और पदवी बिकती है बड़ी सस्ती, आदर्श और उसूल होते नहीं अनमोल, बस लगता है एक मोल, महंगाई तोड़ रही है दम।
2: आपने सुनी चुनिंदा कविताएं रानी मोटवानी की आवाज में। रानी मोटवानी की कविताएं सुनने के साथ ही आज का ये सुरीला सफर यहीं तक। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
5: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और आज के प्रोग्राम का होस्ट सत्यनारायण अय्यर सूरत गुजरात से लेकर आया हूँ जयपुर रेडियो पे एक बार फिर आपके लिए प्रोग्राम अभिनेत्री। दोस्तों, आज का अभिनेत्री प्रोग्राम बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा जी पर है। आज के इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे रेखा जी पर फिल्माए गए कुछ बेहतरीन नगमे, जिसे लेकर आई है गायरे का पाल राजकोट गुजरात से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ बातें गायरे का जी के बारे में। गायरे का पाल, जिन्हें हम आयात के नाम से भी जानते हैं, वैसे तो बिलोंग करती है बंगाल से, पर अभी गुजरात के राजकोट में स्थायी है। केवल 3 साल की उम्र से उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। जहां तक उनकी एजुकेशन का सवाल है, उन्होंने MA BEd किया है और राजकोट की एक स्कूल में

या जिसमें 1958 में बनी इंटी गुट्टू और 1966 में बनी रंगूला रत्नम में उन्होंने काम किया। 1968 में नैरोबी स्थित एक बिजनेसमैन कुलजीत पाल, जो कि उनकी फिल्म अनजाना सफर के लिए नए चेहरे की खोज कर रहे थे, जेमिनी स्टूडियोज पहुंच गए, जहां उन्होंने रेखा जी को देखा और उनको अपने फिल्म में एज ए सेकेंड हीरोइन ले लिया। कुलजीत जी ने उन्हें 5 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें 4 उनकी फिल्म और 1 उनके भाई शत्रुजीत की फिल्म थी। चलिए आज का पहला नगमा सुनते हैं, जिसे हमने 1986 में बनी जाबाज फिल्म से लिया है। रेखा जी ने एज ए गेस्ट आर्टिस्ट इसमें काम किया था। गीत के बोल है प्यार दो प्यार लो, जिसे प्लेबैक दिया था सपना मुखर्जी ने, और यहाँ लेकर आ रही है गाय रेखा जी। गीतकार इंदिवर और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

वाह गायरेका जी, आपने समा बांध दिया आज की शाम का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1969 में रेखा जी ने मुंबई शिफ्ट किया और वो एक होटल में रूम किराए पर लेके रहने लगी। साथ ही कुलजीत जी ने रेखा की हिंदी फिल्म में डेब्यू का अनाउंसमेंट कर दिया। अनजाना सफर, जिसको राजा नवाते साहब ने डायरेक्ट की थी, रेखा जी ने सुनीता का पात्र निभाया, जो कि एक औरत की कहानी है जिसे अपने पिताजी जबरदस्ती अफ्रीका के सफर पर भेज देते हैं छुपे खजाने की खोज में। 1969 में मुंबई शिफ्ट होते ही उन्हें प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन सहगल ने भी उनकी रोमांटिक थ्रिलर सावन भादो के लिए साइन कर दिया, जिसमें रेखा जी ने चंदा का किरदार निभाया, जो कि एक गांव की लड़की का रोल था जिसे अपने प्रेमी विक्रम से शादी करने की अनुमति नहीं मिलती। चंदा के किरदार के लिए पहले जयश्री टी को ऑफर मिला था, पर किसी वजह से उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस मूवी के जब डायलॉग्स बोलते थे रेखा जी, तो सेट पर सभी उनका मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि उनकी हिंदी में साउथ इंडियन एक्सेंट थी। सावन भादो 1970 में रिलीज हुई, जिसे काफी सफलता मिली। फिल्म वर्ल्ड मैगजीन ने सावन भादो की सफलता को रेखा के हिंदी फिल्म कैरियर के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू बताया। इसके बाद रेखा जी को कई फिल्में मिली, पर इतनी सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1972 में रामपुर का लक्ष्मण, 1973 में कहानी किस्मत की और 1974 में प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्म की, जिसमें आंशिक सफलता मिली। 1975 में बनी वॉर फिल्म आक्रमण में रेखा जी ने राकेश रोशन के ऑपोजिट काम किया और उसी साल रणधीर कपूर के धर्म करम और फिरोज खान के धर्मात्मा में काम किया, जो कि सफल फिल्मों में गिनी गई। तो लीजिए सुनते हैं आज की शाम का दूसरा नगमा, जो कि 1978 में बनी फिल्म घर से लिया है। लता जी का गाया हुआ ये बहुत ही प्यारा नगमा, गुलजार साहब का लिखा और पंचमदा का संगीत। सुनते हैं गायरेका जी की आवाज में।

बहुत खूब गाई रेखा जी। दोस्तों, इन फिल्मों के बाद रेखा जी ने अपने फिजिक पर काफी ध्यान दिया, क्योंकि उनके वेट को लेकर, उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन, साउथ इंडियन फीचर्स को लेकर इंडस्ट्री में काफी चर्चा हो रही थी। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि बॉलीवुड की उस वक्त की हीरोइन के सामने रेखा जी कुछ भी नहीं थी। रेखा जी ने अपने मेकअप, ड्रेस सेंस और अपनी एक्टिंग टेक्निक इम्प्रूव की, और साथ ही उन्होंने सिर्फ ऐसी फिल्में साइन करना शुरू किया जिसमें उनका रोल महत्वपूर्ण हो। इस बदलाव के बाद रेखा जी की महत्वाकांक्षी फिल्म 1976 में अमिताभ बच्चन के साथ आई दो अनजाने, जो कि निहार रंजन गुप्ता की नॉवेल रात्रि यात्री पर बनाई थी दुलाल गुहा साहब ने। इस फिल्म में रेखा जी के अभिनय से फिल्म मेकर्स उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में लेने के लिए बेताब होने लगे। आगे चलते 1977 में रेखा जी ने अमिताभ बच्चन के साथ एक्शन क्राइम खून पसीना में काम किया। 1977 में विनोद खन्ना जी के साथ आपकी खातिर में काम किया, जिस फिल्म में उनके किरदार के लिए कई फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उनको अवार्ड से नवाजा। फिल्म ईमान धर्म के लिए उन्हें फिल्म वर्ल्ड ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया, जिसमें रेखा जी ने एक तमिल मजदूर दुर्गा का किरदार निभाया था। रेखा जी के फिल्म सफर में सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग प्वाइंट आया 1978 में बनी गर फिल्म से। 1978 में ही रिलीज हुई उनकी मुकद्दर का सिकंदर उस दशक में बनी सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी गई। इस फिल्म में रेखा जी ने एक तवायफ का रोल किया जोराबाई के नाम से, जो कि बहुचर्चित रही। इस रोल के लिए उनका नाम नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए। रेखा और उनके को स्टार अमिताभ बच्चन के लव अफेयर को लेकर फिल्म मेकर्स भी उनको पैर करके अपनी फिल्म में रोमांच लाना चाहते थे। 1979 में बनी दो फिल्म मिस्टर नटवरलाल और सुहाग में रेखा जी को अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट किया गया था। अगले दो साल रेखा जी के लिए और भी सफलता भरे रहे, जिसमें 1988 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म खूबसूरत, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में उनके अलहड़ लड़की की भूमिका को काफी सराहा गया और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला, और साथ ही खूबसूरत फिल्म को भी। इसके बाद रिलीज हुई मांग भरो सजना जुदाई, जिसमें रेखा ने काबिले तारीफ अदाकारी का नमूना दिया था। दोनों ही फिल्म टी रामा राव ने डायरेक्ट की थी। आइए अगला नगमा सुनते हैं गाई रेखा जी की आवाज में, जिसे लिया है फिल्म अगर तुम न होते, जो 1983 में बनी थी। गीत के बोल है हमें और जीने की चाहत न होती, लता जी का गाया, गुलशन बावरा का लिखा और पंचमदा का संगीत। इस फिल्म में रेखा जी ने राजेश खन्ना और राज बब्बर के साथ काम किया था।

बहुत खूब गए रेखा जी। दोस्तों 1981 में रेखा जी की सबसे पहली फिल्म रिलीज हुई थी उमराव जान, जो कि 1905 में लिखी मिर्जा हदी रुसवा साहब की उर्दू नॉवेल उमराव जान अदा से प्रेरित होकर बनाई। इस फिल्म में रेखा जी की उम्दा भूमिका से प्रभावित होकर उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से सम्मानित किया गया। इसके बाद बनी फिल्म में बहुचर्चित सिलसिला थी, जिसमें रेखा ने अमिताभ की प्रेमिका का रोल किया, जबकि जया बच्चन ने उनकी पत्नी का। फिल्म काफी चर्चा में रही पर इतनी सफल नहीं हुई। इसी साल में बनी रमेश तलवार की बसेरा, टी रामा राव की एक ही भूल, सावन कुमार की साजन की सहेली, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई। इस दौरान रेखा जी ने कमर्शियल फिल्म के साथ साथ 8 फिल्म्स में काम करना शुरू किया, जिसमें 1981 में कलयुग, 1982 में विजेता, 1984 में उत्सव और 1987 में इजाजत थी। कलयुग श्याम बेनेगल की डायरेक्ट की हुई फिल्म थी, जो महाभारत पे आधारित थी, जिसमें रेखा जी ने द्रौपदी का रोल किया। 1982 में बनी जीवन धारा के लिए उनको बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1984 में बनी गिरीश कर्नाड की उत्सव, जो कि शूद्रक के संस्कृत नाटक मृच्छकटिका पर बनाई गई थी, जिसमें रेखा ने वसंत सेना के पात्र को जीवंत किया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने रेखा जी को इस फिल्म के अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस हिंदी से सम्मानित किया था। 1988 में बनी खून भरी मांग के लिए रेखा को अपने अभिनय के लिए दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। द ट्रिब्यून के ML धवन ने लिखा था, खून भरी मांग वॉज अ क्राउनिंग ग्लोरी फॉर रेखा, हु रोज लाइक अ फिनिक्स एंड बीडेजल्ड द ऑडियंस विथ हर डेयर डेविलरी। स्क्रीन मैगजीन ने लिखा, 10 मेमोरेबल रोल्स दैट मेड द हिंदी फिल्म हीरोइन प्राउड। 1990 में दिल्ली के इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी हुई। रेखा जी को शादी के काफी बाद ये पता चला कि मुकेश जी मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। शादी के कुछ ही महीनों में मुकेश जी ने अपनी मेंटल हेल्थ से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद कई रूमर्स चले थे कि रेखा जी ने विनोद मेहरा से शादी कर ली, पर आगे चल के रेखा जी ने ये बताया कि वो विनोद जी को उनकी एक शुभ चिंतक मानती थी और शादी की बात महज एक अफवाह थी। 1990 से 1999 तक में रेखा की कई फिल्म रिलीज हुई, उनमें से आधी सफल रही और आधी बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा चली नहीं। उनके जनरेशन की हीरोइन हेमा जी और राखी जी भी इस पीरियड में स्ट्रगल कर रही थी, पर रेखा ने नए दौर की हीरोइन के आगे भी अपना रुतबा बनाए रखा। उनकी तब रिलीज हुई मेरा पति सिर्फ मेरा है, अमीरी गरीबी और फूल बने अंगारे बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। फूल बने अंगारे के उनके रोल से प्रभावित होकर कई प्रोड्यूसर्स उन्हें सिमिलर टाइप के रोल्स ऑफर करने लगे। इनमें 1992 में इंसाफ की देवी, 1995 में अब इंसाफ होगा, 1997 में उड़ान, खिलाड़ियों के खिलाड़ी जिसे उमेश मेहरा ने डायरेक्ट की, और इसमें रेखा जी ने पहली बार नेगेटिव रोल किया था और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट विलन मिला था। 1997 में बासु भट्टाचार्य की आखिरी फिल्म आस्था में उन्होंने काम किया था। 1998 में किला और 1999 में मदर फिल्म रिलीज हुई थी। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं 1979 में बनी मिस्टर नटवरलाल से ये प्यारा सा नगमा, परदेसिया ये सच है पिया, जिसे प्लेबैक दिया किशोरदा और लता जी ने। यहाँ लेकर आ रही है गायरेका जी, आनंद बख्शी के लिरिक्स और राजेश रोशन का संगीत।

0: एक और सुंदर प्रस्तुति गायरेका जी। दोस्तों 2000 से 2006 के बीच रेखा जी की फिल्म सफर में बुलंदी से शुरुआत हुई, जिसे टी रामाराव ने डायरेक्ट की थी। 2001 में लज्जा के लिए उनका नाम फिल्म फेयर और इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। राकेश रोशन की साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया में उनको फिर नॉमिनेट किया गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। इसके अलावा उनकी 2005 में एज अ गेस्ट आर्टिस्ट परिणीता, 2006 में कुड़ियों का है जमाना, 2006 में ही कोई मिल गया के सीक्वल क्रिस में कोई मिल गया के उनके रोल को रिपीट किया। 2010 में भारत सरकार ने रेखा जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। 2010 में ही फिल्म सदियां आई, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने डेब्यू किया था, पर फिल्म सक्सेसफुल नहीं रही। 2014 में रेखा ने फितूर में काम करना शुरू किया था, पर अचानक उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी, जिसमें बाद में टब्बू को लिया गया था। 2014 में सुपर नानी में उन्होंने नानी का रोल अदा किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आज का प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा आप सबसे। जयपुर रेडियो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने का। शुक्रिया दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। मैं चारू वैद्यनाथन मुंबई से बोल रही हूँ। अभी समय है हमारे रविवार के साप्ताहिक प्रोग्राम का, जिसका नाम है अभिनेत्री। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभिनेत्री एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम 50 के दशक से लेकर आज तक की मशहूर हिंदी फिल्म हीरोइंस पर फिल्माए गए हिंदी फिल्मी गीत गा के लाने की कोशिश करते हैं, और इसके दौरान हम बताते हैं इनकी जीवन कहानी, फिल्मोग्राफी, ट्रिविया, रूमर्स, इनके लिंकअप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन सारे ही गानों को गा के लेके आती हैं जयपुर रेडियो की ही एक बहुत ही मधुर और सुरीली गायिका। आज जिस अभिनेत्री की बात हम करने जा रहे हैं, वो हैं 70 के दशक की एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस हुज मोर और लेस नोन फॉर हर वैम्पिश रोल्स एंड द रोल्स ऑफ अ सेडक्ट्रेस एंड मशहूर डांसर नोन फॉर हर कैबरे नंबर्स, बिंदु जी। जी हाँ, बिंदु जी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और इनके सारे ही गाने गा के लेके आ रही हैं जयपुर रेडियो की डॉक्टर संगीता सचदेवा दिल्ली से। ये पेशे से तो दिल की डॉक्टर हैं, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, एंड हर पैशन इज सिंगिंग एंड क्रिएटिविटी। आइए सुनते हैं इनके बारे में इन्हीं की जुबानी, और ये भी सुनते हैं कि आज जयपुर रेडियो के स्टूडियो में क्या धमाल करने वाली हैं ये।
2: थैंक यू सो मच आरू, एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ दिस शो। दिस इज डॉक्टर संगीता सचदेवा। हां जी, मैं डॉक्टर हूँ। आई एम अ दिल की डॉक्टर, अ कार्डियोलॉजिस्ट, और मैं दिन में बहुत सारे दिलों में झांकती हूँ। बट म्यूजिक टचेस माई हार्ट एंड सोल, and this tryst with music, this passion of mine, this hobby of mine has been instrumental in getting me to this platform, and I'm so thankful to Jaipur Radio that they considered me worthy to be part of this show. And aaj main aapko Bindu ji pe filmaye gaye kuch gaane sunaungi. It was quite challenging kyunki ye gaane are not very often heard and not very often sung actually also. And ab aise kariye ki aap apne AC on kariye, because temperatures are going to rise, and I hope you enjoy listening to it as much as I enjoyed singing it. Thank you so much.
3: Mera na hai Sangeeta, pyaar se log mujhe Sangi kehte hain. अभिनेत्री प्रोग्राम के एंकर का नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या चारू?
1: आज इत्तफाकन डॉक्टर संगीता सचदेवा की बेटी दीक्षा का जन्मदिन भी है। it's Adiksha. Here's wishing you a very, very happy birthday. May you have a fantastic day today and a wonderful life ahead. Now, Adiksha, many people have sent you love-laden wishes. We'll listen to all of them, but let's first start with your mother who wishes to dedicate this program to you. So, over to you, Sangeeta ji.
2: Adiksha, mummy wishes you a very, very happy birthday and may God grant you a long, healthy life. Always be surrounded by loved ones, full of happiness and success in every endeavor. God bless you, beta. I love you.
1: Adiksha, let's hear what your father, Dr. Anupam Sachdeva, wants to say.
4: Happy birthday, Adiksha. Papa speaking. May God bless you. Have a great time.
1: Here's your brother, Dr. Divit Sachdeva, with his wishes for you.
5: Hey, hi Adiksha, my lovely sister. This is Divit here, wishing you a happy birthday and wishing you the best of this day and of the coming year. Enjoy yourself.
1: अब सुनते हैं कि नाना जी ब्रिगेडियर आरपी वर्मा जी क्या कहना चाहते हैं.
6: Hello Adiksha, this is Nana here. Wishing you many, many happy returns of the day. God bless you.
1: Adiksha, here's your chacha and chachi, Major General Pankaj Sachdeva and his wife Anuradha, wishing you.
7: Hello.
8: Hi, Adiksha.
7: Hi, Adiksha. This is Chachu and Chachi, wishing you a very, very happy birthday.
8: Many happy returns of the day.
7: And have a great life ahead.
8: And a wonderful day.
7: All the best. Take care. God bless.
8: God bless you.
1: Now let's listen to your bade mama and mommy, Dr. Sanjeev Verma and Sunita Verma, wishing you.
9: Special birthday greetings to dear Adiksha from her sporty Sanjeev mama. Remember, life is a game we play, but it's not a race. So just don't strive to compete. Just complete it with grace. Happy birthday once more, Adiksha.
10: Happy birthday, Adiksha. This is Sunita Mami. God bless you.
1: Adiksha, here's your bua, Dr. Deepa Paisi, and your uncle, Mr. Rajesh Paisi, wishing you.
11: Hi, Adiksha. Wish you a very happy birthday. Enjoy your day to the fullest. Wish you many, many more years with lots of love from your bua and bua uncle.
1: And finally, Adiksha, here's your chote mama, Dr. Sandeep Verma, and your chote mami, Dr. Anju Verma, wishing you.
12: Hi, Adiksha.
13: This is
12: Sandeep Mama
13: and Anju Mami.
12: Wishing you a very happy birthday today.
1: चलिए अब बिंदु जी की बातें करते हैं. बिंदु नानू भाई देसाई का जन्म 17 अप्रैल 1951 को गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे गांव हनुमान भगड़ा में हुआ था. इनके 6 और बहनें हैं और एक भाई, तो कुल मिला के 8 सिबलिंग्स हैं ये. इनके पिता नानू भाई देसाई एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और इनकी माँ ज्योत्सना एक स्टेज एक्ट्रेस और डांसर. छुटपन से ही बिंदु जी को मॉडलिंग, एक्टिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था. उनको 11 साल की उम्र से ही मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलते थे. जब अकस्मात इनके पिता बीमार पड़ गए जब बिंदु जी 11 साल की थी, तो फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पे पड़ गई एंड शी हैड टू बिकम द अर्निंग मेंबर एट द एज ऑफ 11. तो इन्होंने इनिशियली मूवीज की संतान, एक फूल चार कांटे, पर इनका डेब्यू मूवी माना जाता है फिल्म अनपढ़ में, जो इन्होंने 11 साल की उम्र में किया था, वेयर शी प्लेज माला सिन्हाज डॉटर. 13 साल की उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, तो देन शी कंटिन्यूड टू सपोर्ट हर फैमिली. बिंदु जी खुद इंटरव्यूज में बोल चुकी हैं कि ऑल्दो शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज वेरी फिल्ड आउट एंड शी वॉज वेल बिल्ट एंड शी लुक्ड 16 एट द एज ऑफ 11. बिंदु जी एक्ट्रेस वैजयंतीमाला जी को अपना रोल मॉडल मानती हैं बिकॉज शी वॉज सो मच इन लव विद द वे दैट वैजयंतीमाला एक्टेड लुक्ड एंड पर्टिकुलरली वैजयंतीमाला इज डांसिंग बिकॉज बिंदु जी हर सेल्फ इज ट्रेन्ड इन बोथ कथक एंड भरतनाट्यम.

ये गाना तो काफी पॉपुलर है, लता जी का गाया हुआ, मदन मोहन जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। ये गाना फिल्म अनपढ़ से है, बट डू यू नो दैट द सॉन्ग वॉज फिल्म्ड ऑन बिंदु जी। वॉट अ फिनोमिनल फाइंड संगीता जी, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू आवर अटेंशन। शी रियली लुक्स मच ओल्डर देन हर ट्रू एज इन दिस मूवी अनपढ़, और इस गाने में तो बहुत ही बड़ी लगती है बिंदु जी। अनपढ़ के इस ब्रीफ स्टिंट इन मूवीज के बाद शी वेंट बैक टू स्कूल। बिंदु जी बहुत इन बिटवीन स्टेट में थी, ना ये फुली ग्रोन अप वूमन थी ना वे चाइल्ड। सो इस एडोलेसेंट स्टेज में इनकी मुलाकात हुई इनके फ्यूचर हस्बैंड से, जो इनके नेबर थे इन सोनावाला टेरेस इन तारदेव इन मुंबई। ये एक आउटडोर एडवर्टाइजिंग का बिजनेस चलाते थे। दोनों में मुलाकातें हुई, प्यार बढ़ा, एंड दोनों में एज डिफरेंस भी 5 ईयर्स का था, फिर भी इन्होंने शादी की जब बिंदु जी सिर्फ 16 साल की उम्र की थी। हाउएवर बिंदु जी कॉल्स हर हस्बैंड हर फादर फिगर बिकॉज ही वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ हर करियर इन एक्टिंग एंड सपोर्टेड हर इन ऑलवेज पॉसिबल। 17 साल की उम्र में इनकी मुलाकात डायरेक्टर राज खोसला से हुई। खोसला जी ने इनको ऑफर किया द रोल ऑफ नीलांबरी इन द मूवी दो रास्ते। नाउ दिस वॉज अ वैम्पिश रोल, और इनको 15 दिन मिले इस रोल के बारे में सोचने के लिए, बट बिंदु जी थॉट वाई नॉट अ वैम्प, and she gave it a try, and this Do Raste movie was a super hit. It was based on Chandrakant Kakodar's celebrated novel Nilambari. Phir inhone ki movies Ittefaq, Aaya Saawan Jhoomke, aur 1970 mein aayi movie Shakti Samanta ki Kati Patang. कटी पतंग में मिली इनको रोल शबनम की, और रोल मिली अंडर द कंडीशन दैट शी शुड बी एबल टू डांस कैबरे, and she was really inspired by Helen G's dances, cabaret dances, and she said is movie or is gaane ke liye she had to let go all of her inhibitions. Ye classical steps of Bharatnatyam and Kathak would not work on this. Being worried about skin exposure, she wore skin colored nylon clothing, and she really let go of herself, and this song in particular became a super duper hit. कार्यक्रम का पहला गीत इसी फिल्म से है कटी पतंग, और यही गाना है मेरा नाम है शबनम, जिसे फिल्म में गाया है आशा भोसले जी ने और हमारे लिए गा के लेके आई हैं संगीता जी।

0: जाना मिली थी कभी उस रात को डरो नहीं बात है वो रास की पर रास रास ही रहेगा मेरा नाम है शबनम प्यार से लोग मुझे शबो कहते हैं
1: तुम्हारा नाम क्या है

जानती हो मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना। मीना।

इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस था वो संगीता जी, मजा आ गया। 1973 की बनी मूवी जंजीर में बिंदु जी एक्टेड एज मोना डार्लिंग, द डॉन्स आर्म कैंडी, अलोंग विद रॉबर्ट डॉन्स साइड किक। नाउ सो पॉपुलर बिकेम द कैरेक्टर ऑफ मोना डार्लिंग एंड रॉबर्ट एंड अजीत जीज डिलीवरी ऑफ दीज लाइन्स दैट इट गेव राइज टू अ सीरीज ऑफ मोना डार्लिंग एंड रॉबर्ट जोक्स। एंड रियली दिस इज वन ऑफ द मूवीज एंड दीज टू रोल्स आर वेरी सॉट आफ्टर इन द पॉसिबल रीमेक ऑफ दिस मूवी जंजीर। कार्यक्रम का अगला गीत हमने इसी मूवी से लिया है, जंजीर से। फिल्म में इसे गाया है आशा जी ने, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। तो चलिए सुनते हैं ये गाना संगीता जी की आवाज में।

इतना नशीला और मजेदार मूड आपने पैदा किया संगीता जी, बहुत ही मजा आया आपको सुन के। 1973 में बनी बॉलीवुड सस्पेंस ड्रामा रवि टंडन जी की अनहोनी। नाउ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्म्स मेड इन बॉलीवुड। इसके लीड रोल्स में थे संजीव कुमार जी, लीना चंद्रवारकर एंड कामनी कौशल ने इसमें एक नेगेटिव रोल प्ले किया था। बिंदु जी कम्स इन द रोल ऑफ रीटा। ये गाना जो संगीता जी अपनी आवाज में गाने वाली हैं, ये गाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ये फिल्म में गाया है आशा भोसले जी ने और म्यूजिक डायरेक्टर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

देखो ना, दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते, मगर

आउटस्टैंडिंग सिंगिंग संगीता जी, सच में ऐसा लगता है कि आपको सुनते रहे। 1973 में ही बिंदु जी ने एक और फिल्म किया था अभिमान, बट दिस वॉज लाइक ए एंटी थीसिस टू ऑल द अदर रोल शी हैड डन दस फार। शी एक्चुअली प्लेज हर फर्स्ट पॉजिटिव रोल इन दिस मूवी एज अ फ्रेंड एंड सपोर्टर ऑफ अमिताभ बच्चन। नाउ ऋषिकेश जी, ऋषिकेश मुखर्जी टोल बिंदु दैट तुम जब एंट्री मारोगी इस मूवी में तो सब समझेंगे तुम वैम्प बन के आओगी और इनकी शादी तोड़ने की कोशिश करोगी अमिताभ और जया भादुरी की, बट यू विल हैव टू सरप्राइज देम, योर फर्स्ट सीन शुड मेक ऑल द डिफरेंस, एंड इट डिड, एंड सच अ लवली रोल शी प्लेड इन दिस मूवी। 1974 में बनी मूवी प्राण जाए पर वचन न जाए, दिस अगेन इज वन ऑफ द लेसर नोन मूवीज फॉर बिंदु जी इन पर्टिकुलर। इस मूवी के सारे गाने आशा भोसले जी ने गाए हैं, फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओपी नैयर साहब, लिरिसिस्ट हैं एसएच बिहारी साहब। इसमें एक गाना है जो आशा भोसले जी ने

क्या बात है संगीता जी, स्पेक्टेक्युलर सिंगिंग, बहुत ही मजा आया आपको सुन के। 1974 में बनी फिल्म हवस, जो प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड एज वेल एज रिटन थी बाय सावन कुमार जी, लीड रोल्स में थे अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु ने कामिनी का रोल किया था जो नीतू सिंह की स्टेप मदर होती हैं, एंड जो उन नीतू सिंह के लवर अनिल धवन पर डोरे डालती हैं, एंड शी ट्राइज टू सड्यूस हिम। कार्यक्रम का ये गीत जो संगीता जी गा के लेके आई हैं, फिल्म में इसे गाया है आशा भोसले ने, संगीतकार उषा खन्ना हैं और लिरिक्स हैं सावन कुमार जी की। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: वाओ संगीता जी, मान गए आपको, बहुत ही बढ़िया गाती हैं आप। कार्यक्रम का आखिरी गीत भी फिल्म हवस से ही है, मगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इंटरल्यूड्स में बोली गई डायलॉग्स जो संगीता जी बोलने वाली हैं, उसे ध्यान से सुनिए। दे हैव बीन सेड विद सो मच ऑफ वॉर्म्थ, सो मच ऑफ सेडक्शन एंड सो मच ऑफ इमोशन, एंड शी हैज मेड सच अ फैंटास्टिक एफर्ट टू मैच इट विद द मूड ऑफ द सॉन्ग एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉन्ग। एंड डोंट फॉरगेट टू लिसन टू हर स्मॉल लिटिल स्निपेट और मैसेज At the end of the song, I hope you enjoy this song. ये गाना है, ये हवस क्या है, फिल्म में से गाया है आशा भोसले जी ने, तो सुनिए ध्यान से संगीता जी को।
1: हम तो मौजूद थे रात में उजालों की तरह, तुम निकले ही नहीं ढूंढने वालों की तरह, दिल तो क्या हम लू में भी उतर जाते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। ये हवस क्या है, मोहब्बत से वाकिफ नहीं है ये दुनिया, यहाँ हर कदम पर इश्क का जाम पिया जाता है। आप बात करते हैं वफा और बेवफाई की जनाब, यहाँ तो हवस को मोहब्बत का नाम दिया जाता है। ये हवस क्या है,

दिल के टूट जाने का इजहार जरूरी तो नहीं, तमाशा हो सरे बाजार जरूरी तो नहीं। मुझे था इश्क तेरी रूह से और अब भी है, जिस्म से हो तालुकात ये जरूरी तो नहीं। ये हवस क्या है मोहब्बत कर

को इश्क का नाम देकर वो इतरा रहे थे हमारे सामने उनका नाम लेकर वो उनको खबर ही नहीं क्या फर्क है इश्क और भूख में। इधर हम थक गए मोहब्बत में इंतहार देकर, यह बस क्या है।

0: किसी की मोहब्बत को नीलाम सरेआम करते हो, जिस्म की ख्वाहिश है और इश्क को बदनाम करते हो। ये हवस क्या है हम जानना ही नहीं चाहते।
1: 1977 से 1980 तक बिंदु जी कहती हैं वॉज द सैडेस्ट फेज।

अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय को सुनते हैं इस खास प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

कोटि कोटि दिगंबरा। आप सुन रहे हैं अलका त्रिपाठी को। शिव भक्ति धारा प्रोग्राम में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।

मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा न कोई दूजा। और जिस मत में सत्यम शिवम सुंदरम बसते हैं वो मंदिर ही हो सकता है। और हम इस सावन में मन

तो दोस्तों, ये थे प्रशांत अरोड़ा, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ टेक्निकल एक्सपर्ट श्री जगदीश अरोड़ा जी के सुपुत्र। पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रशांत पंजाब के संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं बल्कि अपने गीतों का संगीत भी स्वयं तैयार करते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को सुरों में पिरोकर श्रोताओं तक पहुंचाना उनकी पहचान बनता जा रहा है। प्रशांत अपने संगीत को अपने YouTube चैनल परफेक्ट, जिसको हम स्पेल करते हैं PRFKT, परफेक्ट के माध्यम से भी श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जहां उनके मौलिक गीत और संगीत, उनकी रचनात्मक सोच और संगीत के प्रति समर्पण की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करते हैं। आज की उनकी ये प्रस्तुति ने ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा, समर्पण और निरंतर मेहनत मिलकर सपनों को नई उड़ान देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशांत अपनी कला से संगीत की दुनिया में और भी ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से प्रशांत अरोड़ा को ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें सफलता, सम्मान और अपार लोकप्रियता प्रदान करे और उनके सुर यूं ही हर दिल को छूते रहें।

नमस्कार, मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं आप सबका फेवरेट प्रोग्राम

जश्न सितारा गीत गुफ्तगु। इस प्रोग्राम में जहां हर मुलाकात में होती है एक कहानी, हर कहानी में होता है एक गीत, और हर गीत में छुपी होती है दिल की एक खूबसूरत दास्तान। दोस्तों, जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि कभी कभी हमारी मंजिल कुछ और होती है और रास्ते हमें कहीं और ले जाते हैं। लेकिन अगर जुनून दिल में जिंदा है तो इंसान अपने उस जुनून को

0: स्पेशल फील कर रहा हूँ आपके स्टूडियो में जश्न सितारा गीत गुप्तगु इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आपका और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये हमारी खुशकिस्मती है चैतन्य जी कि आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ रूबरू हमसे गुफ्तगु करेंगे और हमें ना सिर्फ आपकी मीठी आवाज में आपके गीत सुनने को मिलेंगे बल्कि हमें ये भी जानने को मिलेगा कि आपके जिंदगी का सफर और संगीत का सफर कैसा रहा। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी बचपन की उस दुनिया में चलते हैं जहां फल्टन में आपका बचपन बीता। तो आपके पिताजी प्रेस रिपोर्टर थे और उन्हीं के कारण आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ऑर्केस्ट्रा के पास मिलते थे। तो क्या आपको याद है अपना वो पहला ऑर्केस्ट्रा या वो गीत जिसने आपके मन में संगीत के लिए इतनी गहरी जगह बना ली?
0: जी बिल्कुल याद है सपना जी, वो मेरे लाइफ का इतना स्पेशल मोमेंट था। वो ऑर्केस्ट्रा बहुत ही मतलब बहुत ही गहरा असर कर गया मेरे मन पर कि जहाँ पे मैं म्यूजिक से कुछ सीख पाया हूँ और कुछ सीखने की प्रेरणा भी मिली है। उस ऑर्केस्ट्रा का नाम था ऑर्केस्ट्रा कलाकार सुधीर सिन्हा जी, उसके निर्देशक थे और प्रोड्यूसर थे। और उस छोटे से ऑर्केस्ट्रा में एक छोटी सी बच्ची ने गाना गाया था, उसका नाम था कश्मीरा शाह और उनके साथ मेल सिंगर थे मनोज जी। तो ऑर्केस्ट्रा कलाकार वॉज द फर्स्ट ऑर्केस्ट्रा तो जो मैंने सुना था, और वो गीत था परदेसी परदेसी जाना नहीं। उस टाइम पे कार्यक्रमों का कुछ लिमिट नहीं होता था, टाइम लिमिट गवर्नमेंट का, तो सुबह 3-4 बजे तक भी कार्यक्रम चलते थे। तो रात को 2 बजे तक मैं जब वहां पे बैठा रहा तो मेरे पापा मुझे बुलाने के लिए आ गए, अरे तेरा दोस्त भी चला गया, कोई नहीं, तो अकेला बैठा है। तो मैं खो गया था बस उस ऑर्केस्ट्रा में।
1: तो तब आपकी उम्र क्या रही होगी?
0: तब मैं 7 या 8 स्टैंडर्ड में रहूंगा शायद।
1: तो तकरीबन 10 से 11 साल की उम्र में होंगे आप?
0: हाँ उतना ही लगभग
1: जी। तो आपको बड़ी बारीकियों से सारे डिटेल्स याद है अभी तक, इतनी गहरी छाप छोड़ी।
0: बहुत बहुत मतलब वो गीत ही वैसा था, कम से कम 7-8 बार उस एक गीत को वंस मोर मिला था।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी एकदम, कश्मीरा शाह नाम था उनका। आज अगर वो आपका प्रोग्राम सुन रही है तो शायद उनको भी अच्छा लगेगा।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपकी ये याद है। और मैं वाकई हैरान हुई है सुनकर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन इतना कोमल हो जाता है कि कहीं नहीं पता चलता कौन सा इंसिडेंट हमारे मन पे इतनी गहरी छाप छोड़ जाता है कि हमारी जिंदगी की जो चाल है वो बदल जाती है। बहुत खूबसूरत। तो उसके बाद फिर आपने अपने डॉक्टर बनने तक का सफर कैसे किया?
0: मैडम एक्चुअली तो ये है कि मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था।
1: अच्छा।
0: क्योंकि बचपन से मैं एक छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पे एक महानाट्य था, डॉक्टर बाबा साहेब पुरंदर लिखित जानता राजा बोल के, तो हम घर के सभी लोग उसके कलाकार थे। तो स्टेज मेरे लिए नया नहीं था, वो लाइट्स, ऑडियंस, हजारों की ऑडियंस रहती थी सामने, तो स्टेज का कभी डर नहीं लगा। ये लगता था कि मैं आज कुछ नया करूं स्टेज के ऊपर जाकर, बहुत अच्छा फील करता था जब हजारों लोग मुझे देखते थे। तो ऐसा कुछ खास वो लगा नहीं मुझे कि स्टेज का डर वगैरह वो सब, बट तो वो मेरा एक पैशन बन गया कि मुझे हमेशा हाथ में माइक चाहिए और सामने ऑडियंस चाहिए, स्टेज चाहिए, वो सब जहन में आता रहा। तो मैं थोड़ा सा मेरा पैशन वो बन गया था कि मुझे स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ करना है। हाँ गाना गाना है ये तब तक फिक्स नहीं हुआ था, बट कुछ ना कुछ मुझे मिमिक्री करना है या एक छोटा सा भाषण देना है या फिर किसी की एक्टिंग करनी है, फिल्म इंडस्ट्री में हो या छोटी छोटी नाटिका जो हम एक अंक क्या बोलते हैं उसे मराठी में, जो एक अंक का होता है 30-40 मिनट की एक नाटिका होती है, उसमें भी मैंने काम किया है कॉलेज के जमाने में। डायरेक्शन भी किया है उसका, मेरा दोस्त था वो लिखता था, हम लोग उसमें एक्टिंग करते थे, कभी डायरेक्शन का भी मौका मिलता था।
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात है।
0: वो सब भी किया है मैंने। उसके बाद में जब इंटर्नशिप में था तब एक स्टूडियो था मेरे दोस्त का, तो आवाज में मेरी बेस होने की वजह से उसमें उनको काम मिलते थे, इलेक्शन का हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री हो, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री या नॉन पॉलिटिकल हो। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत बड़े होते हैं, उसके जो सीन होते हैं ऐतिहासिक सीन वगैरह कुछ करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, तो उसके डायलॉग वगैरह बोलने होते, तो मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करने का भी मौका मिला।
1: अरे वाह।
0: तो वो माइक से मैं दूर नहीं गया कभी, स्टेज और माइक से। वैसे तो बनना मुझे वो था, बट घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और मम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो और मेरे पापा ऐसे थे कि देखो उन्होंने बोला कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, समाज में अच्छी जान पहचान है, बड़े बड़े लोग जानते हैं, पॉलिटिशियंस जानते हैं, तो उनका एक सपना था कि देखो मैंने दूसरों के बच्चों के

0: ये बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने हाथ फैलाया है कि ये मेरा दोस्त है, इसके बच्चे के लिए कुछ कर दो वगैरह। बट मेरी एक इच्छा है कि मेरे बेटे की नौकरी के लिए मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो
1: बिल्कुल
0: तुमको जो करना है वो करो, बट ऐसा करो जिस क्षेत्र में जाओ मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा तुम्हारी नौकरी के लिए, और तुम जो भी काम करो, जो भी पढ़ाई करो, उस क्षेत्र का टॉप तुमको बन के दिखाना है। बस उनका यही गाइडेंस था मुझे। तो
1: जी।
0: मम्मी की इच्छा थी तो डॉक्टर भी बन गया मैं।
1: जी, तो कहा जा सकता है कि जो आपके पिताजी की जो गाइडेंस थी और जो उनके उसूल थे, उन्होंने भी आपकी जिंदगी पे बहुत गहरी छाप छोड़ी है।
0: जी बहुत
1: जी, तो इसी के साथ हम आपका गीत लेते हैं।

0: बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं चैतन्य जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने पिताजी का और अपना और अपनी माता जी का डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया और अपनी होम्योपैथी की प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन फिर परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक परिस्थितियों के कारण आपको एक साथ प्रैक्टिस और नौकरी दोनों भी करनी पड़ी। तो यह दौर की कोई ऐसी याद जो अभी भी आप भूल ना पाए, वो जो संघर्ष आपने देखा है और जो कठिन वक्त था, उसने आपको क्या सिखाया?
1: सप्ता जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। लेकिन ये जो मैं प्रैक्टिस करता था और नौकरी भी करता था, ये उस टाइम पे मुझे कभी संघर्ष लगा नहीं। अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि मैंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए थे उस टाइम पे। बट उस टाइम पे कुछ नया सीखने का मौका था। मैं मेरे पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता था, बट मैं हर पेशेंट से कुछ ना कुछ सीखता गया मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में। और जो आप जैसे जानते हो, किसी भी डॉक्टर के लिए शुरुआती का दौर इतना आसान नहीं होता है। वेटिंग पीरियड होता है, पेशेंट आने के लिए भी टाइम लगता है आपके पास। तो वो सब पीरियड कम करने के लिए, और एजुकेशन लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसके लिए मुझे जॉब करनी पड़ी, नाइट ड्यूटीज करता था मैं
0: जी।
1: और एक प्रैक्टिस भी मैं खुद के लिए भी जो मेरा मुझे एस्टेब्लिश करना था, अपना नाम कमाना करता, क्योंकि मेरे टाउन में मेरे पापा का नाम बहुत बड़ा था
0: जी।
1: तो उनके नाम को भी संभालना था और एक अच्छा डॉक्टर बनके दिखाना था, जैसा मैंने उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था, मैंने पहले बताया। तो दोनों भी करता रहा मैं। उसके बाद भी थोड़ा से पैसे कम पड़ते थे तो एक छुट्टी लेके वीकली एक वीक में पुणे में जाता था, जो कि 110 किलोमीटर अवे है मेरे टाउन से।
0: अच्छा।
1: तो वहां पे जाके वहां पे भी पेशेंट्स देखता था मैं। बट कुछ ना कुछ सीखने को मिला वो दोनों चीजों से, प्रैक्टिस
0: तो जो आपकी प्रैक्टिस थी और जो आपकी नौकरी थी, ये आपके होम टाउन में ही थी?
1: जी जी, दोनों एक ही जगह पे
0: जी। तो मुझे यहाँ पर एक बात बताइए चैतन्य जी, कि आजकल एलोपैथी की जो मेडिसिन है, वो अगर हमने जैसे क्विक रेमेडी कोई लेनी हो, जैसे जैसे स्टीरॉयड्स वगैरह भी एलोपैथी के अंडर आ जाते हैं, कभी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही होती तो डॉक्टर्स को हम खुद ही कह देते हैं कि डॉक्टर साहब कोई स्टीरॉयड इंजेक्शन दे दो या फिर कुछ ऐसा कर दो कि हमें तुरंत से आराम आ जाए। तो एलोपैथी और होम्योपैथी में आप क्या फर्क पाते हैं?
1: एलोपैथी है जस्ट आपको एक, जैसे आपकी ताले की चाबी खो जाती है ना
0: जी,
1: तो आप कुछ डुप्लीकेट चाबी वगैरह बना के उसको खोल के रूम के अंदर जाना, बस इतना ही है। बट वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मतलब आप अभी मुझे पेन हो रहा है, मैं टैबलेट ले लूंगी तो दूर हो जाएगा। और होम्योपैथी से टाइम लगता है कुछ चीजों को ठीक होने के लिए, एक मिसकंसेप्शन है। जैसा एलोपैथी के अंदर भी कुछ ट्रीटमेंट है जो सालों साल भी चलती है, वैसा ही होम्योपैथी के अंदर भी है। होम्योपैथी के अंदर क्या है कि होम्योपैथी के पास पेशेंट एक्यूट कंडीशन में नहीं आता है। एक्यूट मतलब मुझे दो दिन से फीवर है, तो उसके लिए कोई आता नहीं है जनरली। पहले पैरासिटामोल लेते हैं, उसके बाद में आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई कंजनेटल हार्ट डिसीज है, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग उसको यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, ऐसे बड़े बड़े बीमारी लेके आते हैं जो कि उनको 4-5 साल 10 साल 15 साल से होती है और उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि 2 दिन में ठीक होना है।
0: जी,
1: जो किसी भी पैथी के लिए पॉसिबल ही नहीं है परफेक्टली ठीक करना। प्लस होम्योपैथी में एक एड ऑन ये है कि उस चीज का आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि पूरी की पूरी मेडिसिन एक भी केमिकल से नहीं बनती है हमारी।
0: अच्छा जी।
1: पूरे नेचुरल सोर्सेस है होम्योपैथी के, उसी से बनती है और वो आपको पूरी तरह से ठीक करा देती है। तो ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में कुछ एक्यूट रेमेडीज भी है जो आपको एक्यूट जो आपके इलनेस है, डिसीज है, उसको भी ठीक करती है। 1 दिन में 2 घंटे में भी ठीक करती है, 2-3 दिन में भी ठीक करती है। और क्रॉनिक जो डिसीजेस है उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। जैसे कुछ डिसीजेस है सोराइसिस, जैसे स्किन का डिसीज है, उसमें बहुत सारे, हाँ जी, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है तो फिर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, हार्ट तक भी पहुंच सकता है वो। तो एलोपैथी में उसके लिए कुछ परमानेंट ऐसा इलाज तो है नहीं स्टीरॉयड को छोड़कर। लेकिन होम्योपैथी में मुझे गर्व है बताने में कि इस बात का प्रॉपर तरीके से इलाज है होम्योपैथी के अंदर।
0: मतलब पेशेंस रखनी चाहिए और डॉक्टर पे पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए। तो हम
1: ट्रस्ट करना चाहिए, होम्योपैथी ट्रस्ट का ही एक पार्ट है। जितना आप ट्रस्ट करोगे, जितना आप डॉक्टर को ट्रस्ट करके जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताओगे, उतना ज्यादा आपको इजी मेडिसिन देने के लिए आपके डॉक्टर को होगा।
0: नहीं, यहाँ पर मेरी एक और जिज्ञासा है। आजकल ओबेसिटी को भी बहुत बड़ा रोग माना जाता है ना
1: जी।
0: तो एलोपैथी में अगेन अगर हम आए तो इसके कई डॉक्टर्स, या कह दीजिए कि इंडियंस को बहुत आदत होती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत लेते हैं, हम खुद ही अपना इलाज करते रहते हैं गूगल पर पढ़ के। तो ओबेसिटी के लिए भी लोग बहुत कुछ करते हैं आजकल, तो इवन ओजेम्पिक तक ले लेते हैं, जिसे सुना गया
1: जी
0: है कि हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत
1: जी
0: जबरदस्त होते हैं। तो ऐसे
1: लोग
0: लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे होम्योपैथी के कंसर्न में?
1: देखिए, पहले तो होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, मैं तो गूगल डॉक्टर को मत रेफर करो ये बोल के बोलूंगा,
0: जी
1: क्योंकि गूगल आपको वही रिजल्ट दे देगा जो उसको फीड कराया गया है। गूगल
0: जी
1: एक एआई है जो आपको 10-15 जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कुछ ना कुछ उसके ऊपर डेटा साइंस का रूल्स इंजिन लगाया होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन लेगा। बट मेडिकल साइंस के हिसाब से हर पेशेंट अलग है, हर ताले की चाबी अलग है, जिसका ज्ञान आपके डॉक्टर को ही है। तो
0: जी
1: बिना डॉक्टर के जानकारी के वो मेडिसिन प्लीज मत ले लीजिए,
0: जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: डॉक्टर के लिए एक बीमारी का निदान करना, मतलब डायग्नोस करना, उसका रूट कॉज एनालिसिस करना, वो बातें इंपॉर्टेंट होती है, ना कि उस सिम्टम को रोकना।
0: जी
1: आप जैसे
0: बिल्कुल
1: सिम्टम को रोकना, पेशेंट का क्या है कि मुझे सर्दी हो गई है, नाक बह रही है, उसको बंद कर दो। तो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से नाक को सर्दी बहने को रोकना ये बीमारी है, सर्दी बहना ये बीमारी नहीं है। अभी टॉपिक निकला है तो बताना चाहता हूँ, जैसे आपके घर में कॉकरोच घुसता है तो आप क्या करते हो, उसे मारते हो, मारने के बाद भी उसको बाहर फेंकते हो, तो कोई भी चीज जो बुरी है उसको बाहर निकाल के फेंकना ये स्वाभाविक है,
0: जी
1: जो हमारी बॉडी भी वही करती है, जो हमारा वाइटल फोर्स है बॉडी के अंदर
0: जी
1: वो भी
0: जी
1: वही करता है, जो कुछ डस्ट पार्टिकल पोलन ग्रेन्स वगैरह बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं
0: जी
1: वो चिपक जाते हैं, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक अंदर से गीला होता है तो वो बाहर इजीली नहीं निकल पाता। तो बॉडी क्या करती है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करती है अंदर से अपने आप, और उसमें वो पूरे डस्ट पार्टिकल एलर्जेंस पोलन ग्रेन जो कुछ रहेगा उसको बाहर फेंकने की काम करती है, इसलिए आपकी नाक बहती है। और आप
0: जी
1: क्या करते हो, स्टीरॉयड लेके उसको रोक कर देते हो अंदर, मतलब कॉकरोच तो आपने मार दिया बट वो बॉडी में ही है आपके, आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो
0: जी
1: नाक सिंपल सी बात है जो हर किसी की लाइफ में आती है 2 या 4 महीने में, सर्दी, सर्दी को रोकना उसका इलाज नहीं है, सर्दी को बहने देना, वो चीजें जो खराब है जो बॉडी के बाहर आनी चाहिए उसको बाहर निकलने देना, ये
0: जी
1: उसका तरीका है इलाज का, और
0: जी
1: इसी तरीके से होम्योपैथी इलाज करती है।
0: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है हमारे श्रोताओं के लिए। तो हमारा भी श्रोताओं से अनुरोध रहेगा कि डॉक्टर गूगल के बहकावे में ना आए, और अगर आपको कभी भी कोई मेडिकली प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर एक डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, ना ना कि ओवर द काउंटर अपने आप ही दवाइयां खरीद के अपना खुद का ही इलाज करें। ये बात बहुत गलत रहती है, और एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली हमें हार्म करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। तो इसी के साथ हम डॉक्टर चैतन्य का एक गीत और लेते हैं।

मेरा अगला प्रश्न रहेगा डॉक्टर साहब कि आज आप इंडस एंड जनरल इंश्योरेंस में क्लेम्स ऑडिट और लीगल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर की संवेदनशीलता और एक कॉरपोरेट लीडर की निर्णय क्षमता, क्या आपको लगता है कि आपकी मेडिकल पढ़ाई आज

मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा न कोई दूजा। और जिस मत में सत्यम शिवम सुंदरम बसते हैं वो मंदिर ही हो सकता है। और हम इस सावन में

0: नहीं है, होम्योपैथी में कुछ एक्यूट रेमेडीज भी है जो आपको एक्यूट जो आपके इलनेस है, डिसीज है, उसको भी ठीक करती है, एक दिन में, 2 घंटे में भी ठीक करती है, 2-3 दिन में भी ठीक करती है, और क्रॉनिक जो डिसीजेस है उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। जैसे कुछ डिसीजेस है सोरायसिस, जैसे स्किन का डिसीज है, उसमें बहुत सारे, हाँ जी, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो फिर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, हार्ट तक भी पहुंच सकता है वो। तो एलोपैथी में उसके लिए कुछ परमानेंट ऐसा इलाज तो है नहीं, स्टीरॉयड को छोड़कर। लेकिन होम्योपैथी में मुझे गर्व है बताने में कि इस बात का प्रॉपर तरीके से इलाज है होम्योपैथी के अंदर।
1: मतलब पेशेंस रखनी चाहिए और डॉक्टर पे पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए, तो हम
0: ट्रस्ट करना चाहिए। होम्योपैथी ट्रस्ट का ही एक पार्ट है, जितना आप ट्रस्ट करोगे, जितना आप डॉक्टर को ट्रस्ट करके जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताओगे, उतना ज्यादा आपको इजी मेडिसिन देने के लिए आपके डॉक्टर को होगा।
1: नहीं, यहाँ पर मेरी एक और जिज्ञासा है, आजकल ओबेसिटी को भी बहुत बड़ा रोग माना जाता है ना,
0: जी,
1: तो एलोपैथी में अगेन अगर हम आए तो इसके कई डॉक्टर्स, या कह दीजिए कि इंडियंस को बहुत आदत होती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत लेते हैं, हम खुद ही अपना इलाज करते रहते हैं गूगल पर पढ़ के, तो ओबेसिटी के लिए भी लोग बहुत कुछ करते हैं आजकल, तो इवन ओजेम्पिक तक ले लेते हैं, जिसे सुना गया है कि हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत जबरदस्त होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे होम्योपैथी के कंसर्न में?
0: देखिए, पहले तो होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, मैं तो गूगल डॉक्टर को मत रेफर करो ये बोल के बोलूंगा, क्योंकि गूगल आपको वही रिजल्ट दे देगा जो उसको फीड कराया गया है। गूगल एक AI है जो आपको 10-15 जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कुछ ना कुछ उसके ऊपर डेटा साइंस का रूल्स इंजिन लगाया होता है, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन लेगा। बट मेडिकल साइंस के हिसाब से हर पेशेंट अलग है, हर ताले की चाबी अलग है, जिसका ज्ञान आपके डॉक्टर को ही है, तो बिना डॉक्टर के जानकारी के वो मेडिसिन प्लीज मत ले लीजिए, क्योंकि डॉक्टर के लिए एक बीमारी का निदान करना, मतलब डायग्नोस करना, उसका रूट कॉज एनालिसिस करना, वो बातें इंपॉर्टेंट होती है, ना कि उस सिम्टम को रोकना।
1: जी,
0: आप जैसे सिम्टम को रोकना, पेशेंट का क्या है कि मुझे सर्दी हो गई है, नाक बह रही है, उसको बंद कर दो, तो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से नाक को, सर्दी बहने को रोकना ये बीमारी है, सर्दी बहना ये बीमारी नहीं है। अभी टॉपिक निकला है तो बताना चाहता हूँ, जैसे आपके घर में कॉकरोच घुसता है तो आप क्या करते हो, उसे मारते हो, मारने के बाद भी उसको बाहर फेंकते हो, तो कोई भी चीज जो बुरी है उसको बाहर निकाल के फेंकना ये स्वाभाविक है
1: जी।
0: जो हमारी बॉडी भी वही करती है, जो हमारा वाइटल फोर्स है बॉडी के अंदर वो भी वही करता है, जो कुछ डस्ट पार्टिकल पोलन ग्रेन्स वगैरह बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं वो चिपक जाते हैं, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक अंदर से गीला होता है, तो वो बाहर इजीली नहीं निकल पाता, तो बॉडी क्या करती है, म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करती है अंदर से अपने आप, और उसमें वो पूरे डस्ट पार्टिकल एलर्जेंस पोलन ग्रेन जो कुछ रहेगा उसको बाहर फेंकने की काम करती है, इसलिए आपकी नाक बहती है। और आप क्या करते हो, स्टीरॉयड लेके उसको रोक कर देते हो अंदर, मतलब कॉकरोच तो आपने मार दिया बट वो बॉडी में ही है आपके, आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही
1: जी।
0: तो नाक, सिंपल सी बात है जो हर किसी की लाइफ में आती है 2 या 4 महीने में, सर्दी, सर्दी को रोकना उसका इलाज नहीं है, सर्दी को बहने देना, वो चीजें जो खराब है जो बॉडी के बाहर आनी चाहिए उसको बाहर निकलने देना, ये उसका तरीका है इलाज का
1: जी।
0: और इसी तरीके से होम्योपैथी इलाज कर दिया।
1: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है हमारे श्रोताओं के लिए, तो हमारा भी श्रोताओं से अनुरोध रहेगा कि डॉक्टर गूगल के बहकावे में ना आए, और अगर आपको कभी भी कोई मेडिकली प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर एक डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, ना कि ओवर द काउंटर अपने आप ही दवाइयां खरीद के अपना खुद का ही इलाज करें, ये बात बहुत गलत रहती है और एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली ये हमें हार्म करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। तो इसी के साथ हम डॉक्टर चैतन्य का एक गीत और लेते हैं।

0: मेरा अगला प्रश्न रहेगा डॉक्टर साहब कि आज आप इंडस इंड जनरल इंश्योरेंस में क्लेम्स ऑडिट और लीगल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर की संवेदनशीलता और एक कॉरपोरेट लीडर की निर्णय क्षमता, क्या आपको लगता है कि आपकी मेडिकल पढ़ाई आज भी आपके काम में किसी ना किसी रूप में मदद करती है?
1: जी सपना जी, जरूर मेडिकल, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में क्लेम को समझना, पेशेंट की बीमारी को समझना, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिला है नहीं मिला है वो चेक करना, कुछ बिल बढ़ाने के लिए भी होता है इंडिया में। इंडियन माइंडसेट ऐसा है, जिसके पास इंश्योरेंस है उसका थोड़ा समय बिल लगाऊंगा, कहां पेशेंट को भी पैसे देने हैं कंपनी दे देगी, तो एग्जेजरेशन ऑफ बिलिंग होता है वहां पे।
0: ये बात जो आपने कही है ना डॉक्टर साहब, ये मुझे लगता है कितने ही भारतीय होंगे वो उन लोगों ने खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा। किसी अगर जैसे मैं आपको अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, तकरीबन 2 साल पहले मुझे मेरी माता जी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। वो बेहोश हो गई थी तो उनको थोड़ा हार्ट ट्रबल डिटेक्ट हुआ था, लेकिन वहां पर जाकर जो डॉक्टर्स ने मतलब कहा मुझे, उन्होंने मुझे कहा कि खून की बॉटल भी चढ़ गई है, पर देर वॉज नो मेंशन, उसका कोई उनकी मेडिकल रिपोर्ट में मेंशन भी नहीं था। फिर उनको इस तरह के टेस्ट करवाए गए जो कि लिंक्ड ही नहीं थे उनकी कंडीशन के साथ। तो मैं अल्टीमेटली परेशान होकर मैंने अपनी माता जी को वहां से डिस्चार्ज करवा लिया अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, घर लेकर आई और वाकई घर में 2-3 दिन के बाद ही उनकी सेहत बहुत सुधर गई। तो ये मुझे लगता है कि जहाँ पे इंश्योरेंस के क्लेम्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस के अंडर हम एडमिट करवाते हैं पेशेंट्स को, वहां पे हॉस्पिटल्स की भी बहुत ज्यादती होती है।
1: जी वो तो होगा ही, क्योंकि अभी प्रीवियसली क्या होता था, क्योंकि डॉक्टर के हॉस्पिटल्स होते थे, आज कंपनीज के हॉस्पिटल है।
0: अच्छा,
1: हर डॉक्टर को कंपनी की तरफ से एक टारगेट होता है कि आपकी तरफ से इतना बिजनेस आना ही चाहिए, हम इतने लाखों करोड़ों रुपए की लैब खोल के बैठे हैं, आपकी तरफ से इतना रोज इन्वेस्टिगेशन रेफर होना ही, इतने रुपए का मेडिसिन आपने लिखना है, हमें फार्मेसी डिपार्टमेंट चलाना है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट चलाना है, सैनिटरी डिपार्टमेंट चलाना है। तो अब नॉर्मल फीवर का पेशेंट है उसको ग्लोव्स पहनने की क्या जरूरत है, कैप मास्क, वो भी बिल में लिखा जाता है। तो वो सब चीजें हमें हेल्थ इंश्योरेंस में एनालाइज करनी पड़ती है, भले ही पैसे पेशेंट के जेब से नहीं जा रहे बट उसके सम इंश्योर्ड से तो जा रहे। जब वो फीवर के लिए अगर 1-2 लाख रुपए डाल रहा है, तो जब वाकई में उसको जब कभी बड़ी बीमारी होगी और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो उसका ही सम इंश्योर्ड कम हो रहा है, उसको ही आगे पैसे नहीं मिलेंगे। तो हमें पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए मेडिकल नॉलेज जिसे है वही ये सब बातें जान सकता है कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड है कौन सा नहीं है, कहाँ पे बिल इन्फ्लेशन है कहाँ पे नहीं है। तो मेडिकल की पढ़ाई तो रोज यूज होती है, हर क्लेम में यूज होती है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम आपका एक गीत और लेते हैं।

0: हम आपके संगीत के सफर की तरफ चलते हैं। आपने तबला सीखने की कोशिश की लेकिन ये सफर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन फिर भी आपने हर जगह स्कूल की बेंच हो, बैग हो, ताल ढूंढ ही ली। तो क्या संगीत आपके लिए कभी सीखा हुआ विषय रहा है या हमेशा से आपके भीतर स्वाभाविक रूप से ही बहता रहा है?
1: ये कोशिश तो मैंने बहुत की सपना जी संगीत सीखने की, हर बार कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रही, हर बार कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता रहा और मुझे क्लासेस छोड़नी पड़ी। गाने की भी मैंने क्लास लगाई थी जहाँ पे खेलना ज्यादा अच्छा लगता था बचपन में, तो गाने की क्लास शाम को रहती थी, मुझे खेलने के लिए जाना पड़ता था तो वो क्लास आगे नहीं पढ़ पाई। फिर मैंने तबले की क्लास लगाई क्योंकि सब दोस्तों ने लगाई थी, तो होता है ना मेरे दोस्त जा रहे तो मैं भी जाऊंगा, तो मैं तबले के लिए गया तो मेरे हाथ में स्वेटिंग बहुत होती थी उस टाइम पे।
0: अच्छा।
1: तो मेरे गुरुजी ने उस टाइम पे एडवाइस किया तुम तबला मत सीखो भी जिंदगी में कभी भी, क्योंकि जिसके हाथ में स्वेटिंग है वो तबला नहीं सीख पाएगा कभी भी। तो तुम तबला छोड़ो, दूसरा कुछ सीख लो इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे तबला भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर जिम्मेदारी आने लगी, थोड़ा सा पैसे का भी प्रॉब्लम था फैमिली में, तो फीस ज्यादा बढ़ गई थी तो वो नहीं कर पाया। जब यहाँ पे ऐसे लोम्बार्ड में पहले मैं ज्वाइनिंग किया था तो वहां पे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो सोचा सैटरडे संडे में गाने के क्लासेस लगा दूं। गाने के क्लासेस 6 महीना किए मैंने, मेरे अलंकार सीख कर हो गए, कंप्लीट हो गए। जैसे राग स्टार्ट हुए मेरी ट्रांसफर हो गई कैशलेस टीम में, जो कि टीम होती है 24/7 काम करती है
0: जी।
1: तो बोल नहीं सकते सैटरडे संडे छुट्टी होगी नहीं हुई, तो अलंकार करके मुझे वो छोड़ना पड़ा था काम। हाँ, बट तबला छोड़ने के बाद वो ताल जो होता है वो नहीं गया कभी जहन से, तो बैठे

0: बैठे, कभी बोर हो रहा था तो बेंच वगैरह बजाना स्टार्ट किया था कॉलेज में, स्कूल में। तो वो लोगों को, बाजू में बैठे वाले लोगों को थोड़ा अच्छा लगने लगा, फिर थोड़ा जोर से बजाओ हम लोग भी सुनते हैं। तो फिर दो हो गए, दो के चार, आठ, दस, ऐसे लोग बढ़ते गए सुनने वाले। तू गाता भी है साथ में, बेंच भी बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है। तो फरमाइश आने लगी कि ये गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ। तो जब ऑफ पीरियड वगैरह होता था तो एक छोटा मिनी ऑर्केस्ट्रा के जैसा होता था, मेरे आजू बाजू में लोग बैठे होते थे। हम दो तीन दोस्त, एक प्रशांत बोलकर एक मेरा दोस्त था, वो भी बहुत अच्छा बेंच बजाता था, ओंकार बोल के था, वो फ्लूट बजाता था। तो हम ये कॉलेज में ऑफ पीरियड में चुपके से करते थे, कैंटीन में भी करते थे। कैंटीन में तो खैर कर सकते थे बांसुरी वगैरह बजाना।
1: वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है आपका जो ये छोटा सा ग्रुप था ये कॉलेज में तो खैर काफी पॉपुलर रहता होगा।
0: जी बहुत बहुत
1: जी, तो जितने भी हमारे महान कलाकार रहे हैं, जैसे कि आशा भोसले जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब या एस पी बाला सुब्रमण्यम जी, तो आप इनमें से किस कलाकार की आवाज और गायकी से प्रभावित हैं ज्यादा?
0: अभी अपने नाम एसपी जी का ले लिया है, तो एसपी जी मेरे लिए सिर्फ गायक नहीं है, भगवान है, भगवान की तरह। मतलब मैं, मुझे उनको कभी मिलने का मौका नहीं मिला, पर फिर भी आप द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा तो जानते हो, बस कुछ वैसा ही रिश्ता रहा मेरा उनके साथ में। उनके गाने सीख के, और उनके गाने से मैं विशेष रूप से प्रभावित क्यों हुआ, क्योंकि उनके गाने सुनने के बाद मुझे पता चला कि गाना सिर्फ गाना नहीं होता है, गाना एक्सप्रेस भी करना होता है। जैसे आप कुछ हैप्पीली गा रहे हो तो सुनने वाले को गाना सुन के समझना चाहिए अरे आप बहुत हैप्पी हो। जैसे आप शराब पी के गाना गा रहे हो तो सुनने वाले को आप बिना शराब पिए गा रहे हो, बट सामने वाले को सुन के लगना चाहिए अरे आप ये शायद बहुत पी के गाना गा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: वो रो रहा है तो शायद ये अरे दिल से रो रहा है। वो जो एक्सप्रेशन है एसपी जी की आवाज में, अब आप फिल्म सागर का गाना सुन लो, सच मेरे यार है,
1: अरे ये तो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है,
0: मेरा भी बहुत फेवरेट है। मतलब वो गाना सुनोगे तो पता नहीं क्यों आपकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट होता है आज भी।
1: जी, अब आपने तो अगर इस गाने की बात की ही है डॉक्टर चैतन्य जी, और आप हमारे स्टूडियो में हमारे रूबरू बैठे भी हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गाने की दो पंक्तियां हमें यहाँ पर सुना दीजिए।
0: जी जरूर। सच मेरे यार है, बाकी बेकार है,

0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब।
1: थैंक
0: तो अगर
1: यू।
0: आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप अपने जो आपके इतने फेवरेट सिंगर हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम जी, कि आप उन उनसे मिल सकें और उनके साथ बैठ के कोई एक सवाल पूछ सकें, तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे?
1: सर आप इतना जल्दी क्यों चले गए? एक बार तो मिलना था आपसे। बस कुछ नहीं, आपके पैरों को छूना था, आपके पैर पे माथा रखना था। आप इतना जल्दी क्यों चले गए? यही सवाल पूछूंगा मैं उनसे।
0: जी, बहुत इमोशनल सा माहौल हो गया है और यहाँ पर हम चैतन्य जी का एक प्यारा सा गीत लेते हैं।

0: चैतन्य जी, कोई और एसपीबी जी के साथ जुड़ा हुआ वाकया या कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
1: जी जरूर. मैं स्म्यूल एक एप्लीकेशन है जहाँ पे कराओके ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पे जाना स्टार्ट किया. तो वहाँ पे डॉक्टर मीनाक्षी जी है, मीनाक्षी आनंद राम,
0: हाँ जी, मैं
1: वहाँ
0: जानती हूँ उनको. हाँ जी
1: जी वो विशाखापट्टनम से है
0: जी मैं मिली हुई हूँ उनसे.
1: जी, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है. तो वो काफी करीब रही है एसपीजी की. तो
0: जी बिल्कुल रही हैं वो. हाँ
1: एसपीजी ने एक लास्ट वीडियो उनका हॉस्पिटल से दिया था लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए, कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, आपकी लाइफ में आप खुश रहो, इस कुछ मैसेज का वो वीडियो था. वो वीडियो मुझे मीनाक्षी जी ने भेजा था और वो वीडियो देख के मुझे सच में आंखों में आंसू आ गए थे. मतलब वो भी काफी भावुक हो गए थे एसपीजी उस टाइम पर. कोविड का वो दौर था.
0: जी, कोविड का वो दौर था. मुझे एक्चुअली इस किस्से के बारे में पता है क्योंकि मुझसे मीनाक्षी जी ने भी, जब मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था. और मीनाक्षी जी खुद भी बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं, और
1: बहुत
0: जितनी
1: बहुत
0: कठिनाइयों से वो निकली हैं और उसके बावजूद वो चेहरे पे जैसे मुस्कुराहट रखती हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया

0: बोलिए कि अभी इतना रात में मैं कहाँ आऊंगा, क्या करूंगा। मैं भागता हूँ, भाग जाता हूँ अभी भी। कोई भी मुझे एक कॉल करके कुछ भी मदद मांगता है, मैं आज भी भाग जाता हूँ। किसी की शादी हो, कुछ दुख भरा माहौल हो, या फिर और कुछ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि कभी किसी की शादी या वास्तु शांति में मत जाओ, बट किसी का क्रीमेशन में जरूर जाओ, क्योंकि वो एक दौर होता है जहाँ पे भावनात्मक रूप से इंसान को एक सपोर्ट की जरूरत होती है। वहां पे बस उस इंसान के साथ में रहो, जो हो सके वो हेल्प करो। तो मैं आज भी, मुझे कोई भी इंसान, मतलब जान पहचान का नहीं है, और फिर बात मुझे कॉल करके पूछता है कि कुछ हेल्प के लिए, तो मैं ना नहीं, मुझसे बोला जाता है। शायद ये मेरा एक ड्रॉबैक है या पिताजी की सीख है, पता नहीं, बट यही मैसेज मैं मेरी बेटियों को भी कन्वे करना चाहूंगा।
1: जी, इसे ड्रॉबैक नहीं कहते, बल्कि हम कहेंगे कि ये आपकी शख्सियत का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, जो कि मैं तो यही कहूंगी कि हर किसी को ये बात सीखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं, हर सफल इंसान के पीछे एक औरत खड़ी होती है, तो मैं
0: जी
1: चाहूंगी कि इस वक्त जब आपका ये प्रोग्राम सारी दुनिया सुन रही है, और निसंदेह आपका परिवार भी सुन रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आप अपनी पत्नी के लिए दो शब्द बोलना चाहेंगे?
0: मेरी जिंदगी में दो औरतें हैं, सबके
1: जी
0: पीछे एक होती होगी, मेरी जिंदगी में दो है।
1: जी
0: पहली है मेरी माता जी और दूसरी मेरी पत्नी। माता जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी सीख उन्होंने सिखाई। शायद उन्हें याद नहीं होगा, बट छोटी मोटी बातों में उन्होंने उनसे मैं कुछ सीखता रहा सीखता रहा। या फिर कुछ बड़े फैसले हो तो उन्होंने मुझे कभी रोका टोका नहीं है, माता जी ने, कि ये मत करो, वो मत करो, तुमको सही लगता है ना, तुम वो चीज संभालने के लिए सक्षम हो ना, तो करो। उन्होंने रोका नहीं, मुझे गाइडेंस किया है।
1: जी
0: और पत्नी का तो हर चीज में सपोर्ट रहता है, उसने मुझे कभी, हाँ, उसको पर्सनली मेरा ये गाना गाना, इवेंट और इवेंट्स में जाना, लोगों से मिलना, वो इतना खास पसंद नहीं है, बट वो मुझे रोकती नहीं है कभी। ठीक है, तुमको करना है तो करो, बट मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो बोल के, क्योंकि अभी सर्विस करने में सैटरडे संडे टाइम होता है, तो शी इज वेटिंग अभी कि मुझे टाइम देंगे इस सैटरडे संडे, और मैं कहीं स्टूडियो इवेंट में या फिर दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, तो थोड़ा सा नाराज हो जाती है,
1: जी,
0: बट शी इज नाइस, एक सपोर्ट तो
1: बहुत
0: करती है।
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से आपके साथ रहेंगी कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, और यूं ही आपस में प्यार आप लोगों का बना रहे।

0: तो अंत में मैं आपसे जो सवाल करना चाहती हूँ वो शायद आपकी पूरी जीवन यात्रा का सार हो जाए कि डॉक्टर से कॉरपोरेट प्रोफेशनल और फिर भी दिल से संगीत के दीवाने चैतन्य। तो अगर आज आप अपने बचपन वाले चैतन्य से मिलेंगे तो उनसे क्या कहेंगे?
1: उनसे कुछ मैं कहूंगा कि जब बुरा दौर था जिंदगी का, पैसों की कमी थी, पैसों की कमी की वजह से कुछ सपने पूरे नहीं हो पाए, खैर वो भी तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, अब जब सब कुछ भगवान की दया से ठीक चल रहा है तो अभी इस चीज को एंजॉय करो
0: जी,
1: मत सोचो कि इसके पहले तुमने क्या किया और अब क्या कर रहे हो, जो तुम्हारे सामने लाइफ आई है उसको एंजॉय करो।
0: बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में

नमस्कार, मैं पूजा सरमलकर आपके सामने पेश कर रही हूँ मोरिनी बागामा बोले आधी रात मा सॉन्ग फ्रॉम लम्हे।

आप सुन रहे थे मुंबई म्यूजिक ग्रुप द्वारा प्रस्तुत, म्यूजिक ग्रुप के सिंगर्स द्वारा प्रस्तुत ये प्रोग्राम डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का। ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: थैंक यू।
1: गीता गोथी वाला को आपने सुना, आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप।

0: थैंक यू।
1: मुकेश कल्ला को सुन रहे थे आप। इंतहा हो गई

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के

मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। और गीत गाने की मंजिल है आपकी, प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। और इस मंजिल पर हमारे साथ आपको ले जाने वाली आवाज अर्चू रानू और मैं आरजे भूमिका आपके साथ। और हम दोनों के साथ आ गए हैं भूपेंद्र 1973, अर्चू रानू 16 का साथ देने इस प्रेरणापद गीत में, खुशबू देते गीत में और महकती आवाज के साथ।

चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। अर्ची और भूपेंद्र के इस गीत के बाद प्रीत को बनाए रखने वाले वादे के साथ हिदायत नजर ना चुराने की। इस गीत में डॉक्टर हरप्रीत सिंह हैरी आ गए हैं अर्चू रानू का साथ देने।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ है इस नए वर्ष में अपना नया अंदाज लिए अर्चु रानू 16। अपने गीत में कह तो रही हैं वीजी विनोद गुप्ता के साथ, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो।

वीजी विनोद गुप्ता और अर्जुन रानू कह रहे थे, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना क्या सुनना है, समय का ये पल थम सा गया है। थमे हुए इस पल को संजो के रखते हैं और आइए सुनते हैं धनंजय और अर्जुन रानू को दिल की बात कहते हुए।

दिल है कि मानता नहीं, और आप हैं तो शिकवे भी हैं, शिकायत भी है, आपकी नजदीकी भी है और मनाने के अंदाज भी। एक बार फिर धनंजय अर्चुरानू के संग इस प्यारे से गीत में।

0: धनंजय और अर्जुन रानू के इस सुरीले सॉन्ग के बाद स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में।
1: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में अनुराग। मुंबई से अनुराग हमारे साथ होते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, और अपना गीत लेके आपके लिए आ गए हैं। कई बार प्यास शब्दों से बयां नहीं की जाती, लेकिन गीत चीज ही ऐसी है कि हम बता सकते हैं। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, कह रहे हैं इस गीत में अनुराग। आइए सुनते हैं।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया है उस ऊपर वाले ने मेरे लिए, शायद यही कहने के लिए आ रहे हैं जयपुर रेडियो को अनुराग। आपकी आवाज, आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के मेल सिंगर।

सुना आपने अनुराग को और ख्याल आया तो ख्वाब भी आया और देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं प्रोग्राम में आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में अपनी आवाज में अनुराग। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। और हमारे श्रोताओं से हमारे फासले नहीं, नजदीकियां होती हैं और दूरियां, और दूरियां हमारे जो सिंगर्स हैं वो मिटा देते हैं। अनुराग की आवाज आपने सुनी प्रोग्राम में, आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, सुनते हैं।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया है उस ऊपर वाले ने मेरे लिए, शायद यही कहने के लिए आ रहे हैं जयपुर रेडियो को अनुराग। आपकी आवाज, आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के मेल सिंगर।

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आरजे अप्रीत द्वारा प्रस्तुत ये खास प्रोग्राम

आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। ये आजादी हमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से मिली है। आज हम उन्हें दिल से नमन करते हैं। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आप सुन रहे हैं आरजी प्रीत को। लेकर के आई हूँ कुछ चुनिंदा सिंगर्स जो अपनी आवाज सिर्फ मनोरंजन के माध्यम के लिए नहीं

से जयपुर रेडियो की ओर से मैं डॉक्टर कंकना आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कहीं पढ़ा था मैंने, आज आपको सुनाना चाहती हूँ दो पंक्तियाँ। आन है हम, शान है हम, इस मिट्टी की पहचान है हम, झुकने न देंगे इस तिरंगे को कभी, क्योंकि हिंदुस्तान की जान है। और भी पढ़ा था मैंने, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिलों में जाए। हम सबको अपने भारतीय होने पर इतना गर्व है ना, आइए आज हम प्रण लेते हैं भारत की गरिमा को कहीं झुकने नहीं देंगे और हमेशा इस भारत की शान

0: जय हिंद, जय भारत।
1: नमस्कार, मैं मंजू सिन्हा हैदराबाद से आरजे प्रीति के साथ इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में

0: जय हिंद।
1: मैं श्याम बिहारी शर्मा कोलकाता वेस्ट बंगाल से 15 अगस्त पावन पर्व के उपलक्ष के ऊपर जयपुर रेडियो और हम सभी संगीत प्रेमियों की ओर से भारत के शहीदों को बारंबार नमन है।

मैं पंकज कुमार चतुर्वेदी रांची से आप सबों का स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 15 अगस्त 1947 को हमने स्वाधीनता हासिल की, इसके लिए शहीदों को नमन।

जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। मैं हूँ जयश्री फोम पूना से।

मैं हीना मेहता अहमदाबाद गुजरात से हूँ और जयपुर रेडियो टीम और रेडियो लिसनर को मेषा तंत्र दिन की बधाई देती हूँ।

मैं शुभ्रा भट्टाचार्य आमेर जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं सभी देशवासियों को और श्रोताओं को जयपुर रेडियो की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आप सुन रहे हैं आज पीक को। दोस्तों, आज हमने गीतों और सुरों के माध्यम से अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान को महसूस किया। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और गर्व की बात क्या होगी कि हम अपने सुरों को अपनी मातृभूमि के नाम कर सके। इसी देशभक्ति और गर्व के साथ आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन याद रखिए, कार्यक्रम खत्म हो सकता है, देश के लिए हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। आज जो चुनिंदा सिंगरों ने हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए हैं, उनके नाम लेना चाहूंगी।

कनकना जी, आप सभी सिंगर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस तरीके के प्रोग्राम्स लाते रहेंगे, लेकिन जाते जाते ये जरूर कहेंगे, आइए तिरंगे की शान हमेशा ऊंची रखिए। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में, दो दिल और एक स्वर। एक सुर कहें या एक स्वर कहें, नीता जी सच में बहुत ही खूबसूरत गीत को आपने, और बहुत ही हार्ड गीत था ये जिसको आपने अपनी आवाज दी। अगली पायदान में कहां ले जाने वाली हैं आप?
1: बस अभी हम प्रोग्राम का एंड तक आ चुके हैं, तो मैं जो अभी गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है, अभी सब हो गया, गुस्सा रुतना मनाना प्यार वगैरह तो सब हो गया, तो फिर एंड में तो प्यार का एहसास ही मायने रखता है। तो ये बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, ये एक सिर्फ गाना नहीं है बल्कि प्यार का एक खूबसूरत एहसास है। और ये गाना हमें उस दौर में ले जाता है जहां मोहब्बत में सादगी और गहरापन हुआ करता था, और ये मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि ये गाना आपकी रूह तक जरूर पहुंचेगा। तो ये आज सुनते हैं हमारा आखिरी नगमा, तो प्रस्तुत है बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम।
0: आवाज दे रही है इस गीत को हमारी आज की सिंगर मेहमान नीता पारिक, बड़ोदरा गुजरात से।

दिल की कहानी पहुंची जुबां पर, किसको खबर हम पहुंचे कहां तक। और हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां हमें इस प्रोग्राम को विराम देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम कहना चाहेंगे हमारे उन सभी श्रोताओं को धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम को सुन रहे थे, सराह रहे थे और बीच बीच में आपके फीडबैक हमें प्राप्त हो रहे थे। तो आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। और चलते चलते हमारी जयपुर रेडियो की सिंगर नीता परिक से, जो बड़ोदरा गुजरात से हैं, कहेंगे आभार

0: एहसान तेरा होगा मुझ पर। और ये एहसान जयपुर रेडियो पर अपने गीतों के माध्यम से कर रहे हैं मिलिंद पंडिता, शिकागो यूएसए से आपकी आवाज़ आपकी पहचान का ये मंच। और लेके आए हैं शमी कपूर साहब के सुरीले नगमे, जिन फिल्मों में शमी कपूर साहब ने गीत गाए हैं, अदाकारी की है ऑन स्क्रीन, उन्हीं गीतों को हम पहुंचा रहे हैं आप तक।
1: तुम और ये समा क्या नशा

न बोलिए, सब सुना सुना सा है। और मिलिंद पंडिता को भी आप सुनते हैं जयपुर रेडियो पर किसी खास प्रोग्राम में। आज आप सुन रहे हैं शमी कपूर साहब के

आपने सुना मिलिंद पंडित को शिकागो यूएसए से। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

और ये दीवानगी है मिलिंद पंडिता की शमी कपूर साहब के गीतों पर, और वो दीवानगी आपको पसंद आ ही रही होगी। आइए सुनते हैं इसी दीवानगी से भरा हुआ मिलिंद पंडिता का ये खूबसूरत गीत। जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, गीतों और सॉन्ग्स के साथ हो गया जो जयपुर रेडियो वर्ल्ड का। और आज हमारे सुरीले मेहमान मिलिंद पंडिता शिकागो यूएसए से हो गए हैं हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ अपनी सुरीली आवाज को लेके।

मैं गाऊं तुम सुनते जाओ, ये कह रहे हैं शमी कपूर साहब के गीतों को लेके मिलिंद पंडिता, शिकागो यूएसए से हमारे संग इस मंच पर, जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान।

हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। और शमी कपूर साहब के गीत और मिलिंद पंडिता की आवाज़ के साथ हम भी गुनगुनाते हैं, गाते हैं इस मंच पर जिसका नाम है आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और आज शमी कपूर स्पेशल प्रोग्राम लेके आए इस मंच पर मिलिंद पंडिता शिकागो यूएसए से। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो, बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम शिव भक्ति धारा, और इस भक्ति धारा की सुरीली सिंगर हैं अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से। शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय को सुनते हैं इस खास प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

कोटि कोटि दिगंबरा, आप सुन रहे हैं अलका त्रिपाठी को। शिव भक्ति धारा प्रोग्राम में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।

मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा न कोई दूजा। और जिस मत में सत्यम शिवम सुंदरम बसते हैं वो मंदिर ही हो सकता है। और हम इस सावन में

शिव भक्ति धारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अलका उपाध्याय की आवाज में, कोलकाता और वेस्ट बंगाल से हमारे साथ इन प्यारे

ओम नमः शिवाय। अलका उपाध्याय की आवाज भक्ति धारा प्रोग्राम में शिव भजनों के साथ आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका उपाध्याय की आवाज शिव भजनों की पहचान।

कहत अलका उपाध्याय। दुख हरो, दारिद्र हरो, कष्ट हरो, रोग हरो, पीड़ा हरो, दर्द हरो, हे हरो, सबका भला करो, हे भोले, हे शिव शंकर, आपके सिवा

बम बम भोले और उसकी शरण में हम सभी, और ये शरणागत के गीत लेके आई अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से, प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

जब दिल किसी का हाथ थाम ले तो मंजिल से ज्यादा भरोसा उस साथी पर होता है। रास्ते अनजान हो तो भी डर नहीं लगता, क्योंकि साथ किसी अपने का होता है। फिर भी मन का एक कोना मासूमियत से यह पूछ ही बैठता है सवाल, सिर्फ मंजिल का नहीं, उस सफर के साथ निभाने वाले का भी होता है। कहां

और जब दिल किसी के साथ चल ही पड़ता है तो ख्वाब भी जागने लगते हैं, फिर रातें छोटी लगती हैं, इंतजार लंबा हो जाता है, आंखों में नींद कम और उम्मीदें ज्यादा होती हैं। मोहब्बत का वह पहला मौसम जब दिल हर पल किसी खास एहसास में डूबा रहता है और यह सोचता है कि अब भला कैसे नींद आए। आइए सुनते हैं जब भी

प्यार चाहे कितनी भी खामोशी से क्यों न हो, उसकी आहट दुनिया तक पहुंच ही जाती है। फिर निगाहें सवाल पूछती हैं, मुस्कुराहटें इशारा करती हैं, और लोग जानना चाहते हैं कि मुलाकात हुई क्या बात हुई। इस गाने में मेरा साथ देते हुए हैं रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी।

हर कहानी में कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें इंसान अपने दिल के किसी कोने में संभाल कर रखता है। कभी पहली मुलाकात, कभी पहली मुस्कान, कभी वो पल जब लगा था कि शायद यही रिश्ता जिंदगी भर का साथ बन जाएगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ रास्ते साथ चलते हैं और कुछ रास्ते धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। ऐसे में दिल पीछे मुड़कर कुछ सवाल पूछता है। इसमें शिकायत नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस एक उम्मीद है कि जिस मुलाकात ने मेरे दिल में इतनी गहरी जगह बनाई, शायद उसकी कोई हल्की सी परछाई तुम्हारी यादों में भी बाकी हो। सुनिए मेरा साथ देते हुए पंकज जी को रांची से, और ये खूबसूरत नगमा। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे,

क्योंकि हर प्रेम कहानी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां हमें जिंदगी के बड़े सवालों से भी मिला देती हैं। क्यों कुछ लोगों को उनका प्यार मिल जाता है और क्यों कुछ लोगों के दिल इंतजार करते रह जाते हैं। क्यों किसी के हिस्से में खुशियां आती हैं और किसी के हिस्से में सिर्फ यादें। साहिर लुधियानवी का यह गीत किसी एक इंसान की शिकायत नहीं है, यह उन तमाम दिलों की आवाज है जिन्होंने मोहब्बत को महसूस किया लेकिन उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। शायद इसीलिए यह गीत आज भी उतना ही अपना लगता है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा सवाल जरूर आता होगा, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आइए सुनते हैं पंकज चतुर्वेदी की आवाज में।

0: बारिश। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों का मैं प्रेरणा आपकी आज की होस्ट लफ्जों की गुजारिश में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे दीवानेपन की, दीवानगी की, दीवानों की। कोई सर्द मौसम का दीवाना होता है, कोई खुली हवाओं का, किसी को बरखा बहार दीवानी कर देती है और किसी को सावन की घटा। एक बादल की दीवानगी को दिखलाने के लिए मैं स्वागत करूंगी नीरज और रानी अय्यर जी का, जो फिल्म कश्मीर की कली का ये सदाबहार गीत दीवाना हुआ बादल गाएंगे।

भाई वाह, हम तो आपकी आवाज के दीवाने हो गए। आंखें मिलती हैं, इकरार होता है और प्यार की उमंगे अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। उषा जी और ऋषि कुमार जी शायद हमें यही बताने आ रहे हैं इस गीत के साथ, जिसके बोल हैं, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, जिसे 1950 में बनी फिल्म बाबुल के लिए तलत महमूद साहब और शमशाद बेगम जी ने गाया था। आइए सुनते हैं।

0: आहा, किसी ने सच ही कहा है, ओल्ड इज गोल्ड। जब दीवानेपन की बात होती है तब दिल की दीवानगी को कैसे भला नजरअंदाज किया जाए। ये दिल जब किसी के प्यार में पागल होता है तो क्या होता है, शायद बिनीता जी और राहुल वर्मा जी हमसे यही बताने आ रहे हैं। गीत के बोल हैं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: दिल

दोस्तों, क्या आपको जयपुर रेडियो की खासियत पता है? जयपुर रेडियो के माध्यम से हम आप तक ऐसे गीत भी पहुंचाते हैं जो आम तौर से कहीं गाए नहीं जाते, पर बेहद खास होते हैं। ऐसे ही कुछ दिलवाले दीवानों की अनसुनी कहानी सुनाएंगे हैरी जी और मनीषा जी फिल्म सितमगर के इस गीत के साथ।

वाह मजा आ गया। कॉलेज में मस्ती करते हुए, धूम मचाते हुए, दोस्तों में दीवानों के किस्से तो बन ही जाते हैं। आइए बुलाएं रेक्स जी और समीना जी को इस प्यारी सी नोकझोंक के साथ। ये लड़का है दीवाना, है दीवाना।

जरूरी नहीं इश्क में बाहों के सहारे ही मिले, किसी का दीवाना बन के रहना भी मोहब्बत ही होती है जनाब। बुलाना चाहूंगी राजेश पारकर जी, जो मेरे साथ यानी आपकी आज की होस्ट प्रेरणा के साथ ये गीत गाएंगे। तुझमें क्या है दीवाने, आइए सुनते हैं।

0: इस गीत के साथ ही आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है श्रोताओं। सच कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, हम संगीत के दीवानों के लिए भी नहीं। मैं तो दोबारा मिलने का वादा जरूर पूरा करूंगी, पर आप सब भी जयपुर रेडियो सुनते रहने का वादा जरूर निभाइएगा, क्योंकि यही है आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब। अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
2: नमस्कार दोस्तों, जयपुर रेडियो के श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं समृद्धि सियाटल से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दूसरा अंक किस लिए इसलिए प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम हमने जो बनाया है, इसमें हमने कोशिश की है कि हमारे मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं, जो प्रश्न होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्यों, उसके उत्तर हम गीतों के जरिए दे सकें। हमारे गीत ही जवाब देंगे, हमारे गीत ही प्रश्न करेंगे। आशा करती हूँ कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आएगी। अक्सर रिश्तों की शुरुआत छोटी सी शिकायत से होती है, शिकायत भी ऐसी जिसमें नाराजगी कम और अपनापन ज्यादा हो। जैसे यूं मानो कि आपने तो मुझे बुलाया नहीं, पर क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। शुरुआत करते हैं आज की कड़ी की इस प्यारे से नटखट से गाने के साथ।

0: कई बार हम चाहते हुए भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकते या वैसा बिहेव नहीं कर सकते, एटलीस्ट पब्लिक में, जैसा हम सच में करना चाहते हो। यही तो खास बात है पुराने हिंदी गीतों की कि हर सिचुएशन को उसने इतने अच्छे से कैप्चर किया हुआ है कि आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है किसी न किसी प्यारे से गीत में। तो आइए सुनते हैं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, आहा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
1: इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब हंसी मजाक की बातें कब दिल में घर कर जाती हैं पता ही नहीं चलता। जब मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है तो हर वक्त बस एक ही ख्याल रहता है कि हम अपने चाहने वाले के साथ हों, वो कहाँ हैं। और इसी बात पे एक और प्यारा सा गीत प्रश्न से भरा मुझे जो याद आ रहा है वो है

जिसका हमें इंतजार था, या फिर शायद हमें पता ही नहीं था कि हमें इंतजार किसका है। जब ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो दिल में आहट तो होती है और आंखों में चमक उठ जाती है, दिल में झनकार बज जाती है और दिल आपसे कुछ ऐसे बात करता है कि

कई बार सिर्फ हमें किसी साथी के मिल जाने से हमारी तलाश पूरी नहीं होती। कई बार लाइफ या जिंदगी के सवाल और गंभीर होते हैं, केवल प्यार इश्क मोहब्बत तक नहीं रह जाते। कई बार इंसान को समझ नहीं आता है कि उसे आखिर चाहिए क्या है। और ऐसी ही सिचुएशन के लिए, ऐसी ही बात को याद करते हुए एक बहुत ही प्यारा गीत, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी।

आपसे सवाल सिर्फ दुखी होके या उतावला होके नहीं पूछता, कभी कभी खुशी में भी सवाल पूछ बैठता है कि वाह क्या कहना। कई बार जब आप अपने परिवार वालों से घिरे हो, जब अपने प्यार करने वालों से घिरे हो, जब आपका घर पूरा हो, तब दिल खुशी से पूछ बैठता है, ए दिल।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब। अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, जयपुर रेडियो के श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं समृद्धि सियाटल से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दूसरा अंक किस लिए इसलिए प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम हमने जो बनाया है, इसमें हमने कोशिश की है कि हमारे मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं, जो प्रश्न होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्यों, उसके उत्तर हम गीतों के जरिए दे सकें। हमारे गीत ही जवाब देंगे, हमारे गीत ही प्रश्न करेंगे। आशा करती हूँ कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आएगी। अक्सर रिश्तों की शुरुआत छोटी सी शिकायत से होती है, शिकायत भी ऐसी जिसमें नाराजगी कम और अपनापन ज्यादा हो। जैसे यूं मानो कि आपने तो मुझे बुलाया नहीं, पर क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। शुरुआत करते हैं आज की कड़ी की इस प्यारे से नटखट से गाने के साथ। माना जनाब ने पुकारा नहीं,

कई बार हम चाहते हुए भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकते या वैसा बिहेव नहीं कर सकते, एटलीस्ट पब्लिक में, जैसा हम सच में करना चाहते हो। यही तो खास बात है पुराने हिंदी गीतों की कि हर सिचुएशन को उसने इतने अच्छे से कैप्चर किया हुआ है कि आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है किसी ना किसी प्यारे से गीत में। तो आइए सुनते हैं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, आहा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब हंसी मजाक की बातें कब दिल में घर कर जाती हैं पता ही नहीं चलता। जब मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है तो हर वक्त बस एक ही ख्याल रहता है कि हम अपने चाहने वाले के साथ हों, वो कहाँ हैं। और इसी बात पे एक और प्यारा सा गीत प्रश्न से भरा मुझे जो याद आ रहा है वो है

जिसका हमें इंतजार था, या फिर शायद हमें पता ही नहीं था कि हमें इंतजार किसका है। जब ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो दिल में आहट तो होती है और आंखों में चमक उठ जाती है, दिल में झनकार बज जाती है और दिल आपसे कुछ ऐसे बात करता है कि

कई बार सिर्फ हमें किसी साथी के मिल जाने से हमारी तलाश पूरी नहीं होती। कई बार लाइफ या जिंदगी के सवाल और गंभीर होते हैं, केवल प्यार इश्क मोहब्बत तक नहीं रह जाते। कई बार इंसान को समझ नहीं आता है कि उसे आखिर चाहिए क्या है। और ऐसी ही सिचुएशन के लिए, ऐसी ही बात को याद करते हुए एक बहुत ही प्यारा गीत, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी।

से सवाल सिर्फ दुखी होके या उतावला होके नहीं पूछता, कभी कभी खुशी में भी सवाल पूछ बैठता है कि वाह क्या कहना। कई बार जब आप अपने परिवार वालों से घिरे हों, जब अपने प्यार करने वालों से घिरे हो, जब आपका घर पूरा हो, तब दिल खुशी से पूछ बैठता है, ए दिल।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, नई आवाज नई पहचान में आज हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से। शीतल बहुत ही अच्छा गाती हैं, हमने एक गीत सुना है उसी से हम कह रहे हैं, उसी आधार पे कह रहे हैं। और जब हम बात करेंगे शीतल से और आप उनकी शीतल सी वॉइस को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे बाप रे बहुत अच्छा गाती हैं। तो वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। और हमारे संग हमारे साथ अपने परिचय के साथ शीतल वापरे। शीतल क्या कहेंगी हमारे श्रोताओं को अपने परिचय के रूप में?
1: धन्यवाद गाइस और धन्यवाद व्यास हरिशंकर जी, आपने मुझे जयपुर रेडियो प्रोग्राम के लिए पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो पे आज मेरे रेडियो पे प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है। हाँ,
0: और अपने बारे में बताएं कि आप कब से गा रही हैं और क्यों गा रही हैं?
1: मुझे बचपन से ही सिंगिंग का शौक है, मेरी सिंगिंग की शुरुआत ही मेरे भजन से हुई है और उस वक्त पता नहीं चला था कि मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ।
0: अच्छा, और भजन, ये प्रेरणा मुझे में भजन,
1: हाँ, से भजन से हुई।
0: तो कौन सा भजन था, उसके बोल भी हम सुनना
1: चाहेंगे? छोटे बच्चों के लिए बालोपासना, बेलगांव जो शहर है सिटी, उसमें श्री कलावती देवी, उनके भजन मैं गाती थी छोटे बच्चों के लिए बालोपासना। तो मेरी आवाज सुनकर उन्होंने मुझे माइक में ये बालोपासना का जो भजन है वो बोलने का अवसर दिया। तो
0: उसकी दो लाइनें हम सुनना चाहेंगे, कैसा था वो?
1: मराठी में है
0: जी जी।
1: श्री गणपते विघ्न नाशना मंगल मूर्ते मुषक वाहना,
0: क्या बात,
1: मेरे नाशिशी निज ज्ञान देवनी। बस इतना है, बहुत बड़ा है, मैं अभी इतना इतना ही गा सकती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो हम यही सुनना चाह रहे थे कि उससे, उसके नाम से, विघ्न विनाशक के नाम से शुरू हो तो हमारा प्रोग्राम भी अच्छा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम विनायक विघ्ननाशक उस
1: गणपति बप्पा,
0: गणपति बप्पा को प्रणाम करते हुए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। और कौन सा गीत हम सुनाएं आपको, कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? पहला गीत
1: दर्श, मैं पहले ये गाना सुनाना चाहती हूँ दर्शकों को
0: जी।
1: दशावतार मूवी हो गया था तेलुगु भाषा में, तो उसका हिंदी रिमेक था कमल हसन का, तो उसमें कृष्ण का जो गीत है वो मैं सुनाना चाहती हूँ।
0: उसके थोड़े से बोल गा के सुनाएंगे?
1: मुकुंदा मुकुंदा मुझे मुकुंदा मुकुंदा ही होते हैं स्पेशल,
0: मुकुंदा मुकुंदा जी हाँ। तो मुकुंदा को याद करते हुए हम ये सॉन्ग

0: नजदीकियां, और सच में आवाज की नजदीकियां जो होती हैं वो माइक के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचती है, और हम गाते हैं हमारी आवाज, नई आवाज, नई पहचान, एक ऐसी पहचान बन जाती है जिसे कहते हैं शीतल वापरे। शीतल वापरे हमारे साथ हैं आज इस प्रोग्राम में, और शीतल, बहुत ही सुरीला सॉन्ग हमने आपकी आवाज में सुना, क्या कहेंगे, क्या कहेंगी आप हमें और हमारे श्रोताओं को? आप गीतों से बहुत,
1: मेरा गाना बहुत, मेरे गाना, मैंने जो गाना गाया है वो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आवाज?
0: वो तो हमारे श्रोता है बताएंगे, हमने तो पहला गीत सुना तभी हम नजदीक आ गए, और ये नजदीकियां जो है वो और सुरीली हो गई, और आज की शाम जो है वो आपके गीतों से महक गई, यही कहेंगे। और श्रोताओं को जिन्होंने अभी अभी जयपुर रेडियो ऑन किया है उनको बताना चाहेंगे कि ये

0: याद आपके जहन में और वो सुनाएंगी हमें क्योंकि
1: हाँ है ना। हाँ। तीसरी मंजिल का गाना है शम्मी कपूर जी और आशा आशा जी का। मैंने गाया है, आपको भेजा है मैंने।
0: बिल्कुल आप थोड़ा सा सुनाए वैसे तो अच्छा लगेगा।
1: ये जो गाना है वो अपने जो क्या बोलते प्रेमी है उसको मनाने के लिए बोला है आशा परिख जी ने।
0: अच्छा वो वाला
1: आशा
0: भोगेश
1: जी की आवाज में।
0: अच्छा वो
1: नहीं, वो वाला सोना नहीं है, अपने जो मनपसंद जो जो पर्सन है उसको सोना बोल रहा है उसके।
0: उसको सोना। अच्छा अच्छा
1: हाँ उसका सोना बोला है, प्यार से सोना बोला है।
0: तो चलिए ये सोने जैसा गीत हम सुन लेते हैं आपकी आवाज में।

मैंने तुझे जरा देर में जाना रे, हुआ कसूर क्षमा मत होना रे। शीतल मी मराठी, शीतल वापरे हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच। और शीतल का ये गाना, ये गीत आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आपके फीडबैक की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हम यदि समय पर फीडबैक मिल जाते हैं तो हम उनको इसी लाइव शो में शामिल भी करेंगे, इसलिए आप जरूर अपना फीडबैक लिखना, देना।

0: ना भूलें। शीतल वेलकम है फिर से एक बार। अब इस गीत के बाद क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, कोई बात जो हमने ना पूछी हो?
1: ऐसी कोई बात नहीं सर, लेकिन ये गाना गाने की प्रेरणा है ये मेरी बुआ से मिली है, यानी कि मेरे पापा की बड़ी बहन।
0: अरे वाह,
1: आज वो होती तो बहुत, आज वो इस दुनिया में नहीं है, होती तो बहुत उसको बहुत खुशी होती कि मेरे प्रोग्राम हो रहा है, मेरे रेडियो पे भी प्रोग्राम हो रहा है। वो होती तो बड़े चाव से वो सुनती, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है।
0: वो मुझे भी आ रही है उनकी, और उनकी आत्मा, उनकी रूह जो है ना, वो आपके गीत को सुन रही है, हमारी बातचीत भी सुन रही है, क्योंकि हम कहते हैं आवाज ही पहचान है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा,
1: बदल जाएगा,
0: मेरी आवाज ही पहचान है। तो जहाँ तुम्हारी बुआ है वो आवाज भी इस यूनिवर्स में ही है, कहीं नहीं गई है, और वही आवाज, वही आवाज जो है वो आज एक रूह के रूप में आपकी आवाज को सुन रही है, पहचान रही है, और वो कह रही है कि शीतल गा रही है, और उसकी शीतल सी बयार मेरे पास आ रही है, वो सुन रही है, बहुत ही मनोयोग से, मन से सुन रही है, और मुझे तो यही कह रही है कि आप शीतल का एक गीत और सुना दीजिए ना। तो हम सुना ही देते हैं आपको आपका ये गीत, हमारे सभी श्रोताओं को। आइए सुनते हैं सब मिलके इस गीत को, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: बहुत सुरीली सुरीली सुरीली बहुत ही स्वीट वॉइस शीतल की हमारे साथ हैं आज लाइव इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। शीतल, आवाज सुन के ऐसे लगता है कि एक स्केल पे गाती हैं आप, और आपका वॉइस पे जो कंट्रोल है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। यानी इसमें कोई चीखना चिल्लाना नहीं है, जो ऊंचा स्वर है उसको भी आप अपने सलीके से अपने कंट्रोल से उसको काबू में रखती हैं और फिर उसको गा लेती हैं। तो ये रियाज और ये सब जो चीजें हैं वो आपने कब सीखी, कैसे आई, इसके बारे में कुछ बताएंगे?
1: जी, गाना गाने के लिए मैं गाना गानी रहती, और मेरी एक स्पेशलिटी है कि मैं गाना ठीक से सुनती हूँ, क्योंकि कोई भी गाना उसी तरह से गाना हो तो ठीक तरह से सुनना चाहिए। उसका जो चढ़ाव उतार जो है, हरकतें हैं, वो ठीक तरह से आनी चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं कि जो सिंगर है उसी की आवाज से ही गाना है, वो कैसे गा रहा है, वो किस तरह से गा रहा है, वो देखना चाहिए, वो सुनना चाहिए। मुझे हमेशा कोई पूछेगा कि आप कोई तो बताओ कि हम कैसे गा सकते हैं, क्या करना, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप पूरा गाना जो आपको गाना है वो तो पूरा ठीक तरह से सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि हम भी यही सलाह देते हैं जो इस मंच पे आते हैं उनको, कि कम से कम उस गीत को आप गाने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले
1: उसके जो बोल है कुछ किधर रुकना है, किधर बढ़ाना है, वो ठीक तरह से सुनना चाहिए। और थोड़ा सा मतलब ये भी चाहिए कि याद भी होना चाहिए कि हम लोग सामने थोड़ी मतलब म्यूजिक रहता है, तो हमको जो याद होगा जो गाना वो अपने आप भी आना चाहिए।
0: बिल्कुल, देख के गाना भी एक अपने आप में अपराध ही है सिंगर के लिए, यानी उसे गीत याद होना चाहिए। हम देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो उसमें सामने मोबाइल लेके और गाना शुरू कर दिया, तो वो गाना जो है वो गाना नहीं होता। बल्कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम और आप दोनों मिलके सबको कहना चाहेंगे कि गाना ऐसा होना चाहिए जो आपको याद हो। आप उसको देख रहे हैं तो उसको बांच रही है, उसको पढ़ रही है, उसको पढ़ के आप सुना रही हैं। जैसे चिट्ठी आई है तो चिट्ठी को आप पढ़ते हैं, लेटर को पढ़ते हैं, उसी तरह से वो पढ़ना नहीं है, रीड करना नहीं है, गाना है। उसमें अपनी आत्मा को, अपनी आवाज को मिला देना है, एक साम्य होना चाहिए। ऐसा यदि
1: जैसे कि किसी को सिर्फ गाना सुनने का शौक होता है
0: जी,
1: किसी को गाना गा के गाने का शौक होता है, किसी को सिर्फ गाने का शौक होता है।
0: बिल्कुल, तो कुछ होते हैं जिसको गाने सुनने का शौक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको गुनगुनाने का शौक होता है, कुछ ऐसा होता है उनको गाने का शौक होता है पर सुनाने का नहीं होता। अगर आप सुनाना चाहते हैं, अगर आप सच में एक सिंगर बनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो आपकी वॉइस में हमें ऐसा नहीं लगा कि आपने कहीं कोई चीज को छोड़ा है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपनी आवाज को पहचान दी है। तो आइए सुनते हैं आपका ये अगला सुरीला सॉन्ग जिसे आपने गाया है, यानी हमारी आज की सिंगर मेहमान शीतल वापरे, बहुत ही सुरीली आवाज की धनी है, इनकी आवाज ही अपने आप।

तो ये दम चल के जो अचल भी डर के बताओ चले कोई कैसे संभल के अताओं की नरमी निगाहों की गर्मी से दम बिकले और बैठ के दिल बहुत से फंसाने बहुत से तराने सुनाने को आए हैं तेरे दीवाने बात साझा दिलों पे समझ तू है जाने जाने के मिल।

रंजा नीरा हम है तूने कहा में ये दिल जो मेरा है सच है कि तेरा है उजाला है वरना अंधेरा है तू है तो फिर क्या है कम मगर फिर भी मुझको ये तुझसे गिला है कि दोनों में अब तक ये क्यों फासला है ये दूरी मिटा दे ये पर्दे हटा दे अब एक हो जाए हम

0: थैंक यू, जय हो पंचम।
1: आज मुलाकात है, होने को पहचान है, और सच में मुलाकात हम करवा रहे हैं आपकी पुणे महाराष्ट्र की शीतल वापरे। नई आवाज नई पहचान, पहली बार जयपुर रेडियो के इस मंच पर आना तो इनको पहले ही चाहिए था, लेकिन बहुत देर से आई। क्या कारण रहा, क्या वजह रही, ये तो शीतल ही बताएंगी। शीतल क्या कहेंगी गीतों के बारे में, और किस तरह की गीत आप पसंद करती हैं? जैसा कि आपने बताया कि आप भजन से आपने शुरुआत की, गणपति बप्पा के, और उसके बाद आपने कौन से गीत गुनगुनाए, फिर गाए, फिर हमें सुनाए, तो इसके बारे में, इस यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे?
2: आज तक मैंने बहुत बॉलीवुड सॉन्ग गाए, मराठी भी सॉन्ग गाए हैं, और हिंदी, तेलुगू और नेपाली भाषा में भी मैंने गीत गाया है।
1: अरे वाह।
2: लेकिन मैंने शो नहीं किया है, सिर्फ एक स्टार मेकर का ऐप है उसने ही गाया है
1: जी।
2: और लेकिन मैं मराठी गाना बहुत पसंद करती हूँ, और मराठी, और मुझे गजल सॉन्ग भी पसंद है, मराठी में जो लावणी सॉन्ग है वो भी पसंद है, और ऐसा गाना गाना है कि जो इसमें वेरिएशन हो, जैसे कि अभी लेट श्रीमती आशा भोसले ने जी नहीं है हमारे यहाँ, तो उन्होंने जो जिस तरह से गाने गाए हैं वैसे गाने गाने की मैं इच्छा रखती हूँ।
1: तो मतलब ये कि आप एक वर्सटाइल सिंगर हैं, आपको कहा जा सकता है ना, आप पे ये मोहर लगाई जा सकती है कि आप हर तरह के गीत गा सकती हैं।
2: जिस जो भाषा मुझे अच्छी लगे, मधुर लगे
1: जी,
2: गुनगुनाती हूँ, तो अपने आप वो अब मन से उसको बोलना चाहिए कि हाँ मैं गा सकती, ये इस भाषा में मैं गा सकती हूँ। वैसे ही भाषा मैंने तेलुगु, नेपाली, तमिल में भी गाया है, लेकिन किसी को सुनाया नहीं अब तक अपने, मतलब
1: अब आपको, मेरे आपको मंच मिल गया है, अब आप सुनाइए और सुनाते रहिएगा। हमें तो आज मालूम हुआ कि आप तेलुगु, तमिल, नेपाली, मराठी, हिंदी और इतनी भाषाओं में गीत गाती हैं, और फिर इतनी लेट आती हैं, ये जो है ना गजब, अजब गजब बात है।
2: उनमें से तेलुगु और नेपाली भाषा बहुत फिट है, मतलब वो गाना गाने के लिए बहुत, मतलब ऐसे, मतलब हिंदी मराठी जैसा नहीं है, अपने आप मुंह में मुझे ओठों पे आ जाता है वो गाना, उसका जो शब्द है वो अपने आप आ जाता है।
1: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, ये जो मराठी या नेपाली में या तेलुगु तमिल में गाना चाहते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही हार्ड होगा, बहुत मुश्किल होगा गाना, लेकिन आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं आपकी बात और सुनते हैं ये आपका एक अजब गजब गीत, रात अकेली है। आपने जो जिक्र किया कि हर तरह का चैलेंज आप स्वीकार करती हैं, तो इस गीत में देखते हैं आपकी आवाज़।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से।

0: कानों में कुछ कहूं और कहना है सब सुनने वालों को कि शीतल बहुत अच्छा गाती है। और शीतल हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं पुणे महाराष्ट्र से, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान की हमारी आज की मेहमान को, शीतल वापरे।
1: जी
0: क्या कहेंगे हमारे जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं लिसनर्स, वो उनके मैसेज आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या सच में आपकी आज की सिंगर मेहमान की आवाज है। इस गीत को सुनने के बाद तो हमसे प्रश्न किए जा रहे हैं, तो उन प्रश्नों का आप ही उत्तर दीजिए। और कौन कौन से सिंगर्स कौन कौन से सिंगर्स हैं जिनको आप गाती हैं, लाइक करती हैं?
1: वैसे तो सबकी आवाज अच्छी है, जैसे कि लता जी, साधना, आशा भोसले, अलका याग्निक, प्रिया घोषाल, सोनू निगम, एसपी बालसुब्रमण्यम, और बहुत है, लेकिन मुझे आशा जी की आवाज बहुत अच्छी लगती है और वो मेरी फेवरेट भी है, थी। और उसपे आडे जी का जो म्यूजिक है वो बहुत, उनकी म्यूजिक भी मैं पसंद करती हूँ, सब म्यूजिक मुझे पसंद करती हूँ।
0: तो हमारी बात हुई थी मुकुंदा से, और मुकुंदा जो गीत है उसको हम थोड़ा सा आपकी आवाज में वैसे सुनना चाहेंगे ताकि हमें लगे कि हाँ ये शीतल की आवाज से मैच करता है।
1: लाइव में क्या?
0: हाँ लाइव जी, थोड़ा सा गा के दो लाइनें गा के सुनाइए ताकि पता लगे जी, हमारे सुनने वालों को यकीन हो जाए कि हाँ एक वर्सेटाइल सिंगर जो है हमारे आज इस मंच पर है हमारे साथ।
1: ये दशावतार फिल्म है, तमिल में भी हुई थी और तेलुगु में भी हुई थी, कमल हसन उसके लीड हीरो है
0: जी,
1: और असीम एक्टर्स है
0: जी।
1: तो मैं उनका जो गाना है वो उस तेलुगु और तमिल भाषा में तो बहुत अच्छा है, लेकिन साधना सरगम ने जो गाया है

0: वाह आनंद आ गया मुकुंदा, आनंद देने वाला शीतल की आवाज, शीतल सी हमने सुनी इस सुरीले सॉन्ग में। क्या कहें समझ में नहीं आता, हम निःशब्द हो गए, इतना सुरीला गान ये तो आपके अलावा कौन गा सकता है। क्या कहेंगे शीतल, आप गाने तो गाती हैं, सिंगिंग करती हैं, सिंगिंग की आज की हमारी मेहमान हैं, और सुनने वालों को बता दें कि आज नई आवाज नई पहचान में हमारे संग हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से, बहुत ही सुरीली आवाज लेकर इस मंच पर उपस्थित हैं। तो सिंगिंग के अलावा क्या क्या शौक हैं आपके और क्या करती हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, रीडिंग भी करती हूँ और मुझे खाना बनाने का भी शौक है।
0: क्या क्या बना लेती हैं वैसे, आजकल तो बनाती नहीं है आजकल की महिलाएं,
1: सब,
0: तो
1: सब वेज नॉन वेज सब
0: सब बना लेती हैं जी। बहुत अच्छी बात है। और गाना कितनी देर गाती हैं दिन में आप, कितना समय देती हैं गीत?
1: नहीं समय मिलता है वैसे गा लेती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ थोड़ा बहुत, तो मतलब माइक में मतलब कराओके मैं थोड़ा सा गाती हूँ अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से केजे यशुदास सिंगर है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो संगीत के इतिहास में सबसे महान गायकों में से वो माना जाता है। बहुत भाषा में भी उन्होंने गाना गाया है, उनकी मधुर दिव्य आवाज को सम्मान में उन्हें गान गंधर्व मतलब स्वर्गीय आवाज कहते हैं, मराठी में कहते हैं कि देवांचा आवाज, ये उपाधि उन्हें मिली है। बहुत अच्छी तरह से मैंने उनके गाने भी सुने हैं, सदमा का जो गाना है रुमई अखियों से बहुत मुझे अच्छा लगता है।
0: बहुत ही
1: अपने पराए जो फिल्म है हिंदी, उसमें श्याम रंग रंगारे जो बंगाली थोड़ा सा सॉन्ग है लेकिन बंगाली म्यूजिक है उसमें
0: जी।
1: वो भी अच्छी लगती है।
0: आइए सुनते हैं
1: तुझे मेरे सुर में,
0: सदमा का ये सुरीला सॉन्ग जो आपने गाया है।

0: बहुत ही सुरीला प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। नई आवाज, नई पहचान, और हमारा मन नहीं करता कि हम इस प्रोग्राम को ब्रेक करें, लेकिन समय जो है वो कहता है कि आखिरी गीत सुन लिया जाए। तो शीतल हमारे साथ हैं। शीतल सुन ले हम, इजाजत है आपकी इस गीत के लिए?
1: जी।
0: तो आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग, मार गई मुझे तेरी जुदाई। और उसके बाद शीतल क्या कहेंगी वो इस गीत के बाद हम सुनेंगे।

0: और समय ने अंगड़ाई ले ली है, फिर भी हम शीतल को कहेंगे कि जाते जाते चलते चलते क्या कहेंगी आप?
1: मैं बचपन से गाती हूँ, लेकिन कभी इतने लाइमलाइट में नहीं रही। यूं ही दोस्तों के बीच और रिश्तेदारों के बीच। मैं मुंबई में रहती थी, शादी के बाद पुणे आई। कुछ साल बाद मुझे ये स्टेज शो करने का अवसर मिला, स्टूडियो में गाने का मौका मिला
0: जी।
1: मैंने करोके शो भी किए, चैरिटी शो भी किया, मध्य प्रदेश के रेडियो प्रोग्राम में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था दो साल पहले
0: जी।
1: और ये सब करने के लिए मेरे पति ने बहुत मुझे सपोर्ट किया।
0: वेरी गुड।
1: उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक यू संजय, क्योंकि हर किसी को इतना मोरल सपोर्ट नहीं मिलता घर से।
0: बिल्कुल, और नहीं मिलता तो फिर वो नहीं कर सकता। और
1: नहीं कर सकते सर। उनके सपोर्ट के बिना मैं कर ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल।
1: उनको भी गाना, उनको गाना गाना नहीं आता, लेकिन वो गाना पसंद करते हैं, मेरा गाना सुनते हैं, और मुझे वो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताते भी है
0: कि इसको यहाँ से ठीक
1: करो। हाँ, बराबर, यहाँ से ठीक करो, वहाँ से ठीक करो, क्योंकि पहला गाना मैं उनको ही सुनाती हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
1: वो बोलते मुझे ये सजा क्यों, लेकिन आप ने मुझे चांस दिया तो आप ही मेरा गाना सुनेंगे पहले।
0: ये सजा नहीं है, ये तो सजा नहीं, क्योंकि ये तो मजा है संगीत का।
1: ये प्यार है।
0: ये प्यार भी है और ये संगीत का मजा भी है, तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने।
1: सर आपको भी धन्यवाद,
0: हमारे को प्रोग्राम, हमारा धन्यवाद तो हमारे श्रोता देंगे हमें, और आप आई इस मंच पे और हमारे साथ इतनी बातचीत की, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया कहेंगे, आभार कहेंगे, नमस्कार कहेंगे और इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद शीतल वापरे, हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से रही, प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं गीता दर्शन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। अभिव्यक्ति का आंचल, और इस क्रम में आज हमारे साथ हैं इंदौर मध्य प्रदेश की सोनम उपाध्याय नोमी। सोनम जी जो हैं वो एक अच्छी रचनाकार हैं और कविताएं लिखती हैं,

0: चिंतक है, विचारशील हैं और बचपन से लेके अब तक जो भी अनुभव आपने अपने विचारों में शब्दों के द्वारा उतारे हैं वो कविताएं बन गईं और उन्हीं के माध्यम से आज देश विदेश में अपना नाम और अपनी रचनाएं पहुंचा रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर हमारे साथ सोनम उपाध्याय नौमी हैं। जी हाँ सोनम जी, वेलकम है आपका, स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके बारे में जितना हम जानते थे वो तो हमने परोस दिया है हमारे श्रोताओं के समक्ष, अब आप बताएं और रूबरू हैं आप हमारे श्रोताओं से।
1: नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत आभार और इतना अच्छा अवसर आज मुझे मिला है कि मैं अपनी भावनाएं आप सभी के सामने अभिव्यक्त कर सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने मन की भावनाएं, देश के प्रति अपनी भावनाएं, किसी रिश्ते के प्रति आप क्या सोचते हैं उसे व्यक्त करने का। और कविता एक अलग ही तरह का सुकून आत्मा को देती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कविता शब्द है और शब्द एक सुकून जैसा काम करता है। जब कोई भी व्यक्ति हताश महसूस करता है और कुछ शब्द किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे कह दिए जाते हैं कि उससे एक सुरक्षा का भाव निर्मित होता है, एक आकांक्षा फिर से पैदा होती है, एक आशा मिलती है किसी व्यक्ति को। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता सबसे अच्छा माध्यम है उसका, सबसे सशक्त माध्यम है। और आज के समय में साहित्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हर व्यक्ति को।
0: तो कविता के बारे में आपने कहा कि अपने को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है कविता रचना। और सोनम हमारे साथ हैं, नाम सोनम है आपका और सोने का भाव तो आजकल बहुत ज्यादा उछाल खा रहे हैं तो ये सोनम और उपाध्याय और उसके बाद नौमी, तो इनका क्या सामंजस्य है, जरा हमारे श्रोताओं को इसकी व्याख्या करके बताएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कहाँ रहती हैं सोनम? कहाँ रहती हैं?
1: इंदौर रहती हूँ, इंदौर में रहती हूँ।
0: जी, भारत का दिल है ना?
1: जी बिल्कुल। और दिल हमेशा भावनाओं से घिरा रहता है, उसमें दिमाग बहुत कम काम करता है और दिल बहुत ही ज्यादा भावुक होता है।
0: तो आज ऐसा लगता है कि शायद आज से हमें भी रख लीजिए और हमारे जयपुर रेडियो को भी रख लीजिए अपने दिल में।
1: बिल्कुल जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, जरा सी जगह दीजिएगा जी।
1: हाँ जी हाँ जी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ आज। और सोनम मेरा नाम है और नौमी मेरी बेटी का नाम है, नौमी का नाम है उसका, घर का नाम नौमी है। मेरी इंस्पिरेशन है वो, तो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, तो मैं उसको एक देवी के रूप में अपने जीवन का हिस्सा मानती हूँ, तो उसी के लिए मैंने अपने नाम के आगे नौमी लगाया है।
0: वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये एक ऐसा उदाहरण है जो अपने आप में अनूठा है। बहुत लोग अपने पति का नाम लगाते हैं या पिता का नाम लगाते हैं, पर आपने उस देवी का जो इस सृष्टि की वृद्धि में आपके साथ बढ़ रही हैं और आपकी देखरेख में बढ़ रही हैं, तो हम उसका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस नाम का, कि इस तरह से भी लोग सोचते हैं और उस सोच को सच में अपनी प्रक्रियाओं में, कार्यशैली में ढालते हैं। ये जान के बहुत ही अच्छा लगा। तो सोनम जी, कविता के बारे में आपने बताया, रचनाओं के बारे में बताया, कविता और रचनाओं के अलावा भी आप किसी क्षेत्र में अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं, व्यक्त करती हैं, चित्रकारी में या कहीं लेखन में, चिंतन में, किसी और दिशा में, खेल कूद में, इसके बारे में बताएंगे?
1: हाँ जी बिल्कुल, मेरा बहुत ज्यादा लगाव बचपन से ही रहा है साहित्य को लेके, कला को लेके। हमारे देश का, हमारे देश की जो धरोहर है, जो हमारे देश का इतिहास है, इतना स्वर्णिम इतिहास है, तो जो हमारे पूर्वज हैं इतने ज्यादा वीर रहे, इतने कलाकार हमारे देश में हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे बताने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान में कैसी कैसी विभूतियों ने जन्म लिया है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो कलाकार होते हैं वो भगवान के सबसे प्रिय बच्चे होते हैं। मतलब भगवान कभी भेदभाव नहीं करते।

0: अपने बच्चों में, लेकिन जिनको वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनको वो कलाकार बना देते हैं, क्योंकि भगवान भी सृजन करते हैं, सृष्टि का सृजन किया है, हम सबका सृजन किया, और एक कलाकार भी सृजन करता है दिन प्रतिदिन। तो ये सोच है मेरी, और कहीं कभी किसी कोने में किसी हताश व्यक्ति, किसी निराश व्यक्ति को अगर हमारी कविताएं, हमारे शब्द, हमारी रचना के माध्यम से जीवन फिर से जीने की एक दिशा अगर मिल जाए, तो हमारा लिखना अभिभूत हो जाता है, हमारा लिखना सार्थक हो जाता है।
1: बहुत ही सुरीली और सजीव सोच है आपकी, और इसी का परिदृश्य आपकी कविताओं में देखने को मिलेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो हो जाए एक रचना आपकी अपनी जुबानी सोनम।
0: मेरी बहुत उपाध्याय, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बहुत ही प्यारी रचना है और कई लोगों को पसंद आती है, कई स्टेजेस पे मैं हमेशा यही सुनाती हूँ सबसे पहले। तो ये इस तरह से है कि यूना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, कि यूना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, और उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए।
1: बहुत खूब।
0: और आशा नहीं है, धन्यवाद, आशा नहीं है यो गर्दिशों को झेल पाना, आशा नहीं है यो गर्दिशों को झेल पाना, फिर भी मुश्किलों के आगे नहीं यूं सिर झुकाते रहिए, और जो तूफान में भी साहिल को, और जो तूफान में भी कश्ती को साहिल तक ले जाए, जो तूफान में भी कश्ती को साहिल तक ले जाए, उस माझी से हिम्मत का गीत गुनगुनाते रहिए, उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए।
1: उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए। और मुस्कुराते मुस्कुराते आपने ये सजीव सी, सजीली सी कविताएं सुनाई, जो जीवन का दर्शन भी है और जीने के ढंग को प्रतिपादित करती है आपकी रचना। बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई हमारे श्रोताओं को। अब आगे बढ़ते हैं इस बातचीत में, और जानना चाहेंगे कि आप कौन से रचनाकारों को पसंद करती हैं, किन कवियों को, कवित्रियों को, किन को सबसे ज्यादा लाइक करती हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमचंद के लेखन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है,
1: यथार्थ लेखन,
0: और
1: बिल्कुल
0: हम इसके अलावा जो निराला जी हैं,
1: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। समय बिल्कुल कम पड़ जाएगा जी, बिल्कुल। और परसाई जी हुए, हरिवंश राय जी हुए,
1: जी।
0: जिनकी जितनी मतलब जितने मैं नाम लूं उतने कम है, सब जब भी लेखन मेरे सामने आता है, अभी कुछ नवीन लेखन भी बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान के साक्षात भेजे हुए फरिश्ते हैं सब। जितना पढ़ा जाए उतना डेप्थ, मतलब इतनी गंभीरता, इतनी गहराई कि जब इन्हें पढ़ा जाता है, इनकी रचनाओं को, तो ऐसा लगता है कि आपके सामने सब कुछ चल रहा है, चित्रण बिल्कुल आपके सामने होता है, और वही असली कविता है, मुझे ऐसा लगता है।
1: सुनम, आपके सामने बहुत, बहुत सही बात आपने कही। और जो भी पढ़ता है ना, जैसे आपने पढ़ी, तो आपके समक्ष एक एक परिकल्पना आपके दिमाग में एक नई सी फिल्म बनेगी, और दूसरा पढ़ेगा उसके दिमाग में उसके सोच उसके शब्दों के अनुकूल दूसरी रचना और दूसरा दृश्य परिदृश्य होगा, और तीसरा पढ़ेगा तो उसी रचना का एक तीसरा परिदृश्य होगा। इसी तरह से निरंतर बहुत सारी कल्पनाएं जो हैं वो सृजित होती हैं। और निराला जी की आपने बात की, तो निराला जी की एक कविता मुझे याद आ रही है, सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया, किसले वसना नवल वय लतिका मिली मधु तरु अरि पतिका, यानी लता और तरु जो है, वृक्ष और लता जो आपस में मिले हुए हैं, उसका इतना सुंदर कोमल दृश्य बनता है उस रचना को पढ़ के। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वसंत ऋतु है और इस ऋतु में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अपने आप ही अनुकूल हो गया है मौसम के, प्रकृति के। और आपने जिन रचनाकारों का नाम लिया है वो सच में अमूल्य है, और उनकी रचनाएं जो हैं हमारे जीवन के लिए सच में मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। उन रचनाओं को हम हमेशा याद रख सकते हैं और उनको जी सकते हैं, और जिंदा रहने की ताकत उनमें रहती है। तो ये तो रचनाकारों की बात हुई, देश के राष्ट्र

0: संवेदनशील
1: तो इस तरह से है इस तरह से है कि कभी सोचा है कि हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे, कि कभी सोचा है कि हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे और देश की रक्षा के लिए लाल रंग से नहा जाते होंगे, कि कभी सोचा है? और पिचकारी के नाम पे सिर्फ गोलियां आती होंगी, पिचकारी के नाम पे सिर्फ गोलियां आती होंगी और गुब्बारों के नाम पे सिर्फ बम खाते होंगे, कि कभी सोचा है हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे? और याद तक नहीं होगा उन्हें कि कब परिवार के साथ होली मनाई है, याद तक नहीं होगा कि कब परिवार के साथ होली जलाई है, और परिवार की याद में पल पल कितना जल जाया करते होंगे, कि कभी सोचा है? और अपनी बेटी का खत पढ़कर आंखें नम हो जाया करती होंगी, कागज पे गिरा आंसू सूख जाता होगा, लेकिन पलकों पे अटका आंसू कहाँ छुपाते होंगे, कि कभी सोचा है हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे?
0: वाह, क्या चित्रण किया है और सोच को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है आपने। सोचते तो सभी हैं, लेकिन आपकी जो रचना है वो हर सुनने वाले को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है। और सच में ये सोचना बहुत जरूरी है। और होली को आपने कहां जाके किस तरह से संयुक्त किया है, जोड़ा है और उसको अभिव्यक्त किया है, ये निर्ले ही बिरले ही लोग कर पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी ये रही और सच में यथार्थ का बोध कराने वाली, क्योंकि हम घरों में बैठ के पेन कागज पर कितने भी संवेदनशील हों सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन एक कठोर यथार्थ का सामना हमारे सैनिक, हमारे वीर सैनिक, हमारे राष्ट्र के रक्षक करते हैं। और इस ओर आपने सोचा और इसको बयां किया अपनी रचना के माध्यम से, ये बहुत ही खूबसूरत रचना है सच में। आगे बढ़ते हैं, और हमने तो आपको देखा नहीं है, सिर्फ बातों में ही देखा है, और बातों से बहुत सारा जो रूप स्वरूप और अभिव्यक्त होता है वो आईना है। तो कुछ और बताएं अपने बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, और कब से आपने लिखना शुरू किया? श्रोता सुन रहे हैं प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं सोनम उपाध्याय, इंदौर एमपी से।
1: जी बिल्कुल, बचपन से ही लिखती हूँ मैं। माता पिता को बहुत ज्यादा साहित्य का बहुत ज्यादा ज्ञान भी था, मम्मी पापा को सुनते देखा घर में, संगीत वाला भी माहौल था। तो धीरे धीरे पता नहीं कब ऐसे चला, नहीं पता कि कब मेरा भी लेखन के प्रति, मैं लिखने लगी, पढ़ने लगी साहित्य, और पेपर कटिंग उस टाइम पे पेपर में रचनाएं आती थी, तो आज तक मेरे पास, मैंने संभाल के रखी है वो पेपर कटिंग्स। और जब सबसे पहले मुझे ऐसी मेरे मन में भावना आई कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने लिखना शुरू किया। शायद मैं सेवेंथ या एट्थ क्लास में थी उस समय, तो सातवीं आठवीं कक्षा से शुरू कर दिया था लिखना। जी, फिर स्कूल में भाषण प्रतियोगिता है, कुछ वाद विवाद है, तो उसमें थोड़ा कुछ अपनी लाइंस ऐड कर दी। फिर जब युवा उत्सव हुए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो वहां फिर समय के साथ ऐसा अवसर हमेशा प्राप्त होता गया कि मेरी रचनाएं बाहर आती गई, और फिर लोगों से इतना प्यार मिला। तो असली हकदार जो मेरे क्या बोलूं मैं आपको, मेरे मित्र कह लीजिए, मेरे परिवार वाले कह लीजिए, समाज, तो हमेशा उन्होंने मेरी रचना को सराहा। तो मुझे वो प्रोत्साहन मिला कि मैं कुछ सही कर रही हूँ। और आज भी अगर मैं अपनी रचना नहीं लिखती हूँ कुछ नया, तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं या परिवार वाले हैं, तो वो पूछते हैं कि नया क्या लिखा है इस बार। तो धीरे धीरे धीरे बढ़ता गया।
0: तो वो पहली रचना जो आपने बड़ी संकुचाते हुए बोली होगी कि सुनकर लोग क्या कहेंगे, वो यदि याद हो तो हम सुनना चाहेंगे।
1: हाँ, बहुत ज्यादा याद नहीं है, पर वो ऐसा था कि एक प्यारा निराला ख्वाब मैंने देखा था, एक ये थी। और इसके पहले मुझे ऐसा याद है कि मैंने माँ के बारे में लिखा था कि जिसे प्रथम बार देखा वो माँ थी, जिसे प्रथम बार छुआ वो माँ थी, ऐसा पूरा कुछ सीरीज है उसमें
0: जी।
1: और फिर उसका कंक्लूजन मैंने ऐसे किया है, जिसे पहली बार महसूस किया वो माँ थी, जिन्होंने पहली बार चलना सिखाया, जिन्होंने पहली बार अपना हाथ बढ़ाया वो माँ थी, और समय के साथ धीरे धीरे आभास हुआ कि वो माँ नहीं, माँ के रूप में ईश्वर की मुझ पे कृपा थी, ईश्वर की मुझ पे दया थी। ये पहली कविता
0: बहुत ही खूबसूरत

0: रचना, वो पहली रचना जो अनुभूत करती है हमारे को ईश्वर के साथ जोड़ती है, इससे बड़ी और इससे घनत्व वाली कविता हो नहीं सकती। जिसमें माँ हो उसमें सब कुछ होता है, पूरी सृष्टि पूरा संसार। तो इसके अलावा आप कोई रचना हमें और सुनाना चाहेंगे?
1: हाँ जी, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को, नारी शक्ति को समर्पित, मेरी कविता मातृशक्ति को समर्पित। कि आप खुद भी अगर सोचेंगे तो आपको कई ऐसी नारियां अपने जीवन में दिखेंगी, आपकी बहन, माँ, आपकी कई दोस्त, पत्नी, कोई भी, आपकी बेटी की कितनी शक्ति है उनमें कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को जैसे कभी किसी ने संभाला ही नहीं, कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को जैसे कभी किसी ने संभाला ही नहीं। और इस तरह बेखौफ दौड़ रही है वो, और इस तरह बेखौफ दौड़ रही है वो जैसे उसके पैरों में कोई छाला ही नहीं। कितना जागी है वो तुम्हें रातों रात सुलाने में, कितना भागी है वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में, और बिखरती रही ताकि तुम्हें जोड़ सके, और किसी में हिम्मत नहीं कि मेरी माँ का हौसला तोड़ सके। और सुबह से जोड़ा बांधा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जोड़ा बांधने का जो प्रक्रिया है कि वो अपने सारे सपने अपने आप को समेट के, ना मतलब ऐसे जैसे युद्ध पे कोई जाता है, अपने आप को पूरा समेट के अपना सर्वस्व परिवार के लिए,
0: अपनी सारी जी उनको बांध लिया,
1: बिल्कुल बांध लिया है कि सुबह से जुड़ा बांधा है वो, बाल बनाना भूल गई, इतना मुझ में उलझ गई, कहीं आना जाना भूल गई, और बिन काले काजल के बिन उसकी आंखें काली है, और चूल्हे में तपी है वो, तभी आज मनी दिवाली है, और किया ही क्या है मेरे लिए, तुम तनक कर बोल गए, वो उस मंदिर की देवी है जहां तुम दीप जलाना भूल गए।
0: सच में रोने का मन, सच में इतनी अनुभूत परख जो है आपकी रचना के, आपने सच में बिल्कुल स्पर्श किया है, छू लिया है माँ के दिल को, आपने सच में छू लिया है। और सच में ऐसा अनुभव, ऐसी प्रेरणा जो है वो सच में दिल से ही आती है, और दिल से ही जागती है, और दिल से ही बोलती है। बहुत सुरीली सजीली रचना आपने हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाई। आप बात कर रही थी कि संगीत और साहित्य से आपके परिवार का रिश्ता रहा है, तो कहीं आप भी संगीत से जुड़ी कुछ गाती हैं? और
1: हाँ जी, मेरे परदादा जी के पास सारे वाद्य यंत्र हुआ करते थे, तो पिताजी ने मुझे बताया, हमेशा बताते थे वो, कि बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड, जिसको कहते हैं हम लोग, कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, कला, साहित्य, प्रकृति, प्रभु, हमारी संस्कृति, हमारी ईश्वर में भक्ति, जिसको कह लीजिए, आस्था कह लीजिए। तो जो एक सही इंसान जो होता है, जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल फूल, जैसे कहा जाता है कुछ इमोशनल लोगों को
0: आजकल, ये मुझे,
1: हाँ जी बिल्कुल है, हर आर्टिस्ट होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चा इंसान वही है जो भावनाओं से भरा हुआ है, और जो भावना से भरा नहीं है वो पत्थर है। तो सही इंसान होने की पहली शर्त है कि आप में भावनाएं हो। आप उसको कितना ही मैनिपुलेट कर दें आज के समय में, लेकिन भावनाएं आपको ईश्वर प्रदत्त है, वो आपकी कला ईश्वर प्रदत्त है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फूल्स हैं, तो बोलते ना कि भोले का भगवान होता है, तो भगवान सबसे पहले भोले लोगों को ही मिलने वाले हैं।
0: बहुत सही बात कही आपने। और कौन से गीत संगीत सुनते हैं आजकल जो चल रहे हैं, पुराने वाले जो गीत हैं उसमें आप?
1: सुकून तो पुराने वाले ही जो बोल है, जो, हाँ जी बिल्कुल, रूट जिसको बोलते हैं, कि जड़े तो वही है हमारी, शास्त्रीय संगीत में मुझे पसंद है। बाकी पुराने जितने भी सारे गाने हैं हमारे, किशोरदा की आवाज ले लीजिए आप, लता जी ले लीजिए, तो वो तो रफी साहब, तो इनका तो मतलब कोई सानी ही नहीं है।
0: तो कभी कभी गुनगुनाती होंगी सारे गाने, थोड़ी सी दो लाइन आप गा के सुनाएंगे हमें?
1: मुझे ऐसा लगता है कि मैं गा अच्छा नहीं सकती हूँ।
0: नहीं, वो तो सबको लगता है, पर वो दो लाइन जो है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, वो जरूर हम सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि आपकी पसंद संगीत में कैसी है, वो भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे।
1: कोशिश करते हूँ
0: जी।
1: मैं बहुत इसको गुनगुनाती हूँ जब भी मन होता है मेरा। किसी की मुस्कुरा हटो पे हो नसा, किसी का दर्द मिल सके तो ले। उधर बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। जीने का जो दर्शन है, जीने का जो कला है, वो इस गीत के माध्यम से है। और इसीलिए आप एक अच्छी रचनाकार हैं, कवयित्री हैं और संवेदनशील हैं प्रकृति को और उसके आसपास, जहां इन पांच तत्वों में हम जीते हैं उनको आप सच में स्पर्श करती हैं, हमारी सांसें उनको छूती हैं, और इसीलिए आप इतनी अच्छी रचनाएं लिखती हैं। तो
1: धन्यवाद।
0: एक रचना चलते चलते और हो जाए तो
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके माध्यम से अपनी ये कविता कई दिलों तक पहुंचा पाऊंगी। और आप ये समझ लीजिए कि ये वो कविता है कि ईश्वर आपसे क्या कह रहा है, कि आप कौन है, ये हर व्यक्ति के हृदय तक जाएगी। तो ईश्वर ये कहते हैं कि तुम असीम अनंत ऊंचाइयों वाला आकाश हो। कि तुम कौन हो? कि तुम असीम अनंत ऊंचाइयों वाला आकाश हो। कि तुम जीवन के अंधेरों को चीरता सा प्रकाश हो। कि तुम ज्ञान से, तुम कर्म से, तुम अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण से, और तुम अपने हाथों की लकीरों से कई आगे निकल चुका भाग हो। और तुम सुंदर चमकीले रंगों से लिखना अपनी किस्मत। तुम सुंदर चमकीले रंगों से लिखना अपनी किस्मत। हीरा हो तुम, हीरा हो तुम, हीरा हो तुम, सिर्फ जौहरी ही समझेगा तुम्हारी कीमत। और सुनिए कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम निज फल की इच्छा त्याग, सिर्फ कर्म ही करते रहना। कर्म ही तुम्हारा धर्म है, कर्म ही तुम्हारा कर्म है, तुम जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना, कर्म करते रहना।
0: अद्भुत अनुपम
1: सर, धन्यवाद जी, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत प्रेरणाप्रद है आपकी ये रचना, और सच में सारी रचनाएं और सारी बातचीत भी सुनने वाले का उत्साह, हौसला और ज्ञान में, उसके सुजान में वृद्धि करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगी अपने बारे में, यदि हमसे कुछ छूट गया हो तो आप बताना चाहें तो आपका वेलकम है।
1: बस यही संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ कि इस दुनिया में जहाँ किसी को किसी के लिए वक्त नहीं, हमें सबके लिए वक्त निकालना चाहिए। और एक कविता ऐसे ही मैंने लिख दी थी, आधी आधी सी याद है मुझे, कि तुम समंदर से भी गर्जा मिलो। सो ऐसा था कि आप अपनी प्योरिटी मत छोड़िए, आप अपनी वास्तविकता मत छोड़िए। कि कितना धुआं धुआं, कि कितना धुआं धुआं, इस धुएं में निश्चल आसमां रहना तुम। इतने धुएं धुएं में निश्चल आसमां रहना तुम। और समंदर से भी अगर जा मिलो, समंदर से भी यदि जा मिलो, तो भी नदी की पावन मुस्कान रहना तुम। और दिखावट, बनावट, छलावट वाली इस दुनिया में तुम वो बनना कि एक आदमी तुमसे हंसकर गले मिल सके, एक आदमी तुमसे गले मिलकर रो सके। कम से कम इतने तो इंसान रहना तुम, इतने तो इंसान रहना तुम। ऐसी एक कविता है मेरी,
0: बहुत बहुत
1: मुझे याद आ गई।
0: बहुत ही मानवीय धरातल को संभालती ये रचना है। और सच में हमें ऐसा ही बनना चाहिए कि हम बेबाक, बेलाग, बेलौंस किसी से मानवीय धरातल पर गले मिल सकें, हक कर सकें उसे, और
1: जी,
0: अपने
1: जी।
0: सुख दुख को शेयर कर सकें। तभी तो मानव मानव के लिए है, और तभी ये संसार है, ये दुनिया है और ये कायनात है।
1: बिल्कुल जी, जी।
0: बहुत अच्छा लगा। सोनम उपाध्याय नौमी हमारे साथ रही इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अभिव्यक्ति का आंचल। हम तो बीच में बताना ही भूल गए कि हमारे श्रोता क्या सुन रहे हैं, किस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद सोनम जी आपका,
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और इस खूबसूरत बातचीत के बाद आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग।

0: श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और इस प्रोग्राम में हमारी आज की मेहमान रही सोनम उपाध्याय नोमी, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: स्वागत है दोस्तों आपका जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान के वीकली शो लफ्जों की गुजारिश में। मैं आपकी होस्ट रति भार्गव अपने आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के कलाकारों के साथ। एक जमाना था बहुत बहुत बहुत युग पहले, जब हमारे देश में लड़का और लड़की के बीच अपार्थेड से भी कट्टर सेग्रीगेशन था। मिलना नामुमकिन, इजाजत के बिना घर से निकलना नियायती मुश्किल, और इसीलिए बाय चांस भी ओपोजिट जेंडर की नाक हाथ कान आँख कुछ भी दिख जाए मोहब्बत अनिवार्य थी। केस इन पॉइंट, मेरे महबूब तुम्हें मोहब्बत की कसम, सर से बुरखे में ढकी लड़की की आंखें और तेरी मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, वॉज क्वाइट इनफ फॉर लाइफ लॉन्ग इश्मुश। उसके बाद जमाना बदला, सिनेमा बदला, थोड़े ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस और बढ़े। अमेरिका से चाचा जी कुछ इंग्लिश मूवीज के वीएचएस टेप्स जो लाते थे, ग्रीस से लेके घोस्ट से लेके टॉप गन तक सब देख ली, और दिमाग के सारी खिड़की दरवाजे खुल गए। तब तक माँ बाप हल्के प्रोग्रेसिव टाइप हो गए थे, या उनको होना पड़ गया था, तो सडनली इट वॉज ओके टू मीट अ फ्रेंड ऑफ द ऑपोजिट सेक्स फॉर कॉफी, स्वीट कॉर्न सूप 1/2 या सड़क वाली चाउमीन वगैरह वगैरह। पर तब भी ये तो तय था, ग्रुप में मिल रहे हो तो अलग बात है, मिक्स जेंडर फ्रेंडशिप काफी नॉर्मल सी बात हो गई थी तब तक, बट अकेले वन ऑन वन अगर मिल रहे हो तो फिर बेबी लोग बाबा लोग उस मुलाकात को कुछ खास मुलाकात कहेंगे। हमारे आज का एपिसोड है मुलाकात किससे कब कहां, ये बताने आ रहे हैं मेरे आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के खजाने से मेरे कोहिनूर। सुनते हैं हमारा आज का पहला नगमा संतोष जी और सीमा जी से।

लता मंगेशकर, खयाम, नक्श लैलपुरी है ना, क्लासिक बुलसाई, रोमांटिक रेट्रो हिट भी, मासूम भी है, विकेट भी है, मेलोडियस भी है, अपबीट भी है, जेंटल भी है, नॉटी भी है। उफ, सच सच बताइए, दिल पे हाथ रख के, बिना खुद से झूठ बोले, बिना वो सबसे अच्छा बच्चा वाला हेलो स्विच ऑन करके, बिल्कुल बिना किसी झूठ के, ये बताइए वो कौन सा चेहरा है जिसे आप सबसे पहले देखना चाहेंगे, वो कौन सा इंसान है जिसे आप सबसे पहले मिलना चाहेंगे, इस जिंदगी के भागम भाग से दूर भाग के। ओए हैंग ऑन, आई डिडंट से शुड मीट, मीट टू मीट, ऑट टू मीट और मस्ट मीट, आई सेड वांट टू मीट। मुझे भी पता है, जैसे ही हम अपने बायो बबल यानी कि इस मास से बिल्कुल दूर हट जाएंगे, अनिवार्य है हमें इन सब से मिलना, चाहे फिर वो क्यों ना हो, काम की खातिर, जिम्मेदारियों की खातिर, आउट ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, कंपल्शन। पर वो है कौन जिनसे सबसे पहले आप मिलना चाहोगे, हो सकता है मिलना मुमकिन भी ना हो या डेफर करनी पड़े दूसरी प्रायोरिटीज के आगे, पर दिल में कौन सा चेहरा है ये तो बताइए। आइए सुनते हैं अगला गीत, जय सरकार और पूर्णा की मधुर आवाज।

हमारी पूरी कोशिश रहती है कि चलो ड्राइव ना सही, एक फ्लाइट ही सही। अगर एक डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट की दूरी पे भी हो तो हम मिलने का पूरा प्रयास करते हैं। पॉइंट ये है, अगर मिलना मुनासिब है तो अधिकतर लोग वो एफर्ट जरूर करते हैं। एंड स्पेशली आफ्टर टाइम लाइक दिस व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड बाय आवर ओन मोर्टैलिटी, वी विल डेफिनेटली गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू मीट द वन वी लव।

गाना सुना रहे थे आपको राहुल और गायत्री अपनी मधुर आवाज में। कीजिए कीजिए मिस कीजिए उन्हें जिनसे मिलने की इच्छा है पर क्षमता नहीं। क्या आप उसी सोच शंका शको शुभा में घुसे हुए हैं आप कि तब मिलेंगे ऐसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे, उनकी जिंदगी कहीं दूर और मेरी कहीं और। वैसे तो बातचीत हालचाल पूछना सब होता ही है दूर से, हैप्पी बर्थडे से हैप्पी दिवाली तक, कभी स्टिकर वाली विश तो कभी मोटिवेशनल फॉरवर्ड। फेसबुक से तो सब पता चल ही जाता है कि उधर सब ठीक ठाक है, उनके हाल अच्छे हैं, खुश हैं, मामला अंडर कंट्रोल है। तो फिर आप क्यों अंडर कंट्रोल है उस मुलाकात के लिए? वर्क फ्रॉम होम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, होम स्कूलिंग, न्यूज फीड, ऑनलाइन चैलेंजेस, कुकिंग क्लीनिंग, 50 मिनट्स वर्कआउट, ईट रिपीट, म्यूजिक एप्स, वेब सीरीज, मूवीज, बिंजिंग, गेमिंग एप्स के बीच में भी उस मुलाकात का ख्याल आता है। सुनाने आ रहे हैं हमारा ये अगला गाना श्रीपद और विद्या अपनी सुरीली आवाज़।

वाह, ख्याली पुलाव तो पक्के बिरयानी बन चुकी है। मन है कि जा बसा है अनजान के नगर में, कुछ खोजता है पागल खोए हुए नगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बिचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। लिखा शैलेंद्र ने, लेकिन कोस आप रहे हैं कि हाउ डज दिस पोएट लिरिसिस्ट डू इट एवरी टाइम रीच इनटू योर हार्ट एंड क्रश योर इमोशंस इनटू इंक। सुनते हैं हमारा आज का ये आखिरी गाना कविता और अजय जी से।

बात का आज आया कैसे? ऐसा नहीं कि सबका सीक्रेट है या सबके मन में है, पर यह हकीकत है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस के समय हमारे जहन में कई बार ऐसी यादें, ऐसी बातें और ऐसे लोग आते हैं जो उन उम्र नहीं आते, नीचे कहीं मन की गहराई में दबे रहते हैं। और जब हम इतने मसरूफ होते हैं, हर वक्त लोगों की भीड़ में नहीं होते, क्यूबिकल से कैबिन, कैबिन से कॉफी मशीन, लिफ्ट से पार्किंग लॉट, पार्किंग से ट्रैफिक, इन सब एक्टिविटीज ट्रैप में नहीं होते, तो हम निहत्ते होते हैं खुद ही के सामने। कल की मुलाकात का वादा करते हुए आज इजाजत लेती हूँ मैं आपसे, रति भार्गव, अपने आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के कलाकारों के साथ।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी

0: अपनी आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ है टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी मुस्कान जितनी खूबसूरत है उतना ही सुरीला है उनका सफर। उत्तर प्रदेश की नवाबी नगरी लखनऊ से लेकर माया नगरी मुंबई तक का सफर, एक सफल प्रोफेशनल, एक समर्पित गृहिणी और सबसे बढ़कर संगीत से दिल की गहराइयों तक जुड़ी हुई एक प्यारी सी गायिका। आइए जोरदार स्वागत करते हैं हम आज की विशेष अतिथि मुंबई से, मिनाली लाल जी का। मिनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो की स्टूडियो में। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा।
1: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी एंड जगदीश जी, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आप लोग के संपर्क में आई। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने आप को, अपने बारे में, अपने संगीत के प्रेम को आपके सामने संपर्क दे सकती हूँ।
0: जी बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बेताब हैं इतनी प्यारी गायिका के गीत और उनके जीवन के सफर के बारे में सुनने के लिए। तो
1: बहुत
0: मिनाली जी,
1: बहुत
0: हम
1: शुक्रिया।
0: शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो लखनऊ की गलियों से मुंबई तक का जो आपका खूबसूरत सफर रहा है वो कैसा रहा है? क्या कोई आज भी लखनऊ की कोई ऐसी याद है जो आपके दिल के बेहद करीब हो?
1: लखनऊ से मुंबई तक का सफर मेरे लिए तो एक सीख, संघर्ष और नए अवसरों से भरा रहा।
0: जी
1: लखनऊ ने मुझे संस्कार, अपनापन और बहुत कुछ सिखाया, जबकि मुंबई ने मुझे बड़े बड़े सपने देखने के लिए एक जगह दिया, उन्हें
0: जी
1: पूरा करने का एक हौसला दिया। और दोनों शहरों ने मेरी जिंदगी को एक अलग अलग तरीके से समृद्ध किया है।
0: जी जी
1: अगर लखनऊ की सबसे प्यारी याद की बात करो तो मुझे वहाँ का अपनापन, परिवार के साथ बिताया मेरा बचपन, मेरे कॉलेज डेज, शाम की गंजिंग की सैर जो वहाँ का
0: जी
1: बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ हर जगह, हर प्राण में, कहीं भी आप पूछेंगे तो ये गंज वर्ड जो है वो बहुत वहाँ पे फेमस है।
0: अच्छा अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: वहाँ की तहजीब आज भी मेरे दिल में बहुत करीब है।
0: जी लखनऊ के खान पान की भी बहुत तारीफ की जाती है, वहाँ के कबाब और वहाँ के पान, और
1: बहुत
0: एक वहाँ
1: बहुत
0: के शर्मा जी की हेरिटेज दुकान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ,
1: बिल्कुल।
0: जहाँ के
1: नहीं, बहुत
0: समोसे बड़े फेमस हैं।
1: लखनऊ में तीन चार चीजें, जो खान पान जिसको आपने अभी मेंशन किया है, मतलब
0: जी
1: चाट, लखनऊ की फेमस चाट जिसको आप समोसे बोलिए, एक शर्मा की चाट भी है।
0: जी
1: ये आज से नहीं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सॉरी, पिछले 50 सालों से चल
0: जी
1: रही है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: और एक मक्खन मलाई, ये आपने पता नहीं
0: जी
1: सुना
0: हाँ,
1: है कि नहीं, तो
0: सुना है, बहुत सुना
1: ये
0: है।
1: लखनऊ की, मतलब ये सर्दियों के समय की ही एक बनावट है जो गर्मी या बारिशों में और किसी सीजन में नहीं मिलेगा, एक और ठंड में, तो इसका
0: जी
1: मजा अलग है। और बिरयानी तो आप जानते हैं, कबाब और
0: जी
1: बिरयानी,
0: बिल्कुल
1: टुंडे के कबाब, बिरयानी, ये सब तो वहाँ के बहुत ही मशहूर लजीज क्विजींस हैं, तो
0: जी
1: इसके लिए तो मैं आपको, मैं बोलती जाऊंगी तो अंत ही नहीं है।
0: तो लखनऊ के खान पान और मुंबई के खान पान में क्या फर्क लगा आप?
1: डेफिनेटली खान पान में अंतर तो है, मतलब मैं चूंकि लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ से, खाना बनाने का मुझे शौक भी है और हम लोग ने इतना कुछ खाया है, सीखा है, तो वो मैं अपना के मुंबई तो ले आई, बट यहाँ के खान पान में बहुत कुछ अंतर इसलिए है बिकॉज, सही बात बोलूँ तो मसाले यहाँ का, मीडियम यहाँ का, जो तड़के हैं वो सब बहुत फर्क है। आप मतलब हम कुछ भी मीट, मटन, चिकन, कुछ भी हम यहाँ का प्रेपरेशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फर्क दिखेगा। जो हम मसालों का जो फ्लेवर, जो हम लखनवी जिसको वर्ड यूज करते हैं, वो आपको लखनऊ के मसाले से यहाँ बहुत अंतर दिखेगा।
0: बहुत अंतर दिखेगा। जी जी
1: मतलब वो कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारा इसलिए मैं तो प्रेफर ही करती हूँ कि मैं अपने घर का ही बनाया हुआ खाऊं,
0: जी बिल्कुल, क्योंकि
1: मुझे
0: हालांकि हर एक प्रांत का एक अपना स्वाद
1: अलग
0: होता है,
1: रहता है। नो
0: पर
1: डाउट,
0: जहां
1: नो
0: पर
1: डाउट।
0: हम बेस्ड होते हैं वहां के हम कुछ मसाले, कुछ यादें, कुछ बनाने के तरीके अपने साथ, हमारे
1: अलग
0: वो
1: ही है।
0: जी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और हर जगह हम अपने साथ ले जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत खूब, तो इसी के साथ मीनाली जी हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: तो बातचीत को और आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला प्रश्न रहेगा मिनाली जी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और उसके बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में आप लगभग 13 वर्षों तक आपने एक लीडिंग भूमिका निभाई है, तो उस दौर को, उस दौर जो आपके जीवन को उस दौर ने सबसे बड़ा सबक क्या दिया?
1: मेरे लिए एयरलाइन इंडस्ट्री में बिताए लगभग 13 वर्ष एक नौकरी ही नहीं बल्कि जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण पाठशाला रही। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, नेतृत्व का वास्तविक अर्थ केवल टीम का नेतृत्व करना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेना, लोगों के साथ लेकर चलना, क्योंकि मैं एचआर डिपार्टमेंट में थी और इस पर्टिकुलर विभाग में हर तरीके का

0: भी मैंने बहुत डिसिप्लिन और समय का, टाइम मैनेजमेंट, समय का सम्मान करना, कैसे कैसे टीम वर्क में लोगों के साथ रहना,
1: जी
0: बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया भी।
1: तो मिनाली जी, जैसे आजकल अक्सर न्यूज़ में हम पढ़ते रहते हैं कि फलानी एयरलाइंस में या फलानी फ्लाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, उनको लैंड करना पड़ा, या
0: जी
1: जो एक बहुत ही दुखद भरी फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से चली थी वो क्रैश हो गई थी, या फिर इस तरह के इंसिडेंट्स आजकल बहुत आते हैं। तो इसके साथ, ऐसे इंसिडेंट्स के साथ आपका बींग एन एचआर लीडर क्या इसमें आपका इंटरेक्शन रहता था?
0: सौभाग्य बोलिए, मतलब सौभाग्य से उस मेरे वक्त पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना था, बट हमारे एयरलाइंस में उतना कुछ ऐसा हुआ नहीं।
1: जी
0: यस, एक टेक ओवर हुआ था, एक हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर ऑफ बाय जेट
1: जी जी
0: एयरवेज। तो
1: जी
0: फिर वो जो पूरा ऑन बोर्ड चेंज होना पड़ा लोगों को, हमने फिर से रिक्रूट किया, फिर से उनको हमने डिपार्टमेंट वाइज उनको हमने प्लेस किया। वो
1: जी
0: काम मेरा पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरा ही
1: अच्छा
0: रोल उसमें ज्यादा था।
1: जी
0: इसलिए था क्योंकि मैं पहले से ही लोगों को जानती थी, और लोगों को मैं किस डिपार्टमेंट में रिक्रूट करके प्लेस करूं, उनको प्रॉपर उनकी तनख्वाह भी बराबर रहे, या उनके रिक्वायरमेंट्स, या उनके वो, मैं मेरा रोल कुछ उसमें ज्यादा ही था।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो पीरियड मेरा बहुत एक्सटेंसिव पीरियड रहा।
1: जी
0: अदरवाइज क्रैशेस, कुछ मिसमैनेजमेंट तो छोटे मोटे तो थे, बट दैट वाज
1: दैट
0: नॉट
1: इज ऑल
0: इन
1: अ पार्ट ऑफ
0: कंसिडरेशन,
1: लाइफ,
0: या
1: राइट।
0: उतना
1: इस
0: कंसिडर नहीं किया हमने।
1: जी, बहुत ही रोचक पूर्ण आपके किस्से हैं, और हम वापस इन किस्सों में आएंगे। इससे पहले हम आप

0: मिनाली जी, एक सफल प्रोफेशनल से पूर्णकालिक गृहिणी बनने का निर्णय किसी के लिए भी आसान नहीं होता
1: जी।
0: इस बदलाव के दौरान आपने स्वयं को कैसे पॉजिटिव बनाए रखा, कैसे हमेशा सकारात्मक

0: बनाए रखा।
1: सच कहूं तो ये डिसीजन, ये निर्णय आसान नहीं था।
0: जी
1: एक लंबे समय तक प्रोफेशनल जीवन के
0: जी
1: जीने के
0: लगभग
1: बाद
0: 13 वर्ष आप
1: अचानक,
0: बता रही हैं।
1: यस यस,
0: जी।
1: जिसमें से 8 वर्ष मैंने मुंबई में किया और बाकी मैंने लखनऊ से ही स्टार्ट किया था।
0: जी
1: तो ये सफर बहुत ही एकदम सडन, प्रोफेशनल जीवन को जीने के बाद अचानक घर पे और परिवार को समय देना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था मुझे। शुरुआत में मेरे को ऐसा लगा कि मेरी पहचान सिर्फ मेरे काम से जुड़ी थी हुई, क्योंकि हम इतने काम में लीन रहते थे और एचआर का काम ही इतना है कि वो एक टोटल इन्वॉल्वमेंट विद पीपल अराउंड, तो वो हमें लोगों के बीच में ही रहता था। तो मेरा समय इतना निकलता था कि मुझे कभी और कुछ सोचने का समय का ध्यान ही नहीं आता था। फिर ऑब्वियसली जब हमारी शादी हुई या हम मैरिज के बाद हम बॉम्बे आए, बच्चे हुए, तो बच्चों के साथ टाइम ज्यादा मिलना जरूरी हो गया। बिकॉज प्रोफेशन ऐसा है कि देखिए, काम तो हर के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है,
0: बिल्कुल।
1: और जो झाड़ू तो सबका ही नेचर रहता है। मतलब हम फीमेल्स का हैबिट ही, हम लोग का आदत ही है कि कोई काम पकड़ो तो उसको एकदम
0: बिल्कुल
1: अंजाम दे के ही रहो।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा
0: एक्चुअली
1: चूंकि
0: डबल
1: लखनऊ से,
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना हमारी, अगर हम प्रोफेशन
1: टोटली
0: में हैं तो।
1: टोटली,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: फिर बच्चे छोटे, एंड उसी दौरान मेरे हस्बैंड को भी आउट ऑफ इंडिया प्लेसमेंट हो गया, तो ही वाज आउट फॉर ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, उनको बाहर
0: ओ
1: रहना पड़ा। ही वाज इन दुबई। तो
0: अच्छा
1: फिर जॉब भी, और फिर मेरी एक बुजुर्ग, मेरी सास सासू माँ थी जो मेरे
0: जी
1: साथ
0: जी
1: रहती थी,
0: जी
1: तो फिर उनको देखना, और मेरे बच्चे छोटे ही थे। मतलब मेरा बेटा उस समय 9 साल का था, बेटी तो 5 साल की ही थी, तो
0: जी
1: बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना। फिर मेरा नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने, चूंकि हम एचआर वाले हैं, हम लोग का रिक्रूटमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो
0: जी
1: मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स बहुत सारे मेरे साथ अटैच थे, तो मैंने यही प्लान किया था कि मैं आफ्टर, मतलब अगर मैंने सबैटिकल लिया, मैंने छोड़ा बीच में, तो मैं वो कंटिन्यू करूंगी। बट कुछ ऐसा हुआ कि वो चीजें होते होते डेवलप, कुछ महीने चली बट फिर आगे नहीं हो पाया, तो फिर रह ही गया। और फिर आप, जब आप परिवार के साथ रहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो एक अलग ही भूमिका हम निभा रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: वो फिर, बट मुझे ऐसे बोलेंगे कि मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे मतलब अच्छे लोगों के साथ रहे के जो मैंने सीखा था, तो मैंने अनुशासन भी सीखा था, कैसे निर्णय लेना सीखा था। तो ये मेरा गृहिणी होने पर भी मैंने ये भूमिका बहुत अच्छे से निभाई,
0: जी बिल्कुल।
1: और फिर दोनों को मिलाकर एक बेहतर, एक मैं अपने बोल सकते हैं कि मेरे बच्चों पे मैंने जितना डाइवर्ट किया टाइम, तो मुझे आज अपने पर इस बात पे फक्र
0: फक्र
1: है कि
0: है।
1: मैं
0: जी।
1: बिल्कुल
0: एक्चुअली जो
1: समझ।
0: हमारे बच्चे जब अच्छे सेटल हो जाते हैं, अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, तो उससे बड़ा इनाम हमारे लिए कोई
1: यस
0: नहीं
1: यस,
0: होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी,
1: बहुत
0: तो
1: बड़ी
0: एक
1: बात होती
0: ऐसा
1: है।
0: फिर दौर आया था जब कोविड ने हम सबकी
1: जी
0: जिंदगी तहस नहस कर दी थी, ऊपर से नीचे सब हिल गए थे।
1: पूरे पूरे पूरे।
0: जी, तो उस वक्त फिर आपकी लाइफ में क्या चेंज आया?
1: देखिए, मैं संगीत से तो हमेशा से जुड़ी हुई थी, ऐसा नहीं है
0: जी
1: कि मैं नहीं गाती थी। मेरे कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में, मतलब इनफैक्ट आई वाज, मेरे को बोला जाता था कि नाइटिंगेल ऑफ द स्कूल,
0: क्या
1: और
0: बात
1: ऐसे
0: है,
1: करके
0: क्या बात है।
1: तो बोला जाता था। तो लेकिन फिर पढ़ाई, फिर बहुत कुछ करते करते वो थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। फिर ग्रेजुएशन आया, फिर हमने शादी हो गई, फिर हम छोटे छोटे, मेरे उस समय भी मैं प्रोग्राम्स करती थी, बट ये इस स्केल पे नहीं करती थी।
0: जी
1: कोविड के टाइम पे हम जब इतना लंबा सफर घर में रह गए, बाहर निकल ही नहीं पाए, तो हमें स्टार मेकर और स्म्यूल मिला। वो मेरी एक सिस्टर है, कजन सिस्टर, वो यूएस में थी,
0: जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था स्टार मेकर में, और हम गाते थे साथ में। बट वो धीरे धीरे, वो भी इसलिए कम होने लगा बिकॉज वो, उन लोग का टाइमिंग मैच नहीं होता था मेरे से, वो
0: जी
1: लेट नाइट वाले और हम दिन वाले। तो फिर स्म्यूल आया, स्म्यूल से भी मैंने एक इंटरेक्शन शुरू किया। मेरे सोसाइटी में बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो स्म्यूल में हैं, उन
0: जी
1: लोग ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, सिखाया, और फिर जब उस सिलसिले से मैं ज्वाइन हुई, गाना शुरू
0: देर वॉज
1: किया,
0: नो लुकिंग बैक।
1: देयर वॉज नो लुकिंग बैक, अब तक चल ही रहा है। मतलब वो
0: जी
1: अब उसके वजह से मैं, मेरा एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट जाग गया, एंड प्रॉबेबली मैं ये बोलूंगी कि उससे लोगों ने मेरी, मतलब मेरे को पहचाना, और लोगों ने पहचाना मुंबई में, क्योंकि यहाँ पे
0: जी
1: भी मैं आज की डेट में लाइव शोज कंटिन्यूअसली, मेरा ये अभी ये महीना, नेक्स्ट मंथ पूरा पैक्ड है। मतलब आई हैव सो मेनी शोज दैट
0: वाह
1: आर कमिंग अप,
0: वाह
1: और कराओके शोज तो ऐसे नॉर्मल तो करती ही रहती हूँ,
0: जी
1: बट
0: जी
1: लाइव
0: जी
1: शोज विद म्यूजिशियंस करना ये अभी मेरा बहुत फोटे हो गया है।
0: जी
1: किए
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: बहुत सारे, मैं जनरली लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आप डालते नहीं हो पर वीडियोस, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ डाल दू, बट उसमें थोड़ा सा मैं पीछे रहती हूँ, बट अदरवाइज मेरे बहुत सारे मैं शोज अभी तक तो कर चुकी हूँ मतलब,
0: जी
1: एंड आई हैव ग्रोन विद दैट, वो एनवायरमेंट में मैं बहुत अभी आजकल एक्टिव हो गई हूँ,
0: बहुत खूब
1: तो
0: बहुत खूब
1: यही चल रहा है बस अभी।
0: जी। तो इसी के साथ हम आपका एक और खूबसूरत गीत लेते हैं।

0: मीनाली जी, जैसे आपने बताया कि आपको तो लोग पहले से ही नाइटिंगेल का खिताब दे चुके थे और आप पहले से ही स्टेजेस पर गाती आई हैं। कोविड के दिनों में आपने कैरियोके ऐप्स को काफी यूज किया और एक तरह से कैरियोके की वजह से कहा जाए तो आपके टैलेंट को पंख लग गए, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक स्म्यूल या किसी भी कैरियोके सिंगिंग का जो गेट टुगेदर होता है वो लाइव सिंगिंग से बहुत अलग होता है।
1: बिल्कुल
0: तो कोई आपके ऐसी खास याद अपनी लाइव परफॉर्मेंस के साथ जो अभी तक आपके दिल के साथ जुड़ी हुई हो और जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ?
1: हाँ, मेरा पहला लाइव शो था जिसमें मतलब मैंने स्टूडियो में पहले गाया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि द शो का जो शुरुआत में वंदना करते हैं
0: जी।
1: वो आपको ही करना है। अब वो तो मैंने तो अभी शो स्टार्ट करना ही शुरू किया था, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि अभी शो का एक वंदना स्टार्ट करना। फिर वो वंदना भी मतलब मैंने कभी जीवन में सुना ही नहीं था, वो बिल्कुल नया था मेरे लिए।
0: जी।
1: फिर वो एक चैलेंज, ऐसा एक दूसरा चैलेंज ये हो गया कि अब ये वंदना को पहले लर्न करो, फिर उसके पूरे पूरे सिस्टम में लाना है, क्योंकि मुझे गाना है उसके अंतरे बराबर होने चाहिए, क्योंकि लोगों ने सुना हुआ है बट मैंने बहुत बाद में, मैंने मतलब मैंने
0: अच्छा,
1: बहुत
0: तो आपने
1: लेटली
0: वो
1: सुना
0: अकेले
1: था
0: गाना था?
1: जी।
0: हाँ जी।
1: तो हिच बहुत हो गया था, डर बहुत था, घबराहट बहुत थी कि कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़े हरकतें थी थोड़े।
0: जी।
1: लेकिन मुझे 2 बार मतलब मैंने प्रैक्टिस स्टूडियो में अलग से उन्होंने करवाया मुझे कि नहीं आप पहले इधर गा के देख लीजिए कि आपको कैसा। फिर
0: जी।
1: मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, आप रात दिन मैंने घर पे बहुत प्रैक्टिस किया। मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि अरे ठीक है वंदना है गाना है गा लेंगे वैसा, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे काफी बार उसको सुनना पड़ा, फिर उसमें वो ट्रैक में भी कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे बहुत सारा चेंजेस करवाना पड़ा, मतलब जो ट्रैक मेकर थे। फिर फाइनली जब आया है निखर के तो देवर अराउंड मेरा उस पर्टिकुलर शो में ऑलमोस्ट 500+ लोग थे,
0: वाह।
1: और जब मैंने स्टार्ट किया जो अलाप करके फिर उसमें अंतरा, तो इतना अपलॉड मिला मुझे, इतनी वाहवाही मिली उस पर्टिकुलर वंदना से। लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, तो आगे जो भी शोज होते थे मुझे बुलाया जाता था कि नहीं पहले वंदना यही गाएंगी तो मुझे
0: दरअसल
1: वो
0: जो
1: अभी तक
0: श्रोताओं का,
1: बैठ गई,
0: हाँ, जो श्रोताओं का जो प्यार मिलता है वो एक कलाकार की
1: बिल्कुल
0: असली जो खुराक
1: असली
0: होती है
1: पहचान
0: वही
1: है,
0: होती
1: एक्चुअली वही है,
0: है ना।
1: वही बात है।
0: बहुत खूब। तो अगर आपको अपने जीवन को
1: जी
0: किसी एक पुराने सदाबहार गीत के माध्यम से व्यक्त करना हो तो आप
1: हाँ
0: कौन सा गीत उसके लिए चुनेंगी और क्यों?
1: हाँ मैं तो बोलूंगी, देखिए मेरे हिसाब से अगर अगर आप सबसे पहले बोलेंगे तो लगेगा कि जिंदगी में, जिंदगी वाला जो एक शब्द है तो
0: जी।
1: वो जिंदगी एक सफर है सुहाना वाला जो गीत है,
0: यहाँ कल क्या
1: या
0: हो किसने जाना।
1: हाँ एक ये है, और प्लस जीवन से भरी तेरी आंखें। मुझे ये लगता है ये दोनों गानों में इतनी गहराई है, मतलब हर चीज दोनों गानों में ये समझा रहा है कि आप लाइफ में आपने क्या सीखा, कैसा सफर गुजर गया क्या गुजरेगा। वो एक आदमी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो हम कहाँ से किस लेवल से उठ के हम किस लेवल पे आज की डेट पे आए हैं।
0: जी
1: क्योंकि देखिए
0: जी
1: सपनों का तो कोई उम्र होती नहीं है, जीवन में
0: नहीं।
1: जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हम थोड़ा सा समय जो अपने जुनून के लिए निकाल लेते हैं या उसको जिंदा रखते हैं, तो वो जो खुशी या वो जो ऊर्जा हमको मिलती है वो, अब गाने तो कोई अनलिमिटेड है, उसके तो कोई सीमा ही नहीं है,
0: जी बिल्कुल। किसी एक गाने को नहीं हम चुन सकते बताने के
1: हम
0: लिए
1: नहीं
0: कि
1: बता
0: हमारे जीवन
1: सकते।
0: का सफर कैसा
1: बिल्कुल
0: रहा।
1: बिल्कुल, लेकिन
0: जी
1: फिर भी ये 2 गाने ऐसे लगते हैं मुझे कि ये बहुत मीनिंगफुल गाने हैं, बहुत ही इसमें बहुत मन से भरा हुआ
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल किसी का पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं
0: बिल्कुल।
1: वही सोचती हूँ कि गाने का तो कोई अंत नहीं है। आप अपने, मैं तो जैसे मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मैं अपने इस शौक को पूरा कर रही हूँ, और भगवान की दया से साईं बाबा की तरफ से मैं, जो कि अब मैं यहाँ रह गई हूँ तो मुझे साईं बाबा पे बहुत विश्वास है, तो
0: जी
1: और गणपति बप्पा मेरे चूंकि
0: जी
1: हम घर पे भी अपने गणपति लाते हैं, तो
0: लाते
1: उनकी
0: हैं।
1: कृपा से हम, मेरा जो अपना सफर चल रहा है भगवान करे वैसे ही मेरी उम्मीदें जैसे हैं, मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैंने बहुत उम्मीद नहीं रखा है कि मैं बहुत बड़ा कुछ फिल्म स्टार के रोल पे, वैसा वाला रोल तो नहीं होता
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: बट मेरा ये पैशन है जिसको मैंने जारी रखा है, और मैं जितना गा पाऊँ अपने पैशन को निभा पाऊँ इतना
0: जी
1: ही मेरा
0: मिनाली जी,
1: इच्छा।
0: देखा जाए तो हर कोई अपने अपनी जगह, अपनी अपनी फैमिली में एक नायक या नायिका का ही रोल अदा कर रहा होता
1: डेफिनेटली, बिल्कुल
0: है ना
1: बिल्कुल।
0: जी। तो कार्यक्रम के अंत में क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगी, कोई प्रेरणादायक शब्द उन लोगों के लिए जो कि अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं?
1: देखिए, मैं बिल्कुल जरूर बोलूंगी अपने श्रोताओं को कि देखिए, सपनों को मत छोड़िए, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, और छोटे छोटे कदम भी एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, जैसे मुझे आज यहाँ पे पहुंचाया है।
0: जी
1: और बस सबसे बड़ी बात है कि एक अपनी तुलना किसी और से मत करिए, मतलब
0: जी ये
1: अगर
0: बहुत
1: हमने
0: जरूरी है।
1: कंपेयर किया तो अपनी यात्रा और हमारी यात्रा और किसी और की यात्रा में बहुत अंतर है, तो इस तुलना को करके जीवन चलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। तो अपनी खुशियों को अपनाइए, यदि आपके मन में अच्छी सच्ची लगन है, विश्वास है, धैर्य है, तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत संदेश मिनाली जी, आज
1: थैंक
0: आपने
1: यू।
0: अपनी सादगी, अपनी सकारात्मक सोच और संगीत के प्रति अपने समर्पण से इस बातचीत को बेहद खूबसूरत बना दिया। आपका
1: थैंक
0: बहुत
1: यू,
0: बहुत धन्यवाद कि आपने
1: बहुत
0: अपने
1: बहुत
0: जीवन के इतने
1: शुक्रिया,
0: सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किए।
1: बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोग सबसे बात
0: जी
1: करके।
0: सो दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर कोई चीज हमें फिर से मुस्कुराना सिखाती है तो वह है अपने दिल की आवाज को सुनना। और मिनाली जी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देव गुप्ता, और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। फिर मिलेंगे जश्न सितारा गीत गुफ्तगू के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राखा।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से जगदीश अरोड़ा साहब। वेलकम है जगदीश जी आपका इस प्रोग्राम में। आज कुछ खास करने जा रहे हैं जगदीश जी, कुछ अलग तरह के गीत, कुछ हटके और कुछ इनके गीतों के खटके। आपकी आवाज आपकी पहचान, जगदीश अरोड़ा, पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से।

तू है कभी जवा कोई तो है तेरा, तू ढूंढ ले उसे दिल दीवाने। तू है कभी जवा कोई तो है तेरा, तू ढूंढ ले उसे।

जी हाँ, ये सलाह दे रहे थे हमारे आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा पंजाब से। आपकी आवाज, आपकी पहचान और इस सलाह के बाद हवा क्या कहती है, हवा का रुख क्या है, आइए ये भी जान देते हैं। आपकी आवाज में आपकी आवाज, आपकी पहचान।

हवाओं की बातें हवाओं से बातें। जी हाँ, हवाओं की बातें हवाओं से बातें बातें कर रहे हैं आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और तेरी आंखों में क्या है वो भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। आवाज जगदीश अरोड़ा की।

इसमें मेरा कसूर क्या है सनम। आपने सुना हमारे आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा जी को। आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं आज के कलाकार प्रोग्राम।

आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के कलाकार प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं जगदीश अरोड़ा पंजाब गोविंदगंज मंडी से, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं जगदीश अरोड़ा के कुछ हटके नए गीत।

0: डीलर वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार रहे जगदीश अरोड़ा, पंजाब गोविंदगढ़ से। आपको जगदीश जी के गीत कैसे लगे हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थान

भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और स्वयं।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल हैं, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्या शंकर, गायत्री जगन्नाथन, आभा माथुर, शर्मिष्ठा सारंगी और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठें खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाएं तो एक चीज हमारे बीच सरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मोंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवनसुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस, आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
4: आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भर